मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 43 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ हम लेकर आए हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और ढेर सारा मनोरंजन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं नमस्ते लखनऊ के आज के सफर में। श्रोताओं इस प्यारी सी सुबह में कहीं मंदिरों की घंटियां गूंज रही हैं, कहीं चाय की प्यालियों से उठती भाप दिन की शुरुआत का एहसास करा रही है। वास्तव में सुबह का ये समय केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये अपने सपनों को फिर से जगाने और जीवन में नई उमंग भरने का संदेश भी देता है। दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और जरूरी जानकारी के साथ। सुबह के 6 बजने को है, आइए जान लेते हैं क्या कुछ हुआ देश विदेश में समाचारों के माध्यम से।

समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।

0: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक

0: रूट रोड टाइप की बीमारियां हैं, वो
1: गलन
0: देखी
1: वाली,
0: गई गलन वाली जो है, और जो जल प्रबंधन करना है
1: वो नालियों में,
0: वो नालियों में करना है और आधी नाली भरना है, क्योंकि आपका जो पानी है वो जड़ों तक मिलना चाहिए, और जब आधी नाली भरेंगे तो कम पानी में अधिक उपज आपको किस प्रकार लेनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पौधे को बीच बीच में थोड़ा सा आराम देना है, पानी लगातार नहीं लगाना है, सप्ताह 10 दिन 15 दिन के गैप पे पानी लगाना है। छोटी स्थिति में पानी ज्यादा लगता है क्योंकि पौधा नीचे छाया नहीं बना पाता है, जब पौधा बड़ा हो जाता है आप नाली में पानी लगाते हैं तो बहुत ज्यादा पानी की बचत उसमें रहती है। दूसरा मुख्य है कि खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो 25 से 65 दिन का समय है मेंथा की फसल में
1: रोपाई के बाद
0: सबसे क्रांतिक है, उस समय आपको एक या दो बार निराई गुड़ाई करनी जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
1: सब क्या मल्चिंग भी फायदेमंद होगा?
0: मल्चिंग बिल्कुल फायदेमंद रहती है, अगर आप मल्चिंग करते हैं बीच में तो उससे क्या होता है कि आपका एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा आपके खरपतवार नियंत्रण में काफी मदद मिलती है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ खड़ी फसल है तो फसल की भूख मिटाने के लिए कुछ करना है?
0: जी जी, वो तीनों प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, उसमें आपका फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन। फास्फोरस पोटास की जो मात्रा है लगभग 40 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 2.5 एकड़ के हिसाब से पोटास, इतना ही फास्फोरस अंतिम जुताई के समय लगाए। अगर मेंथा में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसकी मात्रा आधी कर सकते हैं, और एक हेक्टेयर के लिए लगभग 4 से 5 टन आपकी वर्मी कंपोस्ट और लगभग 10 से 12 टन गोबर की खाद जरूरी है
1: जी।
0: और मेंथा में 2 या 3 हिस्सों में नाइट्रोजन की मात्रा को बांट लें,
1: यानी स्प्लिट डोज
0: में करें, पहले आप शुरुआत में रोपाई के समय कर सकते हैं और दो दूसरी है लगभग 1.5 महीने बाद, दूसरी 2.5 महीने बाद। कटाई से पहले 1 महीना पहले खाद की मात्रा कम कर दें, खाद बिल्कुल ना डालें, और कटाई से लगभग सप्ताह 10 दिन पहले पानी भी लगाना बंद कर दें, ताकि मेंथा थोड़ा सा मुरझाई हुई स्थिति में आए तो स्थिति में कटाई करने पर तेल ज्यादा मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, कटाई की बात आपने की तो कटाई के बाद आसवन है
0: जी, जी, जी।
1: तो आसवन के पूर्व और आसवन के समय
0: जी,
1: और आसवन के बाद ये तीन कौन कौन सी सावधानियां हैं?
0: सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कटाई का असली समय जानने के लिए जब मेंथा के खेत में आप जाएं तो नीचे हाथ लगा के देखेंगे, नीचे वाली पत्तियां पीली पड़नी शुरू होती है, और जब हल्की पत्ती गिरनी शुरू हो जाए उससे पहले कटाई कर ले ताकि पत्ती गिरने से उसका नुकसान ना हो। आसवन में ध्यान नहीं रखना, टंकी की सफाई अच्छे से करें, उसमें तेल और कोई चीज ना लगाए, उसको पहले भर के पानी भर के चला के देखें, और जब आप टंकी को चलाते हैं तेल निकालते हैं तो लगातार आपको ध्यान रखना है कि उसमें गेज वाल और प्रेशर गेज दोनों लगाएं ताकि टंकी फटने की स्थिति में नुकसान ना हो, और जो पानी आपका होद में रहता है उसको लगातार ठंडा करते रहें। 75 घंटे से पहले पहले खेत में मेंथा को फैला के रखें, उसका ढेर ना लगाएं या छाये में फैला के रखें, उससे पहले उसका तेल निकाल लें कटाई से 75 घंटे 72 घंटे के बीच में। और जो आप भंडारण करते हैं, भंडारण कोशिश करें कि प्लास्टिक के कैन में बोतल में ना करें, वो आपका GI उसमें करें, जो आपके भंडारण बर्तन है या स्टेनलेस स्टील या आपके दूसरे जो भंडारण के लिए बर्तन आते हैं उसमें किया जाए। और भंडारण में ध्यान ये रखना है कि भंडारण में पूरा भर के करें, उसमें ये नहीं कि आपने 50 लीटर का कैन है उसमें 20 लीटर तेल रख दिया, आपको 50 लीटर में 50 लीटर कैन रख रहे हैं, उसमें हवा नहीं होनी चाहिए ताकि तेल की मात्रा खराब ना हो।
1: डॉक्टर संजय कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। बातचीत का विषय था मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संजय कुमार और आपसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। कृषि चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुविचार। आज का विषय है बड़े मंगल का आध्यात्मिक महत्व। आइए सुने।
3: बड़े मंगल का मेला क्यों और कब से पर प्रकाश डालने से पहले अलीगंज के नए मंदिर के उद्गम पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में नवाब वाजिद अली शाह की दादी तथा दिल्ली के मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम द्वारा बसाए गए अलीगंज में एक हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को मुख्यतः हिंदू और मुसलमान श्रद्धा पूर्वक मनौतियाँ मानते हैं, चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। लखनऊ में मुहर्रम और अलीगंज का मेला ये दो सबसे बड़े मेले हैं। मेले में लगभग एक सप्ताह

0: का पूर्व दूर दूर से केवल एक लाल लंगोटा पहने हजारों लोग गर्म सड़क पर पेट के बल लेटकर दंडवती परिक्रमा करते हुए मंदिर आते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर की मान्यता है कि लखनऊ में ही नहीं दूर दूर तक जहां हनुमान जी का कोई नया मंदिर बनता है वहां की मूर्ति के लिए पोशाक सिंदूर लंगोटा घंटा और छत्र आदि यहाँ से बिना मूल्य के दिए जाते हैं और तभी वहाँ की मूर्ति की स्थापना प्रमाणित मानी जाती है। कुछ पौराणिक तथ्यों के अनुसार रामायण काल में उसका आदि स्रोत महानगर में स्थित हिबट पॉलिटेक्निक के निकट स्थित इस्लामबाड़ी में था। श्री रामचंद्र जी के सीता जी के त्याग के बाद हनुमान जी के साथ लक्ष्मण जी जब उनको बिठूर छोड़ने जा रहे थे तो रात हो जाने के कारण सीता जी पॉलिटेक्निक के पास बाड़ी में रुकी और हनुमान जी उनके लिए रात भर पहरा देते रहे। कालांतर में इसी बाड़ी में हनुमान जी का एक मंदिर बन गया और इस बाग को हनुमान बाड़ी कहा जाने लगा। 14वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस बाड़ी का नाम बदलकर इस्लाम बाड़ी रख दिया जो कि आज तक चल रहा है। 1792 से 1802 की अवध के तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम राबिया के जब कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई तो तमाम हकीम वैद्यों की दवाएं और पीर फकीरों की दुआओं ने जवाब दे दिया। तब किसी ने उन्हें इस्लामबाड़ी के बाबा के पास जाकर दुआ मांगने की सलाह दी और वहां उनकी दुआ कबूल हुई। ऐसी किंवदंती है कि बेगम के गर्भ में आए पुत्र ने उन्हें स्वप्न में कहा कि इस्लामबाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति गड़ी है, उसे निकाल कर हनुमान जी का मंदिर बनवाकर मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कराया जाए। बच्चे के जन्म के बाद राबिया बेगम वहां गईं और खुदाई करवाने पर हनुमान जी की मूर्ति निकली। मूर्ति को साफ सुथरा कराकर चांदी के रत्न जड़ित हौदे पर बैठाकर हाथी पर लादकर उसे बड़े इमामबाड़े लाकर उसके सामने हनुमान जी का मंदिर निर्माण कराने का नवाब ने आदेश दिया। बाड़ी के साधु ने आकर बेगम को बताया कि हनुमान जी गोमती के पार नहीं जाएंगे क्योंकि वो लक्ष्मण जी का क्षेत्र है, तो बेगम ने वहीं सड़क के किनारे मूर्ति की स्थापना कराकर एक मंदिर बनवा दिया। साथ ही उस साधु को सरकारी खर्चे पर मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया। राजा महमूदाबाद ने मंदिर के आसपास की काफी जमीन मंदिर को दान में दे दी, किंतु मेला अभी नहीं शुरू हुआ। मंदिर की स्थापना के 2-3 वर्ष बाद इस क्षेत्र में प्लेग की महामारी फैली और हजारों लोग इस प्रकोप से बचने के लिए अलीगंज के पुराने मंदिर में गए। तभी मंदिर के पुजारी को स्वप्न हुआ और हनुमान जी ने कहा कि ये लोग नए मंदिर में जाएं, वहाँ की मूर्ति में मैं निवास करता हूँ, मेरी शक्ति वहाँ की मूर्ति में है। अतः पूरी भीड़ नए मंदिर में आई और वहाँ की प्रार्थना से बहुत से लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। तभी से इस मंदिर में ज्येष्ठ माह का मेला होने लगा। इस संबंध में एक दूसरी कविदंती है कि नवाब वाजिद अली शाह की दादी आलिया बेगम बहुत बीमार हुई और फिर इस मंदिर में हनुमान जी से मन्नत मांगी गई और उन्होंने मंदिर में बहुत खैरात बंटवाई और कई दिनों तक भंडारा कराया। इसी के साथ आलिया बेगम के नाम पर तत्कालीन गांव का नाम अलीगंज रख दिया गया। एक तीसरी कविदंती भी है कि नवाब वाजिद अली शाह के समय केसर और कस्तूरी का एक मारवाड़ी व्यापारी लखनऊ के प्रसिद्ध मंडी सादतगंज में दर्जनों ऊंटों पर लाद कर केसर लाया, किंतु कई दिनों तक पड़े रहने के बाद भी उसकी केसर बिल्कुल नहीं बिकी। वो दुखी होकर अयोध्या की ओर चल दिया और रात हो जाने के कारण मंदिर के पास विश्राम के लिए रुका और लोगों के कहने पर उसने हनुमान जी से अपने माल की बिक्री की मनौती मांगी और हनुमान जी की प्रेरणा से नवाब के कारिंदों ने उनसे कहा कि केसर बाग जो आप बनवा रहे हैं उसको यदि केसर और कस्तूरी से पुतवा दें तो आपकी मरहूम बेगम केसर जहाँ की खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी। और इस पर व्यापारी की सारी केसर और कस्तूरी नवाब ने मुंह मांगे पैसों में खरीद ली। व्यापारी हनुमान जी की कृपा से मगन हो गया और उसने मंदिर में भव्य निर्माण के लिए दिल खोलकर खर्चा किया। तभी से ज्येष्ठ माह के हर मंगल को मेला लगता है। हनुमान जी का चांदी का छत्र उसी व्यापारी जठमल का बनवाया हुआ आज भी लगा है।
1: बड़े मंगल का आध्यात्मिक महत्व। प्रेम नारायण मेहरोत्रा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। आज बड़ा मंगल है और सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं संकटों को हरने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण ही मन को असीम शक्ति और साहस से भर देता है। हनुमान जी वो नाम है जिनसे भय मिटता है, दुख दूर होते हैं और जीवन में नया उत्साह भर जाता है। तो बड़े मंगल के इस शुभ अवसर पर आइए हम भी अपनी आराधना का आरंभ करें हनुमान जी की भक्ति उनके स्मरण के साथ।

जय हनुमान। जी हाँ श्रोताओं, राम भक्ति की अनुपम मिसाल, अटूट सेवा और समर्पण के प्रतीक हनुमान जी की महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। भक्तों के संकट हरने वाले बजरंग बली को नमन करते हुए आइए सुने ये पावन भजन।

श्रोताओं, भक्त और भगवान का अनुपम उदाहरण है हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी। राम नाम वो अमृत है जो मन की व्याकुलता को दूर कर आत्मा को आनंद से भर देता है। इसी दिव्य भाव के साथ आइए सुने ये पावन भजन।

श्रोताओं, राम और सीता ये दो नाम केवल शब्द नहीं बल्कि आस्था, त्याग, प्रेम और मर्यादा के जीवंत प्रतीक हैं। इनके स्मरण से मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित होता है। आइए इसी पावन भावना के साथ सुनते हैं ये मधुर भजन।

भगवान श्री कृष्ण को गोविंद, गोपाल और मुरारी जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ सुने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करता ये मधुर भजन।

0: हुआ श्याम, अंग अंग हुआ श्याम,
1: भजो गोविंद हरे।
2: भजो गोविंद हरे। श्रोताओं, भक्ति और श्रद्धा के इन मधुर स्वरों के साथ ही आराधना कार्यक्रम को अब यही विराम देते हैं। ईश्वर की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्ते लखनऊ में, आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 190। आज का प्रसंग है ऋषि मुनियों और माता कौशल्या द्वारा भरत से मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी रंजना जोगलेकर और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यान्मार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यान्मार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग ह्लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यान्मार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षताम् कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉ संवितपात्रवर्यः नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज नीना सोनकर से जानकारी सुनिए, सुबह का पोषण अच्छे दिन की शुरुआत इस विषय पर।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे दिन की शुरुआत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, सुबह का नाश्ता। हम सभी ने सुना है कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है, लेकिन इसे अक्सर हल्के में लिया जाता है या कभी कभी पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि नाश्ता आपकी सेहत और ऊर्जा के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सुबह का नाश्ता हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। रात भर सोने के दौरान हमारा शरीर ऊर्जा का उपयोग करता है और सुबह उठने के बाद हमारे मस्तिष्क और शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं तो ये शरीर के लिए लंबे समय तक भूखे रहने जैसा है। इसका सीधा असर आपकी कार्यक्षमता, मस्तिष्क के प्रदर्शन और पूरे दिन की ऊर्जा पर पड़ता है। नाश्ता पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जब आप सुबह नियमित और संतुलित नाश्ता करते हैं तो ये शरीर को दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार करता है। इसके विपरीत नाश्ता छोड़ देने से शरीर थका हुआ महसूस करता है और ऊर्जा का स्तर नीचे चला जाता है। ये स्थिति खासतौर पर उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है जो शारीरिक मेहनत या मानसिक एकाग्रता की जरूरत वाले कार्य करते हों। सुबह का नाश्ता मस्तिष्क के कार्य को भी बेहतर बनाता है। रिसर्च बताती है कि जो बच्चे और वयस्क नियमित रूप से नाश्ता करते हैं उनकी एकाग्रता और याददाश्त बेहतर होती है। खासतौर पर बच्चों के लिए नाश्ता बेहद जरूरी है क्योंकि ये उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। स्कूल जाने वाले बच्चों में ध्यान और पढ़ाई में प्रदर्शन नाश्ता करने से बेहतर होता है। इसके अलावा सुबह का नाश्ता वजन नियंत्रण में भी मदद करता है। ये भूख को नियंत्रित करता है और दिन भर में अनावश्यक स्नैक्स खाने की आदत से बचाता है। जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं वे अक्सर दोपहर में ज्यादा खा लेते हैं जिससे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। नाश्ता छोड़ने से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और ये वजन कम करने के बजाय वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं कि सही नाश्ता कैसा होना चाहिए। एक अच्छा नाश्ता वो है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन का संतुलित मिश्रण हो। भारत में हमारे पास पारंपरिक और पोषण से भरपूर नाश्ते के कई विकल्प हैं, जैसे कि पोहा, इडली सांभर, पराठा और उपमा जैसे व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण से भरपूर होते हैं। इन व्यंजनों को ताजे फलों या दही के साथ खाया जाए तो ये एक संपूर्ण और संतुलित भोजन बन जाते हैं। यदि आप जल्दी में हैं तो ओट्स, दलिया या स्प्राउट्स जैसे फटाफट तैयार होने वाले विकल्प अपनाएं। ओट्स और दलिया में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है जो आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करती है। स्प्राउट्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इन्हें सलाद के रूप में खाया जा सकता है। फलों और मेवों को भी अपने नाश्ते का हिस्सा बनाइए। एक कटोरी पपीता, सेब या केले के साथ मुट्ठी भर बादाम और अखरोट आपके दिन की बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली के मक्खन वाले ब्रेड स्लाइस एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। सुबह का नाश्ता सिर्फ पोषण ही नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव का भी तरीका है। नियमित नाश्ता करने वालों में डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है। ये शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखता है। हालांकि ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि नाश्ता कभी भारी और तैलीय ना हो। ऐसे नाश्ते से सुस्ती और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हल्का, संतुलित और पोषण से भरपूर नाश्ता आपकी सेहत के लिए सबसे सही है। यदि आप अब तक नाश्ते को नजरअंदाज करते रहे हों तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आज ही शुरू करें। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: सुबह का पोषण, अच्छे दिन की शुरुआत, इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात 11:10 से सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे। विषय होगा किसान कल्याण। कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। श्रोताओं, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समात फरमाइएगा तकरीर। मौजू होगा शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल। मुकर्रर होंगी डॉक्टर शिफा मरियम। साथ ही

साथ ही इसी कार्यक्रम में सुनिएगा अकील नोमानी से उनका कलाम। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे किरण देवी के गाए भोजपुरी लोकगीत। लोकरंग कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:50 और लोक माधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 से। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी आकाशवाणी के 90 वर्ष कुछ यादें कुछ बातें। इस विषय पर पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक जयश्री कुलभास्कर से नीना सोनकर की भेंट वार्ता। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता खरीफ सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विनायक प्रताप शाही, भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। कार्यक्रम में आज युवा श्रोता श्री कृष्ण प्रताप सिंह की वार्ता सुन सकेंगे। विषय होगा शहरों को हो रहे पलायन की दिशा। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता हरित सोच निर्माण में परिवार की भूमिका। वार्ताकार होंगे डॉक्टर चंद्रमोहन उपाध्याय। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आज डॉक्टर अर्चना सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुनिएगा। बातचीत का विषय रहेगा मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और खरीफ तैयारी। रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज डॉक्टर रीना चौधरी की वार्ता आप सुन सकेंगे। विषय होगा वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के विभिन्न आयाम। वाचन संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे प्रगति राठौर के गाए गीत व भजन। रात 9:30 से श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे हमारे फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। रात 10:00 से आकाशवाणी गोरखपुर की प्रस्तुति में सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। और रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा सतीश चंद्र के सितार वादन का। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। आज का विषय होगा श्वतेषु दुग्धम प्रवरम। और प्रातः 7:31 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आज सुबह। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज विविधा का आरंभ एक छोटे से सवाल के साथ। जरा सोचकर बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि सफेद रंग की सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? चमकता मोती, खिली हुई चमेली, हिमालय की बर्फ या फिर चांदी की चमक? यूं तो उत्तर कई हो सकते हैं, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी नापसंद के अनुसार। लेकिन हमारे प्राचीन मनीषियों ने एक अलग ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा, श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम, अर्थात सफेद वस्तुओं में दूध सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आखिर दूध को ही यह विशेष स्थान क्यों मिला? क्या केवल उसके रंग के कारण, या उसके पीछे कोई गहरा जीवन दर्शन छिपा है? इसी रोचक प्रश्न का उत्तर खोजेंगे आज के

कार्यक्रम विविधा में। तो आइए दूध की एक साधारण सी बूंद में छिपे असाधारण महत्व को समझने की एक दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम, एक छोटा सा संस्कृत वाक्य, लेकिन जीवन के बड़े संदेश के साथ। पहली नजर में ये एक साधारण सा कथन लगता है, लेकिन यदि इसके अर्थ की गहराई में जाएं, तो ये केवल दूध की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि श्रेष्ठता, उपयोगिता और पवित्रता का भी परिचय देता है। यूं तो संसार में बहुत सी वस्तुएं सफेद रंग की होती हैं, जैसे कपास, चांदी, चमेली का फूल, मोती और बर्फ और ना जाने क्या क्या। लेकिन इन सब में दूध को सबसे उत्तम कहा गया है, क्योंकि ये जीवन के पोषण से जुड़ा हुआ है। दूध प्रकृति का एक ऐसा अनुपम उपहार है जो जन्म के साथ ही मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन जाता है। आप जानते ही हैं, शिशु का पहला आहार दूध ही तो होता है। इसमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों से भरपूर दूध हमारे शरीर की वृद्धि और मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संस्कृति में भी दूध का विशेष स्थान रहा है। पूजा पाठ, यज्ञ, अभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में दूध का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव के अभिषेक से लेकर पंचामृत निर्माण तक दूध को पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इसे केवल भोजन नहीं बल्कि अमृत के समान महत्व दिया। श्रोताओं, दूध की महत्ता केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारे ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। आप जानते हैं, भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है। लाखों परिवार दुग्ध उत्पादन से अपनी आजीविका चलाते हैं। गांव की सुबह अक्सर दूध दुहने और उसे बाजार तक पहुंचाने की सामान्य गतिविधियों से ही शुरू होती है। अगर हम अपने दैनिक जीवन पर नजर डालें, तो दूध अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। दही, मक्खन, घी, पनीर, छाछ और मिठाइयाँ, ये सब दूध से ही तो बनते हैं। भारतीय खानपान में इसका विशेष स्थान है। त्योहारों और खुशियों के अवसर पर बनने वाली मीठी मीठी मिठाइयाँ, इन सब का आधार दूध ही तो होता है। लेकिन श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम का संदेश केवल दूध तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके रंग या रूप से नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और गुणों से आंका जाना चाहिए। दूध सफेद है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता उसके पोषण, पवित्रता और उपयोगिता के कारण है। इसी प्रकार मनुष्य की पहचान भी उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके विचारों, व्यवहार और कर्मों से होती है। आज के समय में जब हम अक्सर बाहरी आकर्षण को अधिक महत्व देने लगते हैं, तब ये छोटा सा संस्कृत वाक्य हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। जीवन में वास्तविक श्रेष्ठता वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो, जो समाज के हित में हो और जो सकारात्मक योगदान दे सके। श्रोताओं, हमारे साहित्य और संस्कृति में ऐसे अनेक सुभाषित हैं जो कम शब्दों में बड़ा संदेश देते हैं। श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम भी उन्हीं में से एक है। यह हमें गुणों की पहचान करना सिखाता है और ये समझाता है कि सच्ची श्रेष्ठता भीतर के मूल्य में होती है। श्रोताओं, दूध की एक बूंद में केवल पोषण ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन दर्शन भी समाहित है। इसलिए जब भी हम दूध का सेवन करें, तो उसके महत्व को भी याद करें और इस सुभाषित के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। याद रखें कि श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम सफेद वस्तुओं में

दूध सर्वश्रेष्ठ है और गुणों में श्रेष्ठता ही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। अब इन्हीं विचारों के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए आज की विविधा के सफर से अनुमति। फिर होगी किसी रोज आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति, 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को कल सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री

0: मंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाया। अटल टिंकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: मुख्यमंत्री ने कल बिजनौर जिले में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
1: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
0: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर और कुशीनगर में लोकार्पण तथा शिलान्यास के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे। वह आज कुशीनगर जिले के तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर में आयोजित समारोह में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम गोरखपुर में चिलुआ ताल घाट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए चिलुआ ताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। स्थायी पुलिस महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से अभी मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। करीब 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर

0: कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रस्तुत है किसान कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में प्रदेश के पूर्वी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग द्वारा आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति। 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर

0: जी हाँ दोस्तों, आपसे किया था ये वादा कि हम बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे, और लीजिए अपने वादे को करते हुए पूरा आ गए हैं हम लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है आज सुबह। मीठे गीत संगीत की सुरमई छाओ, सुबह की ताजगी भरी हवाएं और एक नए दिन की नई संभावनाएं।
1: आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा,
0: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। आप सभी को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।

0: रिंकी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाया, तो हम बता दें अपने श्रोताओं को, ये प्यारा सा गीत हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म ताजमहल से, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का था।
1: जानकारियां तो आपके पास भर भर के होती है श्रद्धा, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं सुबह तो जवाब देंगी?
0: भाई बिल्कुल, लेकिन ऐसा सवाल मत पूछिएगा जिसका जवाब देने के लिए समय कम पड़ जाए, है ना रिंकी?
1: नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, हमें पता है कि हमारे जो 30 मिनट हमारे श्रोताओं के साथ होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण है। बड़ा आसान सा सवाल है
0: जी।
1: देखिए अच्छा बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए इंसान सुबह जल्दी उठता है, दिन भर मेहनत करता है और शाम को संतोष की सांस लेता है?
0: भाई वाह, लगता है आज दर्शन शास्त्र का पेपर शुरू हो गया है, लेकिन जवाब शायद रोटी है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और संयोग देखिए आज 2 जून है और लोग इसी 2 जून की रोटी के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं।
0: बिल्कुल भाई रिंकी, आखिर रोटी सिर्फ भोजन नहीं, मेहनत सम्मान और जीवन का प्रतीक भी तो है।
1: और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ किसी की रोजी रोटी का जिक्र होते ही बात सीधे जीवन से जुड़ जाती है। रोटी छोटी सी दिखती है लेकिन इसके पीछे किसान का पसीना, मजदूर की मेहनत और परिवार का प्यार छिपा होता है ना?
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अगर आप इस समय नाश्ते की मेज पर हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं या फिर अपने काम की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आज रोटी खाना मत भूलिएगा क्योंकि आज ही रोटी के लिए हम पूरा जीवन मेहनत जो करते हैं।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना 2 जून की रोटी मिल जाए जीवन में,
0: बस बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए।
1: आज 2 जून है और रोटी जरूर खाइएगा, बाकी आप जितने पकवान चाहें वो खा सकते हैं।
0: बिल्कुल।

0: और देखिए इसी नए अवसर, नई उम्मीद और नई शुरुआत के साथ अब हम खूब सारी बातें और खूब सारी मनोरंजन के साथ जानकारियां भी अगले आधे घंटे तक अपने श्रोताओं को देते रहेंगे, है ना?
1: बिल्कुल। तो अब समय है रिंकी की आज का सुविचार भी अपने श्रोताओं को बता दिया जाए।
0: जी हाँ, तो आज का सुविचार कहता है कि सफलता का रहस्य लक्ष्य में निरंतरता और प्रयास में ईमानदारी है।
1: भाई वाह, कितनी सुंदर बात है। अक्सर हम सफलता को केवल परिणाम से जोड़कर देखते हैं, जबकि सफलता की अगली नींव रोज के छोटे छोटे प्रयासों में छिपी होती है।
0: जी हाँ, देखिए श्रोताओं, कोई भी उपलब्धि हमें अचानक तो नहीं मिल सकती, उसके पीछे अनुशासन, धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, यही बात हमारे छात्रों, युवाओं, किसानों, वैज्ञानिकों और हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर समान रूप से लागू होती है।
0: दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्य की दिशा में रोज थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन वही छोटे छोटे से कदम हमें किसी बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगे, और यकीन मानिए वो मंजिल हमारे सपनों की मंजिल होगी। क्यों श्रद्धा?
1: बिल्कुल। तो आइए आज का दिन इसी संकल्प के साथ शुरू करते हैं कि हम अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखेंगे।
0: जी हाँ, और देखिए एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि हमारे चेहरे पर मुस्कान तब भी आती है जब हम जानकारियों के साथ साथ थोड़े से अपनी पसंद के नगमे भी सुन लेते हैं, ना?
1: बिल्कुल भाई, रेडियो पर अपनी पसंद का गाना बज जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती
0: तो
1: है।
0: श्रद्धा, आज एक खूबसूरत सा नगमा अपने श्रोताओं को सुनवाने के लिए तैयार है? बिल्कुल
1: बिल्कुल।

0: जी हाँ दोस्तों, चेहरे पर खुशी छा जाती है जब हम आपसे मिलने आते हैं। और ये खूबसूरत सा नगमा हम आपके लिए लाए थे फिल्म वक्त से, गीत में आवाज थी आशा भोसले की।
1: बिल्कुल रिंकी, ये गीत इतने सदाबहार हैं कि हम कभी भी इन्हें सुनते हैं ना तो चेहरे पर खुशी के भाव आ ही जाते हैं। बिल्कुल हमारे श्रोता भी मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन रिंकी एक बात है ना, अब समय बदल रहा है ना, डिजिटल युग मतलब हो रहा है, तो आज के युग में डाक सेवाएं भी तेजी से आधुनिक स्वरूप ग्रहण कर रही हैं।

0: पारंपरिक डाकघर अब तकनीक के साथ कदम मिलाकर नई सुविधाओं और सेवाओं से लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं।
1: जी हाँ, और देखिए आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की, तो इसी विषय यानी जन जी डाकघर पर आज हम आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं। इस जानकारी में लखनऊ मंडल के डाकघर के प्रवर अधीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्रा से बातचीत कर रहे हैं रमनप्रीत सिंह। आइए सुनते हैं ये रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी।
2: नमस्कार, आज सुबह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं अवधेश कुमार मिश्रा, जो कि प्रवर अधीक्षक डाकघर लखनऊ मंडल के हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर।
3: नमस्कार
2: सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी युवाओं में जेंजी का जो दौर चल रहा है, तो जेंजी पोस्ट ऑफिस के बारे में जो सुना गया है, क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
3: जी बिल्कुल, अभी डाक विभाग ने एक पहल की है कि अपने डाकघरों को डिजिटल मोड लाने के बाद में युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं उनको जेंजी की आवश्यकताओं के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की मशीन है और उनके बैठने के लिए विशेष सुविधा दी गई है, उनके लिए कुर्सी, डिजाइनर कुर्सी, मेज और साथ में वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और कॉफी वेंडिंग मशीन, वाटर डिस्पेंसर अलग से दिया गया है कि वो एक बिल्कुल रिलैक्स मोड में आकर के वहाँ पर डाकघर को विजिट करें और उसकी सेवाओं का लाभ लें। अभी हाल ही में भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ में एक डाकघर का उद्घाटन किया गया था, तो वो अभी अपनी सेवाएं दे रहा है IM में, और अभी लखनऊ में और भी डाकघरों में को इस रूप विकसित करने की योजना है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डाकघर से युवाओं को जोड़ा जाए, हमारी सेवाओं को समझें, और चूंकि सब टेक्नो सेवी हैं नए युवा, तो टेक्नोलॉजी के साथ में उनको जोड़ करके पैसे का लेन देन, खाते से पैसे का ट्रांसफर, या अगर मान लो पार्सल बुक कराते हैं तो अभी आपको चेंज देने की, कैश देने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ एक डिजिटल मशीन है, पॉस मशीन है, उससे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक तरीके से आप समझिए कि हम लोगों ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने डाकघर को अपग्रेड किया है,
2: मतलब जेंजी अपने डाकघर आकर अपना समय भी वहाँ पर थोड़ा सा
3: व्यतीत कर सकते हैं, वो उनको बिल्कुल घर का माहौल लगेगा, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा उनके लिए, उनकी एस्पिरेशंस के लिए कि भाई डाकघर इस तरह का नहीं है कि जो पहले ओल्ड ट्रेडिशनली था, उसको नए रूप में उनके दीवारों को उनकी आवश्यकता पेंट किया गया है, कुछ डिजाइन भी बनाई गई है, और साथ में जो हमारी नई सुविधाएं उनका डिस्प्ले है, आधार है और पॉस मशीन है, खाने पीने का भी जो है वो एक सुविधा के रूप में उसको डेवलप किया गया है।
2: तो श्रोताओं को ये जानकर अच्छा लगा होगा कि डाकघर भी जो है वो हमारे युवाओं के लिए काम कर रही है, और उन्होंने ये जेंजी पोस्ट ऑफिस जो पहला अभी IIM लखनऊ में ओपन हुआ है, तो आप वहाँ जाएं और वहाँ पर अपना समय बिता सकते हैं अच्छे से और डाकघर की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये थी जेन जी डाकघर विषय पर खास बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे थे रमनप्रीत सिंह जी। और लखनऊ मंडल के डाकघर के प्रवर अधीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी हमारे साथ थे।
0: बिल्कुल, और हमें उम्मीद है इस चर्चा के माध्यम से आपको डाक विभाग के आधुनिक सेवाओं और बदलते स्वरूप के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप भी इसका लाभ उठाएंगे।
1: तो श्रद्धा, देखिए जानकारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है ना?
4: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें और अपने श्रोताओं को आज यानी 2 जून के इतिहास के बारे में, क्यों आज का दिन खास है, क्या कुछ इतिहास में आज के दिन हुआ था और किस रूप में आज के दिन को हम मनाते हैं, ये सब अपने श्रोताओं को बताएं।
4: बिल्कुल, तो क्यों ना शुरुआत की जाए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक। लंदन के वेस्ट विंस्टर एबे में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की औपचारिक ताजपोशी हुई थी आज ही के दिन। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का पहली बार टेलीविजन पर सीधा प्रसारण भी किया गया था।
1: वाह, बहुत खूब। और हम अपने श्रोताओं को बता दें, भारत के इतिहास में 2 जून और भी रूप में महत्व रखता है, क्योंकि वर्ष 2014 में आज ही के दिन भारत का 29वां जो राज्य है तेलंगाना अस्तित्व में आया था और ये भारतीय संघ का सबसे नया राज्य बना था।
4: और पहली डर्बी घुड़दौड़ सन 1780 में इंग्लैंड में पहली बार प्रसिद्ध डर्बी हॉर्स रेस का आयोजन भी आज ही के दिन किया गया था।

0: अपने श्रोताओं को बता दें 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1924 पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका में जन्मे मूल अमेरिकियों, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता है, को देश की नागरिकता प्रदान की गई।
1: और सन 1966 में 2 जून को ही अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक उतरा था।
0: 1946 में एक जनमत संग्रह के बाद इटली को राजशाही से हटाकर संसदीय गणराज्य घोषित किया गया था, वो भी श्रद्धा 2 जून का ही दिन था।
1: बिल्कुल, तो इतिहास तो हमने अपने श्रोताओं को बता दिया, तो जल्दी से बता देते हैं कि आज दिवस भी कौन कौन से हैं।
0: हाँ बिल्कुल, तो भाई अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जून को हम जो है तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि तेलंगाना आज ही के दिन एक नया राज्य भारत में बना था।
1: और आपको पता है रिंकी, आज मनाया जाता है राष्ट्रीय राखी रोड दिवस। हर साल 2 जून को ये दिवस मनाते हैं। ये दिन चॉकलेट, मार्शमेलो और मेवो यानी नष्ट के स्वादिष्ट मिश्रण वाले राखी रोड आइसक्रीम और मिठाई के इस अनोखे स्वाद का जश्न मनाने के लिए समर्पित है।
0: वाह क्या खूबसूरत दिन है। और श्रद्धा मैंने एक चीज देखी है।
1: क्या?
0: जब भी हम दिवस की बात करते हैं तो आप कोई ऐसी जानकारी, ऐसा दिवस जरूर निकाल के लाती है जिसमें मिठास से जुड़ा हुआ चॉकलेट,
1: ताकि श्रद्धा का दिन मीठा हो जाए,
0: टॉफी दिवस हो, ऐसा कोई दिन आप जरूर ढूंढ के लाती है। तो भाई बहुत मीठी मीठी सी जानकारियां आपने दी हमारे श्रोताओं को। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं थोड़ा मनोरंजन की ओर।
1: बिल्कुल, हम हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं खूबसूरत से गीत का,
0: लेकिन इस गीत के बाद बहुत सारी जानकारियां भी और भी है,
1: बने रहिए हमारे साथ।

0: कुमार सानू और चित्रा के युगल स्वरों में आपने सुना भी फिल्म विरासत का ये खूबसूरत ट्रैक।
1: मेरी रिंकी, गाने तो आपने सुनवा दी, अब देख रही ना मौसम कैसे पल पल अपना रूप बदल रहा है और हमारे श्रोता कैसे जानकारी पाएंगे कि आज के मौसम का क्या हाल रहेगा, तो क्यों ना जल्दी से मौसम की जानकारी भी दे दी जाए।
0: बिल्कुल, और मौसम की जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं IMD के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिशी। तो आइए उनसे जान लेते हैं मौसम का हाल।
1: नमस्ते सर।
2: नमस्ते
1: सर, हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज के मौसम का क्या हाल रहेगा।
2: जी, मौसम की बात करें तो मौसम आज ऐसे साफ रहेगा, फिर भी अच्छी धूप खिलेगी।
1: जी सर,
2: और जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से मौसम कुछ होना था, धीरे धीरे अब यहाँ से तापमान में इजाफा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा, दिन में थोड़ा बादलों की आवाजाही भी रहेगी।
1: जी,
2: तो कुल मिला के कहे कि आज थोड़ा सा बादलों की आवाजाही के साथ मौसम बना रहेगा और ये सिलसिला अभी 2-3 दिन तक इसी तरीके से रहेगा। बाकी एक नया पश्चिमी स्ट्रोक 2-3 दिन के बाद फिर से सक्रिय हो रहा है, तो फिर उसमें कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। तो कुल मिला देता है कि उतार चढ़ाव वाला मौसम अभी बरकरार रहेगा।
1: जी, यानी जैसे ही धूप बढ़ेगी हल्की बारिश भी हो जाएगी सर।
2: जी, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर मौसम है, तो कहीं कोई एक्सट्रीम टाइप का वेदर नहीं है, हालांकि दिन में थोड़ी गर्मी का एहसास रहेगा।
1: जी सर, सर आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर।
2: ओके, धन्यवाद।
1: मेरी इनकी मौसम की जानकारी तो हमारे श्रोताओं को मिल गई, लेकिन जो ये मौसम बदलता रहता है ना, इसका असर हमारे शरीर पर जरूर पड़ता है।
0: बिल्कुल, तो और देखिए इसमें छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सबको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता
1: हाँ।
0: है,
1: क्योंकि एकदम से ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि गले में सबसे जल्दी आपकी दिक्कत शुरू हो जाती है ना रिंकी।
0: सही कह रही हैं आप, मुझे पता है आप मुझसे ही क्यों पूछ रही हैं।
1: जी हाँ,
0: है ना। तो भाई देखिए, मैंने ये गलती की थी, मैंने ठंडा पानी पिया और उसकी वजह से मुझे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। ये पल पल बदलता मौसम बहुत हानिकारक हो सकता है, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी, तो ऐसे में अपना बहुत ध्यान रखें और जितना संभव हो उतनी सुरक्षा जागरूकता के साथ मौसम का सामना करें।
1: जी हाँ,
0: गर्मी बहुत है, लेकिन पानी जो पिए या जो आप खाद्य पदार्थ सेवन कर रहे हैं उनको जरूर जांच लें कि वो साफ सुथरे हों, स्वच्छ हों और उपयोगी हों और लाभदायक हों स्वास्थ्य के लिए, उन्हीं का सेवन करें।
1: क्योंकि कोई भी मौसम हो, जब सेहत अच्छी रहती ना, तभी आप उसका आनंद ले सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो और एक जानकारी आप हमारे श्रोताओं को देना चाह रही थी कि आज कुछ खास दिन है।
1: जी हाँ, श्रोताओं को बता दें, आज महान निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर जी की पुण्यतिथि है, तो आज है उनकी याद का दिन, तो क्यों ना सुनवा दें आपको ये खूबसूरत सा गीत।

0: भई श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुई होगी। और अब वक्त है कि आपसे अनुमति ली जाए आज के कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि हर नया दिन हमें एक नया अवसर देता है कुछ सीखने का, कुछ अच्छा करने का और किसी के जीवन में मुस्कान लाने का।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए आज का दिन केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए।
1: बिल्कुल, जब हम अपने से अधिक दूसरों का भला करते हैं ना, तो जो एक अजीब सी शांति और सुकून हमें मिलता है ना, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता है। इसी शुभकामना के साथ हमें दीजिए अनुमति फिर मिलने की।
0: और फिर मिलने का है आपसे वादा। और इसी के साथ रिंकी और
1: श्रद्धा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब नमस्ते लखनऊ से दीजिए अनुमति। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क

0: पर बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 branches also।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।

0: व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
2: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले CBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ATS ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। ATS ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर-18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।

0: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली। आप सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपने शो नमस्ते बरेली में। तो भैया उठ जाइए, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, क्योंकि आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर कार्यक्रम नमस्ते बरेली। और आइए कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है तो क्यों ना थोड़ी सी रफ्तार भरे। ये हम बात कर रहे हैं साइकिल की, जो ना केवल परिवहन के एक सस्ते टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में जाना जाता है, बल्कि हर किसी की पहली मोहब्बत, पहली चाहत भी होती है। हम सभी का बचपन की बहुत बहुत बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं साइकिल के साथ में। हम सभी अगर बात करें तो जब अपना बचपन शुरुआत करते हैं, अपने पैरों पर चलना शुरू करते हैं, तो साइकिल से हमारा नाता जरूर ही जुड़ता है। शुरुआत साइकिल से होती है, उसके बाद हम मोटरसाइकिल या फिर किसी अन्य वाहन की ओर जाते हैं, लेकिन साइकिल सबका पहला प्यार है। और इसके साथ साथ साइकिल के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। हेल्थ बेनिफिट की बात कर लें, एनवायरनमेंट के बेनिफिट की बात कर लें, या फिर हाल ही में जो ईंधन की कमी हो रखी है उसमें भी साइकिल चलाना आपको हेल्थ और एनवायरनमेंट से तो जुड़ेगा ही, साथ ही साथ आपको देश के विकास में भी सहयोग करने में काफ़ी मदद देगा। और साइकिल के इन्हीं ढेर सारे गुणों पर बातचीत करने के लिए आइए हम आपको सुनवाते हैं ये OB साइकिलिस्ट संजीव जिंदल जी से।
3: संजीव जी, कार्यक्रम झुमका किनारे का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि सब जानते हैं कि आपको साइकिल बाबा के नाम से जाना जाता है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से साइकिल चला के आप ईंधन की बचत कर सकते हैं, साथ ही साथ सेहत को भी आप सही रख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
4: सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम में बनाने के लिए, आप जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है कि ईंधन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमें ईंधन बचाना चाहिए, तो मैं तो बहुत साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ। का साइकिल ईंधन तो बचता ही बचता है, सेहत के लिए तो किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए आप दुनिया के, घुटनों के लिए, ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे गर्मी के दिन है, मैं थोड़ी सी बात भी कहना चाहता, आदमी कहता ना साइकिल चलाना मुश्किल है, ये है गर्मी है, तो बहुत से लोग जो है जो ऑफिस में ही बैठते हैं 10 से 5 10 से 6 बजे तक, वो उन्हें सुबह जाना है शाम को लौटना है, उस वक्त कोई गर्मी नहीं होती, बहाने बहुत है। यदि हमें करना हो तो बहुत चीजें हैं, सुबह वो आ जाए ऑफिस में अपनी साइकिल खड़ी कर दें, शाम को वापस आ जाए
3: जी,
4: कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट तो सेहत के, आप किसी इंटरनेट पे चले जाइए कहीं ढूंढिए, इतने बेनिफिट है, नो लिमिट।

0: आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो
1: जी
0: उसके लिए तो साइकिलिंग सबसे बेस्ट है। घुटनों के जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, घुटने पर प्रत्यारोपण कराइए, घुटने पर प्रत्यारोपण कराइए। यदि
1: जी
0: आप 5-10 किलोमीटर साइकिलिंग डेली कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ घुटने पर प्रत्यारोपण कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: जी और जैसा कि आजकल का की परिस्थिति चल रही है कि ईंधन की बचत करने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि साइकिल चलाना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: वो भी मैं कह रहा हूँ, बहुत बच्चे भी आजकल स्कूटी से स्कूल जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, आप किसी भी कोचिंग सेंटर के बाहर जाइए ऐसे लगेगा कोचिंग सेंटर नहीं है, स्कूटी बाजार है।
1: जी
0: मैं मानता हूँ बच्चों के पास टाइम नहीं है रेगुलर करने का, तो कम से कम अपने कॉलेज, कम से कम अपनी कोचिंग तो साइकिल से जा सकते हैं। उसमें ईंधन भी बचेगा और आपकी सेहत भी सही रहेगी। और ऐसे ही जो ऑफिस जाने वाले हैं जिनका फील्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं है, ऑफिस में बैठना है, वो सुबह साइकिल से जाए, शाम को लौट आए साइकिल से, उसमें ईंधन भी बचेगा, सेहत भी सही रहेगी और हमारी विदेशी मुद्रा की बहुत बचत होगी। और करना पड़ेगा
1: बिल्कुल, अगर कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ रहा, तो अगर आप चाहेंगे तो आप देश के विकास में भी अपना सहयोग दे पाएंगे, जो हालांकि अभी परिस्थितियां चल रही हैं उसमें, और साथ ही साथ अपनी सेहत में भी सुधार कर पाएंगे
0: दोनों में, राष्ट्रभक्ति भी और सेहत सुधार भी।
1: जी तो आप कुछ अगर संदेश देना चाहें खासतौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे?
0: युवा पीढ़ी को मैं यही कह रहा हूँ, आप कम से कम अपने कॉलेज, अपने स्कूल, और कई स्कूलों ने, टेंथ के स्कूलों में स्कूटी लाने पे बैन कर रखा है, स्कूटी से आप स्कूल नहीं आ सकते। आप जाइए कभी फूलबाग पे, फूलबाग पे आपको हजारों स्कूटी खड़ी दिखाई दे जाएंगी, वो वहां से स्कूटी खड़ी करके अपने स्कूल जाते हैं।
1: जी
0: तो वहां अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, स्कूलों को भी धोखा दे रहे हैं।
1: तो कहीं ना कहीं
0: उनको क्या धोखा देंगे, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, पेरेंट्स उनका उनका साथ दे रहे हैं। इतनी सी साइकिल चलाने में क्या फर्क पड़ता है, इतनी तो साइकिल चलाओ ना तो फिटनेस कैसे रहेगी। वो कहते हैं ना पुराने लोग, भी उन्होंने खाया हुआ है, खाया इतना कुछ खास नहीं हुआ है, उन्होंने मेहनत करी हुई है तो आज तक चल रहे हैं। फिर आजकल हम बार बार कहते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, तो उनके शारीरिक क्रिया तो कोई है ही नहीं आज के बच्चों की, हम इतना लालन पालन उनका लग्जरी में कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में और दिक्कतें आनी ही।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, अभी आपसे बात करते हुए भी आसपास में गाड़ियों का इतना शोर हो रहा है, उससे पता चलता है कि लोग आजकल शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहते हैं बल्कि सहूलियत ढूंढते हैं अपने लिए। लेकिन आपकी बात से जरूर लोग मोटिवेट होंगे और आगे आएंगे अब साइकिल चलाने की ओर। आपने आज ना बहुमूल्य समय दिया हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: वंस अगेन आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। और जब चलने की बात हो रही थी, अभी सेहत की बात हो रही थी साइकिल के दो पहियों के साथ, तो भाई रास्तों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। जी हाँ, बहुत दिनों से अगर हमारे शहर की बात की जाए तो शहर की लाइफ लाइन कहा जाने वाला चौपला पुल बंद चल रहा था। इस पर काम चल रहा था जिससे कि जो समस्याएं भविष्य में आ सकती थी उससे लोगों को निजात दिलाई जा सके। अब 10 जून तक पूरी होगी चौपला पुल की मरम्मत। जी हाँ, पहले ये जो समय था ये 27 जून तक का था, लेकिन अब ये काम जल्दी होगा जिससे लोगों को जो हम आए दिन सुन रहे थे ना, बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे, शिकायतें भी कर रहे थे आपस में बैठ के कि भाई बड़ी दिक्कत हो रही है, रूट डाइवर्जन है, ट्रैफिक की समस्या है और रास्ते बहुत लंबे हो गए हैं। तो लंबे ज़रूर हुए हैं लेकिन अब समय जो है वो बहुत कम हो गया है और अब बहुत जल्दी आप चौपला पुल पर एक बार फिर से उड़ान भरेंगे अपनी साइकिल पे, अपने वाहनों पे। और इसी बारे में आइए थोड़ी सी बातचीत सुन लेते हैं शहर की एक नागरिक माधुरी कश्यप से, ये क्या कहना चाहती हैं क्योंकि ये रहती हैं चौपला पुल के पास भी।
3: नमस्कार, मेरा नाम माधुरी कश्यप है, मैं बदायूं रोड बरेली से बात कर रही हूँ। अभी चौपला पुल की बात करें तो एक्चुअली क्या है कि चौपला पुल पे कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है, जो के बीच में जो गैप है बहुत ज्यादा हो गया था, जिस वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी और वो बहुत रिस्की भी था, इसलिए उसके काम के लिए चौपला पुल को अभी बंद कर दिया गया है। तो जब वो ठीक हो जाएगा तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी काफी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। मैं तो सच में कोशिश करती हूँ कि मुझे निकलना ही ना पड़े, क्योंकि हम रहते हैं बदायूं रोड पे और बदायूं रोड से हमारा सीधा रास्ता चौपले से निकल के जाता है, चौपले पुल चढ़ के हम निकल जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, हम बदायूं रोड पे रहते हैं और हमको चौपले के बगल से जो एक रास्ता होके जो सुभाष नगर की पुलिया पे खुलता है आके, हमको वहां से निकल के और फिर पुलिया पार करके फिर हमें जिधर जाना होता है वहां के लिए निकलना पड़ता है, जो कि हमें बहुत लंबा पड़ जाता है और बहुत उबड़ खाबड़ बहुत गंदा सा रास्ता है। यान मैं ऑटो से भी अगर जाना चाहूं तो ऑटो क्योंकि सुभाष नगर से जाने के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि सुभाष नगर से अगर ऑटो और गाड़ियां अलाउ कर देंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए सुभाष नगर से ऑटो अलाउ नहीं है। तो ऑटो वाले भी हमको वही उतना लंबा रास्ता लेके जाते हैं और फिर वो हमें जिधर भी जाना है, हमें शामतगंज जाना है या कहीं भी जाना, तो उधर लेके जाते हैं। और टू व्हीलर्स वगैरह

0: सभी निकल रहे होते हैं वहां से, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ के ऑटो निकल के आ पा रहा है, तो बहुत लंबा रास्ता पड़ रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी 45 डेज का टाइम दिया है, तो कोशिश करते हैं वो लोग की जल्दी से जल्दी वो लोग उसको कम्प्लीट कर दे, ताकि ये बदायूं रोड वालों की समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि जो जॉब वाले हैं, कचहरी जाना है, स्कूल जाना है, अच्छा है कि अभी स्कूल ऑफ है तो, लेकिन जो वर्किंग है, जो जॉब पे जाना है जिनको, उनको तो डेली जाना ही जाना है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा लंबा रूट पड़ जा रहा है, बहुत समय ज्यादा लग रहा है जाने आने में। किराया अगर हम ऑटो से जा रहे हैं तो किराया डबल हो चुका है, तो उसका भी पैसा ज्यादा लग रहा है, तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा समस्या हमको पड़ रही है। अभी हमें सिटी से ट्रेन पकड़नी है, तो उसके लिए भी हमें उतना लंबा घूम के, वो अभी मैं 4 दिन 5 दिन पहले ही गई थी सिटी के, मुझे एकदम से याद आया कि अरे चापला पुल बंद है, हमें लंबे रास्ते जाना पड़ेगा, तंग हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। उससे पहले जब नहीं था तो भी हमें थोड़ी, हमें बहुत समस्या होती थी। मुझे याद है जब मैं बीएससी में थी, मेरा पेपर छूट रहा था और मैं पुल के नीचे से निकल रही थी और मैं रो रही थी कि मेरा पेपर छूट जाएगा, और मैं जो क्रॉसिंग था उसके नीचे से निकल रही थी, क्रॉसिंग बंद था, तो मैं लिटरली रो रही थी, तो लोगों ने मुझे आगे किया, तब मैं अपनी साइकिल से थी उस वक्त, तब मैं जाके जैसे तैसे अपना एग्जाम देने पहुंची थी। वो समस्या हमारी खत्म हो गई, तो चापला पुल बन गया जिससे हमें बहुत फायदा है, लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है जिससे दिक्कत है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके और हम चापला पुल से धर्राटे से जैसे जाते थे वैसे जा सके।
1: तो देखिए दोस्तों, किस तरह से लोगों को कुछ दिनों में ये परेशानी हुई, लेकिन समय जो 27 जून तक का था, अब उतना लंबा इंतजार नहीं करना होगा आपको। आप 10 तारीख से इस सड़क पर फिर से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं और अपने काम जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली, कार्यक्रम है नमस्ते बरेली। तो भैया आइए अब चलते हैं कुछ शहर की खबरों की ओर, जिनको सुनकर जरूर आप एक्साइटेड हो जाएंगे, जैसे कि मैं एक्साइटेड हो रही हूँ और खुशी में फंबल भी कर रही हूँ। तो पंडित राधेश्याम कथावाचक की पांडुलिपि डिजिटल कर दी गई संरक्षित। जी हाँ, रुहेलखंड विश्वविद्यालय का जो पांचाल संग्रहालय है, जो हमारे शहर की एक बहुत ही बड़ी धरोहर है, जहाँ पर जाकर आप प्राचीन समय की बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो आपको इधर उधर कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगी, वहीं पर संस्कृति विभाग की ओर से जिले भर में से ताम्रपत्र भोजपत्र समेत प्राचीन पांडुलिपियाँ संकलित कराई जा रही हैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय की पांचाल संग्रहालय में। इसको विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराकर इन्हें डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा रहा है। अब तक पंडित राधेश्याम कथावाचक की कृति राधेश्याम रामायण की पांडुलिपि संरक्षित कर ली गई है और पांचाल संग्रहालय तुलसीमठ से भी कई पांडुलिपियां संकलित की गई हैं, इन्हें अपलोड भी किया जा रहा है। तो भाई आप अपने शहर में जाकर इतनी प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो है ना ये एक खुशखबरी बरेली वासियों के लिए। और आइए अब आपको एक और खुशखबरी दे देते हैं। भाई बरेली वासी हैं तो किसी भी तरह से अपने जो पर्यटन है या घूमने फिरने में अपने मनोरंजन में कमी नहीं छोड़ सकते। वनखंडीनाथ पार्क तैयार, लगेगी भगवान शिव की प्रतिमा। 10 एकड़ में विकसित पार्क में 18 प्रजातियों के लगेंगे पौधे, 10,000 और पौधे रोपण की व्यवस्था है। बच्चों के खेलकूद के लिए एरिया है, टेबल टेनिस कोर्ट, लिटिल लाइब्रेरी समेत अन्य कार्य भी होंगे और शहरवासियों को सैर सपाटा और पर्यटन के लिए जल्द ही एक बड़ा पार्क मिलने जा रहा है। नगर निगम ने वनखंडीनाथ मंदिर के सुंदरीकरण और नवनिर्माण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है। अब पार्क में भगवान शिव की 51 फीट ऊंची भगवान की प्रतिमा ध्यानमय प्रतिमा लगाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए नगर निगम ने सोमवार को निविदा आमंत्रित कर दी गई है। तो देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। वैसे भी हमारा शहर नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और जब यहाँ के पार्क जहाँ पर जाकर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर अगर बात की जाए और वहाँ पर भगवान का भी साथ हो, आध्यात्म का भी साथ हो, तो वो अपने आप में और ज़्यादा सुंदर हो जाता है और ज़्यादा मनोरम हो जाता है। खास तौर पर बच्चे जब उन स्थानों पर खेलेंगे तो उनको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, डिटेल मिलेगी और वो अपनी संस्कृति अपने धर्म से भी जुड़ेंगे। तो खुशियां मनाइए और अपने शहर की इन खूबसूरत अनमोल धरोहर से जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: वन सेकेंड, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। और अगर आप स्नैकिंग के शौकीन हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, तो अगली खबर है आप सभी के लिए। और बरेली वाले हैं, यूपी वाले हैं, तो खाने के तो शौकीन होंगे ही ना। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बनाएगा स्प्रिनोला से बने प्रोटीन बिस्किट। जी हाँ, अगर आपको स्नैकिंग का भी शौक है और साथ ही साथ आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फोटो बायोरिएक्टर यानी PBR से उगेगी शैवाल। 5 सदस्य केरलम में ले रहे हैं विशेष प्रशिक्षण। परसाखेड़ा में प्लांट लगाने की तैयारी। प्रतिदिन 10 किलोग्राम शैवाल बायोमास का होगा उत्पादन। वातावरण से सोखेगा कार्बन डाइऑक्साइड। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पर्यावरण अनुकूल पहल की शुरुआत की जा रही है, जो आने वाले समय में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकती है। रुहेलखंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन यानी RIF की ओर से जल्द ही स्प्रिनोला शैवाल एल्गी से बने प्रोटीन युक्त बिस्किट तैयार किए जाएंगे। इस स्टार्टअप के जो संस्थापक हैं वो अनुपम बत्रा जी हैं, और इन्होंने कहा है कि जनवरी से इस पर कार्य कर रहा है और धीमे धीमे अब जो प्रोटीन युक्त बिस्किट हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उगाए जाएंगे। साथ ही साथ ये शैवाल से बने होने के बाद भी ये बेहद स्वाद में बेहतर होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर हेल्दी हैं, तो वो चीज़ टेस्टी नहीं होगी, लेकिन ये काफ़ी टेस्टी होगी। तो जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं, उनके लिए इस तरह के उत्तम जो पोषक तत्वों से भरपूर बिस्किट्स हैं, वो स्वास्थ्य और सेहत साथ ही साथ स्वाद का एक खजाना बनकर सामने आएंगे। और आइए अब चलते हैं थोड़ा सा पढ़ाई की ओर। परिश्रम और उचित मार्गदर्शन से दिलाई JEE में सफलता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की ओर से रविवार देर रात JEE एडवांस 2026 का

परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इसमें जिले के कई होनहार ने सफलता हासिल की। परिणाम जारी होते ही विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर के विद्यार्थियों ने इस सफलता का श्रेय निरंतर मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। इनके नाम हैं आशीवास, धैर्य कुमार, ऋषभ सक्सेना, उज्ज्वल बघेल, आर्यन यादव और दिव्यांश त्यागी। तो भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए और शहर का नाम रोशन करने के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 8:45। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। पहला लोकगीत आप सुनेंगे बाल कृष्ण भारती के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी आवश्यक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 3 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डेंगू बुखार कारण लक्षण और आधुनिक उपचार शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 2 जून 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से सुन ले। विषय है डेंगू बुखार कारण लक्षण और आधुनिक उपचार शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 2 जून 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने वाले हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है चित्रलोक। लीजिए मुंबई एक्सप्रेस फिल्म का गाना सुनिए, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में, देव कोहली के बोल और संगीत इलैयाराजा का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज संगीतकार इलैयाराजा का जन्मदिन है, उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं। संगीतकार, संगीत रचयिता, संगीत संयोजनकर्ता, कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रेटर, बहुवाद्य यंत्र वादक, गीतकार और पार्श्व गायक हैं वो। और मुख्य रूप से उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के लिए कार्य किया है और उन्हें विपुल संगीतकारों में से एक माना जाता है। 39 वर्षों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने 8600 से अधिक गीतों की रचना की, 9 भाषाओं में लगभग 1523 फीचर फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया है और लोग उन्हें प्यार से मास्टरो कहते हैं। तो एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अब शमिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत इलैयाराजा का।

इलैया राजा के संगीत निर्देशन में शमिता फिल्म का ये गाना आपने सुना। और चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक ब्रेक का।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और रंजीत बारोट की आवाजों में होलीडे फिल्म का ये गाना, नीलेश मिश्रा और महबूब का लिखा हुआ ये गाना है, और इसमें जो संगीत है वो रंजीत बारोट का है।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरी आशा।
1: मणिरत्नम का शुमार सिनेमा की उन प्रतिभाओं में होता है जो फिल्म के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से अपनी बात कहना जानते हैं। यूं तो मणिरत्नम का ताल्लुक दक्षिण भारतीय सिनेमा से है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि भारत और भारत के बाहर भी है।

1956 में मद्रास यानी चेन्नई में जन्मे मणिरत्नम ने अपनी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी में की और उसके बाद मुंबई के बजाज इंस्टीट्यूट से ली मैनेजमेंट की डिग्री। फिल्मों की दुनिया में आने से पहले मणिरत्नम एक प्रबंध सलाहकार थे। मणिरत्नम के पिता गोपाल रत्नम और भाई वेंकटेश्वरन भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए थे। जाहिर है ऐसे में फिल्म माध्यम से उनका लगाव होना स्वाभाविक था।

मणिरत्नम की पहली फिल्म कन्नड़ में थी पल्लवी अनुपल्लवी। इस बीच उनकी तेलुगु और मलयालम में भी फिल्में आईं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाईं। मणिरत्नम सिनेमा की दुनिया में सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहे। 1986 में फिल्म मौनारागम बनाकर इसके सितारे थे मोहन, रेवती और कार्तिक। मणिरत्नम की अगली फिल्म थी गॉडफादर से प्रभावित नायकन, जो 1987 में आई। इस एक फिल्म ने आभास दे दिया कि मणिरत्नम आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण और निर्देशन के नायक बनने वाले हैं। इस फिल्म ने जहां प्रतिभा के धनी कमल हासन को दिलाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार, वहीं मणिरत्नम को इस फिल्म ने पहुंचा दिया सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों की पंक्ति में।

1988 में आई अग्नि नक्षत्रम, जिसने तमिल सिनेमा को दिया सिनेमा का एक नया विजुअल स्टाइल। 1989 में मणिरत्नम लेकर आए गीतांजलि और फिर 1990 में आई उनकी एक दिल को छू लेने वाली फिल्म अंजलि। लेकिन पूरे भारत में मणिरत्नम को ख्याति दिलाई कश्मीर

1993 में निर्मित थिरुडा थिरुडा नाकाम रही, लेकिन ठीक दो बरस बाद मुंबई के दंगों की पृष्ठभूमि पर मणिरत्नम ने बनाई फिल्म बॉम्बे।

राजनीति में अपने लगाव के चलते मणिरत्नम ने 1997 में बनाई एरुवर और फिर 1998 में उत्तर पूर्व की समस्या को लेकर बनाई हिंदी में दिल से।

हालांकि मणिरत्नम ने अपनी सभी फिल्में दिल से ही बनाई हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो वही हिट होती है जो पब्लिक के दिल को भा जाए।

मणिरत्नम की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित फिल्मकारों में होती है। उनके कथोपकथन में बारीकी और गहराई दोनों होती है। मणिरत्नम की फिल्मों का गीत, संगीत और नृत्य पक्ष भी प्रभावशाली फिल्मांकन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2004 में बनी युवा कभी

सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मणिरत्नम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार मणिरत्नम पर। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे संजय ढींगिया को बागपत से।
1: आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे साथियों, आपको बागपत के संजय ढींगिया का यानी मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो से हमारा बचपन से नाता रहा है, जिस आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से आज आपके समक्ष हूँ वो है आकाशवाणी बरेली। इस केंद्र से मेरा ये सफ़र जब से जुड़ा तो हमेशा जिंदगी भर का रिश्ता बन गया है। यहाँ से प्रसारित आपकी पसंद युववाणी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ, हेलो बरेली, मन भावन, लक्की थ्री और नारी संसार जीवन के अभिन्न अंग हैं। साथियों, इनके बिना पूरक नहीं है हम श्रोता। जन जन की वाणी आकाशवाणी, जय हिंद जय भारत।
0: अभी आपने सुना संजय ढींगिया बागपत से।

0: आकाशवाणी के दीवाने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम में यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी आवश्यक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 3 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 2 जून 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से सुन लें। विषय है डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 2 जून 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:20।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:20।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 होने वाले हैं। इसी के साथ समय होता है कार्यक्रम आपकी पसंद का। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी पसंद में मैं अमृता बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। ये आशा करती हूं कि आप सभी हेल्दी होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे और सुन रहे होंगे आपका अपना रेडियो चैनल 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चलते हैं उस गीत की ओर जिसको सुनने के लिए आप सभी ने पत्र भेजे हैं और कमेंट किया है। पहला गीत है फिल्म इश्क का, आवाज है उदित नारायण कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल हैं राहत इंदौरी के, संगीत है अनु मलिक का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय। इसी गीत को सुना चाहे ग्रामवा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान ने। चलते हैं अगले श्रोता की फरमाइश की ओर। ये हमें भेजी है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और परवीन सुल्ताना। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया, शोएब खान। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। उन्हील जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भीरूलाल वाक्तारिया, धाकड़ भोला वाक्तारिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाक्तारिया। बौरसड़ा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, वीमा, वैभवी, विनोद, विभूति।

अंशु बबली और प्रियांशी साहू। बहेड़ी से सीगी को सुना चाहा है इश्तियाक अहमद इदरीसी और इकरार अहमद इदरीसी ने। आर्यनगर कोकाबेलाई से ये कमेंट हमें किया है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल ने। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बेटी शालू गौतम। बागपत उत्तर प्रदेश से नमन अपार और संजय ढींगिया जी। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता यादव, विनीता, अनीता, सुनीता यादव और सूरत श्री यादव। बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, जाहिद सैफी, आबाद खां। इसी गीत को सुनना चाहा है नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजहत फातिमा अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी। ग्राम महेशपुर खेम से जिला मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और परिवार के सभी सदस्य। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट किया है सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर एक जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय, अनमोल, अंश, कुमारी करिश्मा और मुस्कान कश्यप। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। जिला नादेड़ तला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल

सात कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, ग्राम हिंगड़ी आलोद जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म इश्क का गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। कार्यक्रम है आपकी पसंद, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। आइए अब चलते हैं आपकी अगली फरमाइश की ओर। फिल्म का नाम है फकीरा, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर की, संगीत है रविंद्र जैन का। सुना चाहे आप सभी श्रोताओं ने, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, ताशु, अर्णव और सत्यमानंद, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। यह है विष्णु मस्कीन, रितिका, बेटी वाणी, बेटा आरव की मम्मी चंद्रकला, पापा काशीनाथ, भाई गणेश, बहन सोनी और आरोही प्रियांशी का। पता है दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और गौरी आरती गौरी। इसी गीत को सुनने के लिए कमेंट किया है डॉक्टर अद्भुत कुमार दीक्षित, मणिनाथ बरेली से। साथ में है परिवार के सभी सदस्य। ग्राम लसूड़िया पता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला रायगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और परिवार के सभी सदस्य। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ग्राम महेशपुर खेम, जिला मुरादाबाद से तौफीक अतीक मोहम्मद। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा, जिला बदायूं से पुष्पेंद्र, सोमेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता और सूरज श्री यादव। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट है गांव बांडीवाला फजिलका पंजाब से। लिखने वाले हैं ओम बगाड़िया, क्रियांश, योगेश बगाड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगाड़िया। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, मोहम्मद मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट बिजनौर से। इसी गीत को सुनना चाहा है जिला मुरादाबाद, ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा और साथ में है विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। शाही मार्केट सिहारा, जिला बिजनौर से आशिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अराफत अदीब और कादिर चौधरी। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और परिवार के सभी सदस्य। रामपुर लिसनर क्लब, नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से। लिखने वाले हैं नवाजुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम्माद। गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा। आर्यनगर कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल।

ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहने, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और परिवार के सभी सदस्य। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष, तन्मय, अपूर्वा गौड़ और परिवार के सभी सदस्य। रामपुर लिसनर क्लब, इनका नाम हम पहले भी शामिल कर चुके हैं। गंज डिडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान। आदर्श नगर मलोद पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और मैंडी शर्मा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और परिवार के सभी सदस्य। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से ये कमेंट हमें भेजा है नारायण भाऊ खड़ से। इनके साथ में है ललिता आशा रानी खड़ से, संजना परी खड़ से, आराध्या गणेश खड़ से, वैष्णवी कार्तिक खड़ से, देविका चौधरी, स्वाति, प्रिया चौधरी और परिवार के सभी सदस्य। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, ऋतिक, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म फकीरा का गीत लता और किशोर की आवाज में।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: दीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, आपके सोशल मीडिया कमेंट्स पर आधारित। और आइए अब चलते हैं अगली पसंद की ओर। फिल्म का नाम है लोफर, आवाज है लता मंगेशकर की, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। 14 बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर और परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुना चाहा है गांव नई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा, अलका मिठा व परिवार के सभी सदस्यों ने। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और परिवार के सभी सदस्य। शंकरलाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, जिला नादेड़ यतला महाराष्ट्र से। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया। वीनेश कुमार, रागनी और मुस्कान, बैंक सेंटर के पास चनहिटी बरेली से। इसी गीत को सुनना चाहा है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। मलियान सरधना मेरठ से ये कमेंट हमें भेजा है अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और परिवार के सभी सदस्यों ने। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयू सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का व परिवार के सभी सदस्य। हिंदुस्तान रेडियो रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये कमेंट हमें भेजा है विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने। पीपरपारा पालचुगा मुंगेली छत्तीसगढ़ से ये कमेंट है उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर का। पूजा रेडियो श्रोता संघ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव और साथ में है राजेश व परिवार के सभी सदस्य। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और तुलसी मस्कीन। फिल्म लोफर के इसी गीत को सुनना चाहा है मां भारती रेडियो श्रोता संघ ग्राम पोस्ट अक्टोहो तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से सुरेश कुमार साहू, कमलेश कुमार साहू, देवेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, रवि कुमार, धर्मेंद्र, सोनू, राघवेंद्र, भावना, यशदीप एवं समस्त साहू परिवार ने। नगला खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल शर्मा। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी।

और नंदनी कुमारी। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट है चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं वनमारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा और साथ में है जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालिका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्ठा बजाज, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोदपुरी व परिवार के सभी सदस्य, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, साथ में है नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतना नाहटा और परिवार के सभी सदस्य, गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, सहाना अंसारी, अली हैदर अंसारी और इनके साथ में है आरजू अंसारी, ताहिरा अंसारी, सना अंसारी, पुन्नी अंसारी, चांदपुर सीबीगंज बरेली से। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं ये गीत।

0: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
1: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
0: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
1: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
0: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
2: आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद 100.4 FM पर। और आइए चलते हैं अगली पसंद की ओर। फिल्म का नाम है इश्किया, आवाज है राहत फतेह अली खान की, बोल हैं गुलजार के, संगीत है विशाल भारद्वाज का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान और साथ में है अरजान, अबान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। इसी गीत को सुनना चाहे चेक 15 PSC जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन गुरमंत, और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन, और वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोसन व परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट हमें भेजा है एटा रोड गंज डिंडवारा उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम जख्मी, DH बच्चन, गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण अनीता और राहुल भाबिस्टे। फिल्म इश्किया के इसी गीत को सुनना चाहा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी व परिवार के सभी सदस्यों ने। मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, सर्वेश कश्यप, अभय मीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या एवं समस्त परिवार के सदस्य। पता है ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से। गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयात और मोहम्मद इंतजार। ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद्र, रागनी, रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट है बदायूं रोड बेहतरी रेलवे फाटक नई बस्ती चंदोसी संभल उत्तर प्रदेश से आमिन अली व परिवार के सभी सदस्यों का। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंसार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अदीम, अब्दुल गनी और परिवार के सभी सदस्य। बटंडा रोड मंडी राबली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट हमें भेजा है प्रदीप कुमार पाल उर्फ बब्बे भाई, पदरियों की वादियों से हमारा बेटा नमन, पहाड़ियों की वादियों से ही प्रिया सिंह, उषा रानी, राखी राजपूत, निया शर्मा शिवानी और परिवार के सभी सदस्य रामपुर रोड किला छावनी के श्रोता हैं ये। इसी गीत को सुनना चाहा है ककराला बदायूं से मोहम्मद से मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज, विकास सक्सेना, कर्मवीर गोसवाल, प्रवीण सिंह रावत और साथ में हैं भरत यादव, दीपक बाल।

वाल्मीकि और परिवार के सभी सदस्य। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्मी, सोनी और मोहिनी। आइए चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट हमें भेजा है गणेशपुरम बरेली से, लिखने वाले हैं मधु, ललित, इनके साथ में हैं अग्रिमा, अतीक्ष, देवांश, अग्रज और शशि। कमर कॉलोनी बड़वाहा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से ये कमेंट है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली का। सरलाही सोकनहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी और उनके प्यारी साथी। ग्राम मझुआ गंगापुर होजीपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान, समस, इनाया और शानूर, फलकनूर, ताज और मोहम्मद अबानूर गुप्ता जी और सभी परिवार के सदस्य। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट हमें भेजा है ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता ने। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट हमें भेजा है प्रभाकर गोस्वामी ने बरेली से, साथ में इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा और साथ में परिवार के सभी सदस्य। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। इसी गीत को सुनना चाहा है उमरी सब्जीपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से कासिम खान व परिवार के सभी सदस्यों ने। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर। और आइए अब चलते हैं अगले कमेंट्स की ओर और अगले गीत की ओर। आखिर किस गीत को आप सभी ने पसंद किया है, सुनना चाहा है? फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर, आवाज है साधना सरगम की, बोल है समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने? चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, जब्बार मोहम्मद, सबीहा खानम और इनके परिवार के सभी सदस्य, राम गोपाल मौर्य, सुनीता मौर्य, कृष्णा पायल, मानसी परिवार के सभी सदस्य, मौर्य बस्ती सुरखा बरेली सिटी से। इसी गीत को सुनने के लिए कमेंट भेजा है कस्बा मीरगंज के पास ग्राम हल्दी खुर्द से शकील अहमद, मिसबाह उल और शजर ने, साथ में है शमसुल निशा और परिवार के सभी सदस्य। रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन, उषा रानी, अनीता, सैफाली और साथ में है प्रिया सिंह, पिंकी प्रिंस और गरीब भाई, श्री राम राठौर और परिवार के सभी सदस्य। अगला कमेंट हमें भेजा है आशा रेडियो लिसनर एसोसिएशन मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं अभिजीत गाकवाड़ और इनके साथ में है सरिता गहानकर और प्रणिता सिद्धांत गाभनकर, अर्जुन गाभनकर और इनका नाम है या इनका उपनाम है टुक टुक। आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित और मिस ध्वनि, साथ में है प्रिंस एकांश गहानकर और परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुना चाहे दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन ने और साथ में है परिवार के सदस्य। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला और साथ में है ज्योति एवं रियांश ठाकुर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। अगला कमेंट जो है वो है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं पन्नी लाल सागर, बेनी सिंह, मा

सुन धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। पाकीजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गीत।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद 100.4 FM पर, और अब समय है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। फिल्म का नाम है जान, आवाज है मनहर उदास और अग्नि की बोल है आनंद बख्शी, के संगीत है आनंद मिलिंद का। सुना चाहे आप सभी श्रोताओं ने रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, साथ में परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहे जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम और रुखसार। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर से, जिला पीलीभीत से ये कमेंट हमें भेजा है विमल वर्मा, विनय वर्मा, इनके मम्मी पापा व परिवार के सभी सदस्यों ने। पटेल नगर मलोद पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, कृष्ण मेहर, कोमल मेहर, किरण, कपिल और कुणाल मेहर दादरी गेट भिवानी से। इसी गीत को सुनना चाहा है कटरा चांदखा मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य ने। गड़ैया बरेली से कैशर शमसी, अजीम शमसी, सलीम, नावेद, रजिया शमसी, बेबी और परिवार के सभी सदस्य। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं सुबह के 11। तो लीजिए, बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 11 और प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम सबरंग में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तृप्ति शाक्य और धनंजय मिश्रा के गाए हुए इस भजन के साथ।

0: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
1: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
0: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
1: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
0: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं सबरंग 104 FM पर और कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मिलिंद गावा की आवाज में ये गीत।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम सबरंग में अब आप सुनेंगे मधुर शर्मा की आवाज में ये कव्वाली।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 11:15। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम झुमका गिरारे। कार्यक्रम झुमका गिरारे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूँ अमृता। और झुमका गिरारे, जैसा कि नाम से ही आप सभी को पता ही है कि हम शहर से जुड़ी हुई ऐसी तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं, जो शायद पहले आपको पता हो, और अगर नहीं पता है तो हम हैं ना। और अब तो हमारे कार्यक्रम में जो जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन तमाम मुद्दों को भी लिया जा रहा है। जैसे आज ही की बात क्यों ना करें, हम सभी जानते हैं कि हमारी सेहत हमारे लिए क्या भूमिका निभाती है, कितना महत्व निभाती है। और सेहत अगर साथ में पर्यावरण और एनवायरनमेंट से भी जुड़ी हुई हो तो और ज़्यादा खास हो जाती है। तो भाई, हम बात कर रहे हैं साइकिल की। जी हाँ, हर साल 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे भी मनाया जाता है, और आज इसीलिए हम साइकिल पर कुछ बात करेंगे अपने कार्यक्रम झुमका गिरारे में। साइकिल एक ऐसा यातायात का साधन है जो ना केवल बहुत ज़्यादा सस्ता है और टिकाऊ है, और साथ ही साथ उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसके प्रयोग से तमाम ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ हैं और बहुत बड़ी बीमारियाँ भी हैं जिनसे हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। साइकिल नियमित रूप से चलाने से हृदय रोग, मधुमेह या मोटापे जैसी जो बीमारी होती हैं, जिसको हम ओबेसिटी भी कहते हैं, इसके खतरे से काफ़ी हद तक हमें निजात मिलती है, हम बचते हैं। और किफ़ायती और सुलभता की बात करें तो कम लागत में चलने वाला परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है साइकिल, और समाज के सभी वर्ग के लोग इसको चलाते हैं। कुछ अपनी रुचि के अनुसार चलाते हैं तो कुछ, विशेष तौर पर अगर बात करें कमज़ोर वर्ग की या कम आय वाले लोगों की बात करें तो वो भी साइकिल का भरपूर उपयोग करते हैं और अपनी सेहत को सही रखते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और अगर बात की जाए हालिया परिस्थिति की, जहाँ पर ईंधन के लिए इतनी किल्लत है, इतनी मारामारी है, उसमें अगर देखा जाए तो साइकिल सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प बन गई है। तो आइए इसी विषय में सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्ते, मेरा नाम रूपाली है और मैं एक साइकिलिस्ट हूँ। आज साइकिल डे है और मैं इसके उपलक्ष्य में आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। साइकिल हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है और ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बहुत बेहतर करती है और साथ ही पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी अभी सभी से अपील की है कि हमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए और साइकिल के जरिए ही हमें अपने रोज के काम निपटाने चाहिए या ऑफिस जाना चाहिए। और साइकिल के जरिए न केवल हमने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं बल्कि ट्रैफिक में भी आसानी होती है, हम बिना जाम में फंसे जल्दी अपने ऑफिस जा सकते हैं। और साइकिल चलाने से हमारे शहर का प्रदूषण कम होता है, हम रोजमर्रा के खर्चों को भी घटा सकते हैं और बच्चों को भी स्वस्थ जीवन शैली का उदाहरण मिलता है। जब हम साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो न केवल हम खुद को फिट रखते हैं बल्कि अपने आसपास का वातावरण को भी हम बेहतर बनाते हैं। तो आइए साइकिल डे पर हम सब मिलकर साइकिल को अपना हिस्सा बनाएं और एक बेहतर और संतुलित समाज की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: तो देखा आपने कि साइकिल कितनी ज़रूरी है अगर उसका सही से उपयोग किया जाए। सेहत भी है और धन की बचत भी है, साथ ही साथ ईंधन का एक

0: As I'm Pratyagri, currently I have given the 12th exam, studying in Hartman College, and I used to live in Rajendranagar. As since childhood, I used to love bicycling, but since the Narendra Modi ji have applied the rule to save petrol, so I have also take the cycle in the daily use, as it's help in the environment also, and by using cycling, we can reduce our fat. And it can also use us in a very health issues, in every kind of health issues. And also, while cycling, we can save petrol, as pollution will be controlled and the environment will be saved. As by seeing us, our youth will be used bicycle and will save petrol. As if I have taken one step forward, then my youth will take 2000 step forward, and this will save our country from being vegan, saving 1 liter petrol. So resume how many months we can save how many petrol and how many liters by consuming cycle use. So this is my message from all the youth and the upcoming people, as this is the rule that Modi ji have taken, so please save the petrol by this method. Thank you.
1: Rajendranagar mein rehte hain, राजनगर बरेली में रहते हैं।
2: अपना द्विवेदी है और मैं अलकनाथ पे रहती हूँ। मैंने बचपन से साइकिल चलाई है और साइकिल चलाने का अपने आप में एक मजा अलग ही है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि प्रदूषण इतना है। और प्रदूषण क्या होता है, जब भी कोई भी आप ईंधन वाली सवारी चलाते हो तो उससे होता है, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, तो ये सब चीजें जो है वाहन कहीं ना कहीं प्रदूषण भी करते हैं। और इस समय हमारे देश को देखते हुए, देश की स्थिति को देखते हुए, डीजल पेट्रोल की कमी की वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है सभी से कि डीजल और पेट्रोल का कम से कम उपयोग करें। तो उनका एक आह्वान भी है और आपकी सेहत का भी है। आप अपना सेहत का ख्याल रखेंगे और साइकिल चलाएंगे, निरंतर साइकिल चलाने से आपका वजन भी नहीं बढ़ता, आपकी मांसपेशियां दुरुस्त रहती हैं, ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में अच्छे से होती है और ताजी ताजी हवा खाने के लिए मिलती है और आपका कोई खर्चा भी नहीं होता है। उसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आजकल सारे लोग जो हैं एसी वाली गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, सब में डीजल और पेट्रोल की बहुत ज्यादा खपत हो रही है। और विदेशों से लड़ाइयां होने की वजह से हमारे देश में इनका डीजल और पेट्रोल का संकट बराबर गहराया हुआ है, जिसकी वजह से आगे के लिए हमको बहुत ज्यादा असुविधा हो सकती है। अगर हम लोग इस चीज को, साइकिल को अपनाएंगे, तो साइकिल हमारी सेहत भी अच्छी करेगी और पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं होगा, सेहत भी दुरुस्त, आप भी दुरुस्त, और आपकी जेब में भी कोई आप पे आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला है। जिससे कि सभी लोग अगर साइकिल चलाने लगेंगे तो सभी के घरों में, मैंने देखती हूँ मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन ज्यादातर किसी के भी घर में, बहुत ज्यादा ही गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं, उनके घर में तो साइकिल मिल जाएगी, वो भी बच्चों के पास में। लेकिन आजकल स्कूटियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर सभी लोगों को अपना स्वस्थ और सुरक्षित रहना है तो साइकिल चलाएं, क्योंकि उसमें स्पीड भी नहीं होती है जिससे आपको किसी तरीके की जानलेवा खतरा हो। साइकिल के एक्सीडेंट खतरनाक नहीं होते हैं, मोटरसाइकिल के और स्कूटरों के खतरनाक होते हैं। आपकी सेहत भी अच्छी और आपका बजट भी सही।
3: तो देखा श्रोताओं, किस तरह से लोग साइकिल को अपने जीवन में फिर से अपना रहे हैं। ना केवल बचपन की यादों को संजोए हुए हैं, बल्कि आज वर्तमान में भी वो साइकिल को एक स्थान दिए हुए हैं अपनी जिंदगी में, और अपनी सेहत, अपना धन और साथ ही साथ देश के लिए ईंधन की बचत में भी साइकिल का उपयोग कर रहे हैं।

0: चाहती हूँ।
1: दोस्तों, साइकिल हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अभी तक इतनी सारी जो हमने आपको वार्ताएं सुनाई उससे भी आपको पता चला होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है साइकिल। हमारी हेल्थ की बात हो या प्रकृति के संरक्षण की बात हो, दो पहियों पे दौड़ती हुई जिंदगी की अगर बात करें तो वो होती है साइकिल। हर किसी को अपना लेती है तो वो होती है साइकिल। हर कोई जिसके बजट में फिट बैठता है वो होती है साइकिल। और साथ ही साथ बचपन की जो यादें होती हैं वो भी दौड़ती हैं इन्हीं साइकिल के दो पन्नों के साथ। आप, मैं और हर कोई लगभग अपने बचपन में अपने नाना, दादा या फिर किसी ना किसी पिता, रिश्तेदार के साथ में साइकिल की यात्रा ज़रूर करते होंगे और ये खूबसूरत पल हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं। तो देखिए, साइकिल केवल एक परिवहन करने का या चलने का यातायात का साधन नहीं है, बल्कि ये इमोशन है, एक फीलिंग है।
2: साइकिलिंग से आप देश सेवा, शहर सेवा, नेचर सेवा तीनों कर सकते हो। देश सेवा पेट्रोल डीजल बचाकर, शहर सेवा इसके एक्सरसाइज के बेनिफिट से, और नेचर सेवा कुदरत को देखने के लिए। जब मैं बाहर निकल जाता हूँ सुबह सुबह तो नेचर सेवा हो जाती है। ओके दोस्तों,
1: तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से आप साइकिल पर सवार होकर अपनी खूबसूरत दुनिया को भी जी सकते हैं और साथ ही साथ वो सभी अच्छे काम कर सकते हैं जो साइकिल के द्वारा संभव है।
3: मेरा नाम वंदना है और हम राजनगर में रहते हैं, राजनगर बरेली में रहते हैं। साइकिलिंग हम लोग मॉर्निंग में करते हैं, मॉर्निंग वॉक की जगह हम साइकिलिंग करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि साइकिलिंग जो है वो हमारी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। हेल्थ के साथ साथ वो पोल्यूशन को भी दूर करती है। पोल्यूशन क्रिएट करने वाले वाहनों को आजकल हम सभी यूज़ करते हैं।

0: लेकिन उसके विकल्प में अब इलेक्ट्रिक साहब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी एक विकल्प है, पर साइकिलिंग इज द बेस्ट। इससे हमारे सारे मसल्स और बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बराबर बना रहता है हमारी बॉडी में, और मॉर्निंग में साइकिलिंग करना हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा रहता है। ये एक अपने आप में पूर्ण व्यायाम है।
1: तो दोस्तों, साइकिल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और आज के इस दौर में जो ईंधन की समस्या है उससे भी आप छुटकारा पा सकेंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत को भी फिट और हिट रख सकेंगे। तो आज कार्यक्रम झुमका गिरारे में साइकिल पर आधारित ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ कल वर्ल्ड साइकिल डे है तो तैयारी कर लीजिएगा साइकिल के यूज़ करने की, साइकिल का प्रयोग करने की, और अपनी ज़िंदगी में साइकिल को एक अहम हिस्सा दीजिएगा। कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झुमका गिरारी, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री K.S. शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी

0: ही याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
1: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे
1: जी,
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
1: जी।
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।

0: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
1: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है

0: वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो
4: अरे
3: भेड़िया,
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
3: चलो चलो चलो
6: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर
8: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
8: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
8: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
7: ठीक है।
5: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
2: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया

0: प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगे और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।

0: देखिए आप,
1: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अब
1: मेरा
0: अच्छा,
1: बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बबच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पास्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं FM रेनबो के कार्यक्रमों से।

आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया है कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आऊ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। विभिन्न कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण के मामले में जौनपुर जिला ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अबंस्ट ने बताया कि महिमा में शासन स्तर से रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जौनपुर को प्रदेश में पहला स्थान मिला है, जबकि 5 कोर्ट में जिले की 3 कोर्ट को प्रदेश के शीर्ष 5 में स्थान मिला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। 2026 की एशियाई खेलों में से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य केवल पदक जीतने की संभावना पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह तैयार करना है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

जी 12:04 का वक्त और ये वक्त होता है आपके दिल को छू लेने वाले कार्यक्रम शत्रुपा का, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त शिखा।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम खास कर है हमारी प्यारी प्यारी महिलाओं के लिए, जो उन्हें बनाता है हर क्षेत्र में सुपर एक्सपर्ट। तो आज दिन है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को हम क्या खास लाते हैं आपके लिए, तो आप थोड़ा गेस करिए और गेस करके हमें बताइए। और अगर नहीं गेस कर पाए तो भाई शिखा है ना यहाँ पर आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ट्यूसडे को बातें कौन सी होती हैं। तो बातें तो अभी ढेर सारी होंगी आपसे, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक मैंने लगा कर रखा है आप लोगों के लिए, तो सोच रही हूँ वो आप तक भेजूं, फिर उसके बाद बातें करते हैं ढेर सारी। तो चलिए एंजॉय करते हैं बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो सेट्स पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: सर्ना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जी 12:11 का वक्त, और दोस्तों अभी प्यारा सा ट्रैक आपने सुना, लोचा ए उल्फत हो गया। तो भाई ये प्यारा सा जो गीत आपने सुना, इसके बाद एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी अपनी दोस्त शिखा कार्यक्रम शत्रुपा में। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो सुन रहे हैं, अभी तक उन्होंने टॉपिक को गेस कर लिया होगा, क्योंकि इतने दिल से जो जुड़े होते हैं ना, हर दिन प्रोग्राम जो इतने प्यार से सुनते हैं, तो डेफिनेटली आज गेस करा होगा कि कौन सा प्रोग्राम और क्या बातें होने वाली हैं आज। और अगर नहीं गेस कर पाए तो भाई शिखा बताने वाली है कि आज हम बात करने वाले हैं फैशन की, जिसके लिए हम महिलाएं होते हैं बड़े ही क्रेजी। अच्छा दोस्तों, दादी का दौर हो या मम्मी का दौर, फैशन की एक खास बात रही है, और शायद यही वजह है कि फैशन ट्रेंड्स समय के साथ बदलते जरूर हैं, लेकिन अक्सर वापस लौट आते हैं। आज के समय में नई पीढ़ी उस दौर के कपड़े और एक्सेसरीज को नया ट्विस्ट दे रही है, जिससे वे पुराने होते हुए भी ट्रेंडी लगते हैं। ऐसा ही एक फैशन ट्रेंड लौट कर आया है। जी हाँ, ऐसा ही एक फैशन ट्रेंड लौट कर आ चुका है, जिसे कहते हैं Y2K। क्या बोलते हैं? जी हाँ, उसको बोलते हैं Y2K। तो हम आज बात करने वाले हैं कि क्या होता है Y2K। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना लगाया है वो भेज दूं आप तक। तो हमारे लिसनर्स कह रहे हैं जी हाँ भाई शिखा, गाना भेजिए, फिर हम बात करेंगे क्या होता है Y2K।

जी तो 12:22 का वक्त और प्रोग्राम शत्रुपा में आज हम बातें करने जा रहे हैं फैशन ट्रेंड Y2K के। जी हाँ, शत्रुपा में आज हम बात करने जा रहे हैं फैशन Y2K के बारे में। क्या होता है Y2K? तो आपको बता दूं, Y2K यानी ईयर 2000 का फैशन ट्रेंड, उस दशक की शुरुआत का ग्लैमरस और बोल्ड स्टाइल था। पॉप कल्चर से प्रेरित यह ट्रेंड फैशन ने नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों को जोड़ते हुए आपको नए अंदाज से जीने का मौका देता है। नई पीढ़ी के लिए यह इस गर्मी का आकर्षक केंद्र बन गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इन समर्स ये जो Y2K का जो ट्रेंड है ना, वो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। नई पीढ़ी Y2K फैशन को मॉडर्न ट्रेंड्स और पर्सनल स्टाइल के साथ कॉपी कर रहे हैं। जो पुराने दौर को नए जमाने से जोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी तक आपने इस तरीके का फैशन ट्रेंड ट्राई नहीं किया है, तो अब ट्राई करने की है बारी। क्योंकि दोस्तों, इस तरीके का जो ट्रेंड होता है ना, आप पुराने चीजों को भूलते नहीं है, आप उनको बिल्कुल नए लुक में ले आते हैं और आप खुद भी इतने ज्यादा गॉर्जियस लगने लगते हैं कि लोग वाह वाही करते करते थकेंगे नहीं आपकी। तो जरा आप देखिए कि आपके वार्डरोब में ऐसी कौन सी पुरानी ड्रेस है जिसको आप एक नया लुक दे सकते हैं Y2K फैशन ट्रेंड के साथ। तो आप दीजिए अपने आप को एक नया लुक और एक प्यारा सा गाना, हम भेजते हैं आप तक। तो चलिए एंजॉय करते हैं हम और आप दोनों ये प्यारा सा ट्रैक। और साथ में भाई, आपको ये भी देखना है कि कौन सा फैशन ट्रेंड आपको Y2K के साथ मैच करना है अपनी पुरानी ड्रेसेस और नए ड्रेसेस के मेल के साथ। तो चलिए, गाना आ रहा है, उसको एंजॉय करिए और थोड़ा दिमाग लगाइए।

जी हाँ, 12:30 का वक्त, और कहते हैं हर गम फिसल जाए जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगी, अपने को बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन बनाने लगेंगी, और वो भी नए नए टिप्स को अप्लाई करके। तो भाई क्या लगने वाली हैं आप, लगने वाली हैं स्टनिंग। तो वो स्टनिंग कैसे लग रहा है हम आपको बताते हैं। जी हाँ, हर ट्यूसडे इस फैशन सेगमेंट में, तो आज हम बात कर रहे हैं Y2K। तो जब हम बात करते हैं फैशन की, तो सिल्वर और गोल्ड शेड्स जैसे ग्लासी लुक देने वाले मटेरियल्स Y2K फैशन की पहचान है। आपको पता है ये जो शेड्स होते हैं ना, ये पार्टी वेयर, बैग, फुटवेयर और मेकअप में खूब देखे जाते हैं। उनका चमकदार फ्यूचरिस्टिक लुक उस दौर की टेक्नोलॉजी और पॉप कल्चर से प्रेरित था। उस समय जो म्यूजिक जो फेमस थी, जो कल्चर था, जो टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम का जो था 2000 का, वो उससे बहुत ही ज्यादा प्रेरित था। और ऐसे में अगर आज आप Y2K ट्रेंड को अपनाते हैं, तो उससे उसमें ही मेटेलिक जो जैकेट्स हैं, शाइनी एक्सेसरीज हैं, फिर से हम महिलाओं को आकर्षित करते हैं और एक दिखाते हैं हमको एलिगेंट। तो भाई अब एलिगेंट लगना है तो ये, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और चीजों को और अच्छे से करना होगा, और भाई Y2K जो ये ट्रेंड है उसको जरूर से अपनाना होगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी दोस्तों, 12:38 का वक्त और आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ कार्यक्रम शत्रुपा में, जिसमें आज हम बातें कर रहे हैं 2000 के फैशन की। जी हाँ, जो उस समय का दौर था, उस समय हम कौन सा फैशन अपनाते थे और आज उसको ट्रेंडी वे में साथ में यूज करके कैसे हमें देखना है एलिगेंट। तो आपको बता दूं कि Y2K फैशन में ना प्लेटेड मिनी स्कर्ट्स का खास ट्रेंड था, तो आप मिनी जो स्कर्ट्स थी वो तो ट्राई कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में उसके साथ आप लॉन्ग जो टी शर्ट हैं, जो लॉन्ग स्कर्ट्स हैं, उसको भी आप उसके ऊपर भी आप Y2K जो ये फैशन है उसको ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये हर तरीके की स्कर्ट्स के ऊपर ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो स्कर्ट के साथ आप ये टॉप पहनते हैं, आप Y2K के फैशन को साथ में जब मिक्स करके पहनते हैं ना, तो एक बोल्ड और परफेक्ट लुक देता है आपको। आज जेन जी और मिलेनियल्स ने इन्हें फिर से ट्रेंड में लाकर एक नया ट्विस्ट दिखाया है।

वे इन्हें टैक टॉप, ट्यूब टॉप और ओवरसाइज जैकेट के साथ मैच कर स्टाइलिश और मॉडर्न लुक क्रिएट कर रहे हैं। और भाई, अगर आपने स्नीकर्स, बूट्स और मिनी बैग्स साथ में अप्लाई कर लिए, साथ में ले लिया, तो भाई क्या कहने वाले हैं लोग, कहने वाले हैं क्या लग रही हो। तो इस तरीके का जो ट्रेंड है ना, बहुत ही अमेजिंग है। और हमें लगता है कि जितने भी लोग हैं, एक बार इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। और दूसरा एक चीज और बहुत जरूरी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी ड्रेस पहने वो ड्रेस हमारे अकॉर्डिंग हो, ठीक है, हम हमारी एज के अकॉर्डिंग हो, हमारा जो फिजिक है उसके अकॉर्डिंग हो। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको वो कंफर्ट देनी चाहिए। फैशन को अपनाइए, लेकिन फैशन के साथ आप कंफर्ट को मत भूलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो हम टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट भी बहुत एक ट्रेंड चलता है कि ट्रेंड टाइट कपड़े में बहुत अच्छा लुक देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइट कपड़े आप अपने अकॉर्डिंग पहनिए कि आपको वो बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में रखे, और जब आप उसको पहने तो आपको कहीं से हार्म ना हो, और साथ ही साथ आप दिखें स्टनिंग। तो जब आप इस तरीके का ट्रेंड अपनाएंगे और अपना रही हैं अगर, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक इस ट्रेंड को नहीं अपनाया तो अब अपनाने की बारी है। और साथ में आप देखिएगा कि कितना ग्लैमरस लुक आपका लगेगा और हर जगह आपको खास दिखाएगा। तो चलिए, एक प्यारा सा गाना लगा के रखा है, वो एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं अभी आपसे। स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी दोस्तों, 12:47 का वक्त और हम बात कर रहे हैं Y2K के फैशन ट्रेंड की। तो आपको बता दें कि जो Y2K का ये जो फैशन है उसमें क्रॉप टॉप को भूल नहीं सकते हैं हम लोग। जी हाँ, क्रॉप टॉप अपनी जगह वैसे ही बनाए हुए है। यह स्टाइल पहले भी ग्लैमर का प्रतीक था और आज की नई पीढ़ी इसे और भी बोल्ड अंदाज में अपना रही है। लो राइज जीन्स के साथ इन टॉप्स को पेयर कर आप पा सकती हैं ग्लैमरस लुक। Y2K ये जो फ्यूजन है ना, ये पुराने दौर की झलक के साथ साथ आज की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको भी बढ़ा रहा है, उसकी फैशन को बढ़ा रहा है। तो इस फैशन सेंस को आप जरूर से ट्राई करें और देखिएगा कि क्या भाई लगने वाली हैं आप इनको। हम कहते ना, कभी कभी कहते हैं कि भाई तुम इतने प्यारे लग रहे हो कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड्स नहीं है हमारे पास। तो कुछ आप भी ऐसे ही लगने वाली हैं जब आप ये Y2K फैशन ट्रेंड को अपनाएंगी। और साथ ही आपको एक जरूरी जो सूचना है वो भी दे दें। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि जो 31 मई 2026 थी, उसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं https://prasarbharati.gov.in/NIPP और https://akashwani.gov.in/files/NIPP.pdf। तो अब इतनी ढेर सारी बातें करने के बाद हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी जो डिमांड है वो हम भैया बिना कहे ही सुन लेते हैं। और वो डिमांड है कि एक प्यारा सा ट्रैक भेज दें हम तक। और बातें तो शिखा करती हैं, बहुत ढेर सारी करती हैं, तो बातों के बीच में एक गाना होना चाहिए। तो चलिए, गाना आ रहा है आप तक।

जी 12:54 का वक्त और कितना सही गाना प्ले हो रहा था कि कितना रिश्ता छोड़ू ना। जब आप इतने प्यारे लगेंगे ना तो आप आपको देखकर जाने का किसी का हटने का मन करेगा क्या? और हर इंसान आपसे कहेगा तेरा रास्ता छोड़ू ना, तेरा रास्ता छोड़ू ना। तो कितनी अच्छी बात इस गाने ने कह दी। और आज हम लोग बात भी तो ऐसी ही कर रहे हैं कि फैशन फैशन और वो फैशन जो हम लोगों को क्रेजी बना देता है और उसके लिए हम रहते हैं कि आज ऐसे हेयर स्टाइल करने, आज ऐसे कपड़े पहने, आज ये बैग अपनाना है और आज ऐसे हमें फुटवेयर पहनने हैं, तो हम कितना ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो आज हम लोगों ने जो बात करी, आपको एक की पॉइंट बता दूं कि जो आज हम लोगों ने फैशन Y2K के बारे में जो बात करी है ना, तो वो बिल्कुल सही है। इस समय का जो सीजन है, गर्मी का जो सीजन है ना, Y2 के फैशन ट्रेंड को अपनाने का बिल्कुल सही समय है। ब्राइट कलर जैसे पिंक, ऑरेंज, येलो और मेटालिक है ना, ये सब जो शेड्स है Y2 के लुक को और भी कहते हैं ना जीवंत बना देते हैं।

बस अभी तक अगर आपने, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर आपने इस तरीके के फैशन ट्रेंड को अभी तक नहीं फॉलो किया, अभी तक नहीं अपनाया, तो बस इन इन समर्स आपको ये फैशन अपनाना है और सबसे अलग नजर आना है। और देखिए, टाइम का इशारा भी हो गया है, 12:55 हो गए आपसे बात करते करते, और ये समय कह रहा है कि शिखा भाई बातें बहुत कर ली और अब प्रोग्राम शत्रुपा को यहीं पर करना होगा वाइंड अप। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि आपकी जो दोस्त है ना, ये अभी बहुत ढेर सारी बातें करने वाली है अगले प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत, पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीत। आप सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम अनुरोध गीत में। मैं हूँ अमृता और आज ये सफर तय करेंगे आप और मैं मिलकर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से सफर की। कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म का नाम है मैं हूं ना, आवाज है सोनू निगम और आफताब साबरी की, बोल है जावेद अख्तर के, संगीत है अनु मलिक का। सुनने के लिए पत्र भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाश रामापुरी और RS पुरी। कार्यक्रम का अगला पत्र हमें भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से। इसी गीत को सुनना चाहा है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत रानी, तवस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ ने। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से ये पत्र है, विमल वर्मा, विनय वर्मा, इनके मम्मी पापा व परिवार के सभी सदस्यों का। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं तहसील दातागन से ये पत्र भेजा है सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता यादव, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरजश्री यादव और गुनगुन यादव ने। फिल्म मैं हूं ना के इसी गीत को सुना चाहा है पटेल नगर मलोद पंजाब से, रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया ने। ये अगला पत्र है दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा का। इसी गीत को सुनना चाहा है मनकारा मंदिर BDA कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से, पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी, रचना, एकता भारती, कुमारी दिव्या, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश ने। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर ये गीत।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत 104.4 FM पर, और आइए अब चलते हैं अगले अनुरोध की ओर। फिल्म का नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी, आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल हैं देव कोहली के, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का। सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। इसी गीत को सुना चाहा है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, शीना रानी और जगमोहन प्रजापति ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। छावनी अशरफ खां, पानी टंकी के पास, होली चौक बरेली से, ये पत्र हमें भेजा है रामप्रसाद शर्मा, वंदना शर्मा, मनोरमा अजय, इनके साथ में है रीता, विनोद व परिवार के सभी सदस्य।

इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है ऊंची मस्जिद उसैद से चांदमिया आरती तवस्सुम बेगम बेटा अशद और इनके साथ में है सत्तार शमशपुरी शाहजहां बेगम अली बाबा मर्जीना अलबख्श गंजर डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम एच लल्ला एन बी मिर्जा मुनव्वर हुसैन नसरीन बेगम कहकशा अनवर

अनवर, शुभनाम शाह, गुमनाम शाह और इनके साथ में है बेनाम शाह, नामालूम शाह। सरोज चौक अमरावति महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीबन बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुश्ताबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का ये गीत।

0: 104.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। और आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। इस गीत को सुनने के लिए अनुरोध किया है आप सभी श्रोताओं ने कटरा चांद खा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। इसी गीत को सुना चाहा है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। इसी गीत के लिए अगला अनुरोध गीत आपको आगे जरूर बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम गीत भूल चुके हैं, लेकिन पहले आपके नाम पढ़ लें। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजाबी निसार अंसारी, बेटी नुजहत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी। अगला पत्र हमें भेजा है गड़ैया बरेली से कैशोर शमसी, अजीम शमसी, सलीम, नवेद, रजिया शमशी और बीबी ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। कार्यक्रम का अगला पत्र है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, लिखने वाले हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खां, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम। मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से ये पत्र भेजा है फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और रामप्रसाद शर्मा ने। भूड़ बरेली से ये पत्र हमें भेजा है मुकेश और इनके परिवार के सदस्यों ने, तो आइए आप सबको सुनवाते हैं। फिल्म सरफरोश का गीत अलका याग्निक और आमिर खान की आवाज में, बोल हैं समीर के, संगीत है जतिन ललित का।
1: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: .4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपके अनुरोध पर आधारित। और आइए अब चलते हैं अगले गीत की ओर। दीवाने लड़के को तो हमने समझा दिया, लेकिन आइए अब चलते हैं महबूब की ओर। अब कार्यक्रम में आप सुनेंगे मिथुन का गाया हुआ फिल्म क्रिएचर 3D का गीत। आवाज भी है मिथुन की, लिखा भी मिथुन ने ही है और संगीत भी मिथुन का ही है। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया और शोएब खान, ग्रामबा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान व परिवार के सभी सदस्य, गांव नईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से देव मिठा और अलका मिठा। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर का, 14-12 नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। इसी गीत को सुनना चाहे ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू व परिवार के सभी सदस्य। कार्यक्रम का ये अगला पत्र हमें भेजा है ग्राम जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन, लवेश, मुनेश देवी प्रजापति ने। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शहादरा से इसी गीत को सुनने के लिए पत्र भेजा है तुलसी मस्कीन व इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। दीपांशु होरबाल ने ये पत्र भेजा है। और आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले पत्र की ओर। शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल जिला नादेड़ येताला महाराष्ट्र से। विराटनगर नेपाल से ये पत्र हमें भेजा है अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और उनके साथियों ने। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म क्रिएचर 3D का ये गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: 102.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपके अनुरोध पर यानी पत्रों पर आधारित। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरे यार की शादी है का गीत आशा भोसले।

की आवाज में। बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत है जीत प्रीतम का। सुना चाहे है आप सभी श्रोताओं ने पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और तुलसी मस्कीन ने। इसी गीत को सुना चाहा है गोल्डन रेडियो श्रोता संगराज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। चलते हैं अगले पत्र की ओर। ये पत्र हमें भेजा है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी ने। इनका पता है बेनीपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार से। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और साथ में है अंजलि जंघेल व परिवार के सभी सदस्य। शिवहरा बिजनौर से आशिक चौधरी, अराफत चौधरी, अदीप और कादिर चौधरी। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश, आशीष, तन्मय और अपूर्वा गौड़। बैंक सेंटर के पास चनहटी बरेली से वीनेश कुमार, अग्नि श्रीवास्तव व परिवार के सभी सदस्य। अगला पत्र हमें भेजा है अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन और साथ में परिवार के सभी सदस्य। इनका पता है मलियान सरधना मेरठ से। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। फिल्म मेरे यार की शादी है के इसी गीत को सुनना चाहा है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा ने। हिंदुस्तान रेडियो मित्र, बन्ने बुजुर्ग, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप, अंश कश्यप, कुमारी करिश्मा कश्यप और कुमारी मुस्कान कश्यप। कवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं ये गीत आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर अमृता के साथ। और आइए अब चलते हैं आगे के सफर पर। अब समय है अगले गीत का और बाकी लोगों के पत्रों का। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का गीत। बोल है रानी मलिक के, संगीत है अनु मलिक का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। गांव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और यश वशिष्ठ ने। सहाना अंसारी, अली हैदर अंसारी, आरजू अंसारी, ताहिरा, सना, पुनी अंसारी, चांदपुर सीबीगंज बरेली से। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी, भाई कल्लू मिस्त्री। आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले अनुरोध की ओर। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु और परिवार के सभी सदस्य। गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। ऊपरकोट मोहल्ला चौक हुंडी बुलंदशहर से ये पत्र हमें भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरे अब्बासी परिवार ने। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी व परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्ठा बजाज ने। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत 100.4 FM पर। और आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है दिल कबड्डी, आवाज है राहत फतेह अली खां की, संगीत बोल भी है राहत फतेह अली खां के, संगीत है सचिन गुप्ता का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। शीशगढ़ बरेली से ये पत्र भेजा है इलियास इदरीसी, नजारा इदरीसी, नदीम इदरीसी, नईम इदरीसी और असद बाबू ने इसी गीत को सुनना चाहा है। उन्हील जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तारिया, भोला वाक्तारिया, प्रवीण वाक्तारिया, रियांश वाक्तारिया और प्रतीक वाक्तारिया ने। चलते हैं अगले पत्र की ओर। ये पत्र है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान का। गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला से सराजुद्दीन अंसारी, शानिया अंसारी, नसीबन बेगम, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और परिवार के सभी सदस्य। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहाने, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सहने। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म दिल कबड्डी का ये गीत।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर और अब समय है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म द जेंटलमैन से, आवाज है चित्रा और SP बाला सुब्रमण्यम की। सुनने के लिए अनुरोध किया है आप सभी श्रोताओं ने नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुसरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी और परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहा है। वीरपुर पोस्ट बिलसर, तहसील अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश से विपिन कुमार शाके, सपना शाके, रविंद्र, राजेश, रमेश चंद्र शाके, राजीव, प्रदीप शाके, रंजीत शाके, सिद्धार्थ शाके, कुमारी सुजाता, कुमारी संगमित्रा, कुमारी प्रज्ञा, कुमारी प्रतिज्ञा व इनके मम्मी पापा व समस्त शाके परिवार। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश, आशीष, तन्मय और अपूर्वा गौड़। इसी गीत को सुनना चाहा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन, अंकुश अरोड़ा ने। बहेड़ी से अंजुम भाई और खालिदा बेगम इसी गीत को सुनना चाहते हैं। जिला नादेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकर जायसवाल, गणेश जायसवाल और परिवार के सभी सदस्य। धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप। जिला बदायूं से

और आइए अब चलते हैं अगले कमेंट की ओर। यह है कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी और भाई कल्लू का। तो आइए आप सबको सुनाते हैं फिल्म जेंटलमैन का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजे हैं। ये प्रस्तुत है कार्यक्रम रस रंग। रस रंग में आज सबसे पहले सुनते हैं ये कव्वाली।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या

0: अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: रसरंग का अगला कार्यक्रम गजल गुलाम अली की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे रसरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए मुंबई से सुनते विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: जी हाँ, जरूर जुड़िए हमारे साथ आज सखी सहेली स्पेशल, यानी कि आज हमारी वर्षगांठ पर मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी से रेडियो सखी ममता सिंह की दिलचस्प बातचीत आप सुनेंगे। हिमानी जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है, हमारे परिसर में पहुंच चुकी है, 3 बजे से वो फेसबुक लाइव भी होंगी और आप उनसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज की सखी सहेली के पोस्ट के नीचे, हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे। वक्त है सदाबहार नगमे का।

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: जी हाँ साथियों, आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली। जी हाँ, आपके चहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी हमारे विविध भारती परिसर में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आज ये दिलचस्प बातचीत हिमानी शिवपुरी जी के साथ रेडियो सखी ममता सिंह की आप सुनेंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न है वो आप हमारे फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं।

3420 फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

और ये है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का आखिरी गाना, और थोड़ी ही देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा, और हमारी जानी मानी अदाकारा, जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोताओं, चार मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को जीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
1: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं, इसके पहले भी आप आ चुके हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है, तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खास तौर से विविध भारती से।
2: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो रेडियो सबसे पहला। मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी, हम लोग, पापा हमारे घर में तब तक दूरदर्शन नहीं आया था तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक कानों में गूंजती है,
1: समाचार वाचक
2: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल,
1: भूले बिसरेगी आज भी प्रसारित होता है।
2: हाँ, और वो सुनते थे और भी मजा आता था, बिना का गीत माला, कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है
1: जी।
2: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, क्योंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सब के लिए, तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ, लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिनंग था। और बचपन क्या, आजकल
1: बहुत सारे चैनल्स हैं
2: लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही है आपके, गाने बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही बचाता।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा जाता था और गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं। तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। अब बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने, बताइए हमें।
2: नहीं, क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी।

0: बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी, क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाथ जोड़ के प्रार्थना
0: हाँ,
1: किया
0: और
1: करते
0: जैसे
1: थे।
0: कोई भी भारत पाकिस्तान का या
1: हाँ,
0: भारत इंग्लैंड का
1: तो
0: कोई
1: भारत
0: भी
1: जीत
0: मैच हो तो
1: जाए।
0: भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: कमेंट्री सुन रहे हैं, तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुन लें, उसके बाद फिर हम
0: जरूर
1: और
0: जरूर।
1: आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते हैं।
0: जी।
2: तक लो।

0: तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश की बाढ़ सी आई हुई है और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ, और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे नहीं
0: बड़ा
1: लगता,
0: गहरा है
1: बहुत गहरा नाता।
0: और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चली जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई हैं तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। ये देहरादून से

0: आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया, और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इक्कड़ दुक्कड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी

0: सारी नदियां हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में,
1: जी
0: लक्ष्मण सिद्ध होता था और सोंग रिवर होती थी, तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहां स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
1: जुड़ाव बहुत
0: बहुत
1: रहा।
0: जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती है,
1: नौशिया
0: तो
1: होता
0: हम
1: है।
0: लोग प्रिफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
1: क्या बात
0: फिर
1: है।
0: मसूरी पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी, और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है,
1: जी
0: वहां की पकौड़ियां बड़ी प्रसिद्ध है,
1: मशहूर।
0: पहाड़ी पकौड़ियां बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग गन हिल पैदल चलते थे। और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर
1: अच्छा।
0: चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर
1: लग नहीं रही
0: हैं
1: कि आप शैतान थी, बहुत
0: है?
1: सीधी साधी लग रही है देखने
0: बहुत शैतान थे,
1: को।
0: मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहां पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
1: जी
0: का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चले रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादातर,
1: ओहो।
0: मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे
1: मोबाइल में
0: फोन पे,
1: घुसे
0: मोबाइल
1: रहते
0: पे, या
1: हैं।
0: अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे
1: क्या बात है,
0: हैं, बंदरों की तरह पेड़ों में आम, आजकल के बच्चों
1: जामुन
0: ने
1: खाना।
0: आप लोग को मतलब या तो
1: हाँ।
0: ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाएं, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम,
1: क्या बात
0: जामुन,
1: है,
0: अमरूद खाए हुए हैं,
1: क्या
0: उसका मजा ही कुछ और था।
1: बिल्कुल। तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी, तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए, अपने
0: हाँ,
1: माता पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
0: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के पास
1: साधन है, माध्यम
0: साधन
1: है।
0: भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था, तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस,
1: जी
0: और साइंस का ही ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी, तो जो मजा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राइव था, MSc का, मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लैबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यावसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था, लेकिन आप सोचिए उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
1: उत्तर प्रदेश था।
0: उत्तर प्रदेश था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टन, ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इनटू फिल्म्स, तो मैंने कहा नहीं, हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म्स बिल्कुल नहीं, मैं 50-55 साल पहले की बात कर रही
1: अलग
0: हूँ,
1: ही दुनिया थी
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: नहीं सोच ही नहीं सकते थे,
1: जी
0: तो खैर मैंने आप

0: उसको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं एमएससी कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का थ्री पेनी ओपेरा। इतने में एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि एनएसडी भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में। उस टाइम एनएसडी थी, अब तो खैर
1: जी
0: काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता
1: पुणे
0: में
1: में
0: है,
1: है और
0: पुणे
1: पुणे
0: में है,
1: में
0: और लखनऊ में भी अब खुल
1: जी
0: गया है भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती। तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ।
1: क्या बात
0: उसी
1: है।
0: दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे एमएस अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली।
1: वाह वाह।
0: तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से एनएसडी का भी इंटरव्यू दे
1: ओहो,
0: दिया,
1: किसी को बताया नहीं
0: किसी को नहीं बताया
1: आपके
0: घर
1: घर
0: में। और जब लेटर आया एनएसडी का सिलेक्शन का,
1: में? हाँ
0: तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही
1: हाँ एनएसडी
0: हूँ
1: करूंगी।
0: एनएसडी में। तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी, कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेस करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है। तो सब कहती कि भटजी, भटजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का,
1: बिटिया।
0: बेटी
1: हाँ
0: का,
1: जी।
0: भटजी की नौनी तो बहुत
1: हाँ
0: होशियार है। अब जैसे लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही है, सबने कह रही है भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ। मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है। और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में, नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
1: नौटंकी।
0: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड या तो भांड कहते थे,
1: बहुत बुरा
0: भांडगिरी
1: माना
0: करेगी,
1: जाता था
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: बुरा। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिहर भट्ट शैलेश, वो
1: जी
0: वहां के सब जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना, शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी, कि मैं 40 साल के हो जाऊंगी पापा, मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे एनएसडी लेकर
1: क्या बात है।
0: गए, वहां मेरा एडमिशन कराए, और वहां से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहां रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी,
1: जी
0: 250
1: जी
0: की स्कॉलरशिप से, मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगा,
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात
0: सबके
1: है,
0: खिलाफ
1: उसमें बहुत बड़ी
0: ढाई
1: बात
0: सौ
1: थी।
0: की स्कॉलरशिप मिलती थी। उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी, कि कैसे करें, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश, ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने एनएसडी रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपए पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000, हाईएस्ट जो होता था ए ग्रेड
1: उसमें
0: आर्टिस्ट,
1: बहुत बड़ी रकम थी।
0: बहुत बड़ी
1: बहुत
0: रकम थी।
1: बड़ी
0: तो
1: रकम
0: उसी में
1: थी।
0: गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे में ये मेरा सफर रहा दिल्ली से,
1: जी,
0: मतलब देहरादून से
1: देहरादून
0: दिल्ली
1: से
0: तक।
1: दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
0: गाना

0: कोई बात नहीं।
1: दोस्तों अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली और हमारे सामने हमारी विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन।

हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का। पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो

0: हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गांव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गांव है,
1: भटवाड़ी, हाँ
0: वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है। एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी ये?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी। शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी
0: जब
1: जिसने
0: अपने गांव से निकली।
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी।
0: जी
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती। तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ।
0: जी
1: तो ये मैं क्या, जब एनएसडी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी। और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी, देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ। मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई, 3 4 साल पहले एक कॉन्क्लेव हुआ था, जो प्रवासी उनको कहते हैं, जो बाहर रहते हैं
0: जी जी
1: उत्तराखंड
0: जी
1: से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं। तो हमारे उत्तराखंड, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर।
1: क्या करें। और उन उनको लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
0: कठिन
1: है।
0: जीवन
1: अभी
0: है।
1: भी मैं 3 बार देहरादून गई, लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई, क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे। और गांव में सिर्फ, मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं। महिलाएं हैं, 30 35 बूढ़ी महिलाएं, और 3 4, मतलब आई थिंक 10 15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा
0: जी
1: कमाने के लिए। और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की, तब वो आते हैं महीने में एक बार, गर्मी की छुट्टियों में। तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है ही नहीं खेती करने के लिए, और वो है। तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गाँव के लिए। तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है।
0: बहुत ही ये बड़ा
1: हाँ
0: सपना देखा है मानी जी। यहां
1: हाँ
0: पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि

0: दीदी बुआ जी ऐसे बोलते हैं गांव में ना, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, तो 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी
1: ओ
0: रास्ता है, कभी
1: जी
0: सड़क
1: बिल्कुल
0: सही
1: बिल्कुल।
0: रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो
1: बिल्कुल।
0: चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें कि चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
1: दुख हुआ होगा
0: दुख
1: फिर
0: हुआ।
1: आपको।
0: और जान मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े हैं, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी, पहाड़ में आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए हैं, और श्रोते ज्यादातर हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं, तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं
1: वो
0: सब
1: खा जाते हैं।
0: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई। और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे। और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
1: सच में।
0: अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें
1: जी
0: मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं,
1: जी
0: क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो
1: जी
0: कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले,
1: जी
0: और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में, कुछ औरतें काम कर रही है, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके, तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है। और
1: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं। और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है, हमने तो
0: बहुत
1: ये भी
0: कठिन है सारा काम,
1: हाँ
0: लड़कियां और औरतें ही करती है,
1: करती
0: घास
1: हैं।
0: काटने से
1: हाँ
0: लेके जानवर चुगाने से लेके सब
1: सब
0: काम।
1: कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं, और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में, और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: सलाम
0: बिल्कुल,
1: तो हम आपको भी कर रहे हैं
0: अरे
1: कि आप
0: थैंक यू,
1: कहां
0: नहीं
1: से
0: मैं भी
1: आई।
0: पहाड़ी हूँ, पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं,
1: जी।
0: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर, सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं ही चिपकी थी।
1: क्या बात है सचमुच। तो हम
0: हाँ
1: इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे, अभी इस
0: जरूर
1: प्रोग्राम के बाद 4 बजे, जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में, और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानीशुपुरी रखेंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी।
0: ये मेरे
1: यहाँ
0: लिए भी बहुत गौरव की बात है, और धन्यवाद, और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो
1: जी
0: एनवायरनमेंट, इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार

0: सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए जरूर, हम टैक्स दे रहे हैं
1: जी,
0: लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है निजी स्तर पर कि हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
1: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं, हाँ, आम जामुन के, बस वही हम
0: वही हम खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी। तो यहां पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
0: जी जरूर।
1: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम। और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई, देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी है, तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक एक भी होता है, मुश्किल से दो।

0: तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई, क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि
1: जी
0: मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो NSD रेपर्टरी, वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वही होता था 9 to 5,
1: जी
0: और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे
1: जी
0: मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ा पॉश कॉलोनी बन गई है,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी, और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे, तो जैसे बैठे रहते हैं। अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एक महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते हैं,
1: करती
0: देव
1: क्या
0: कौन
1: हो, काम
0: इमेजिन की आदमी की औरत रोज
1: क्या
0: सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि
1: जा
0: हम
1: रही है ये
0: कैरेक्टर
1: देखो। हाँ
0: आर्टिस्ट ना,
1: हाँ
0: हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको
1: हाँ
0: जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं NSD से फ्रेश निकली थी, तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे, तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो,
1: जी
0: क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी। तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी, ऐसी अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
1: कुछ
0: दिल
1: कुछ
0: वाले
1: होता
0: की,
1: है और
0: दिल
1: दिल वाले
0: हाँ कुछ
1: दुल्हन
0: कुछ
1: ले
0: होता है
1: जाएंगे।
0: कि रिफत भी, और दिल वाले दुल्हनिया की भी, रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार, और
1: उमराव
0: आजकल
1: जान में भी आपने काम
0: उमराव
1: किया,
0: जान में भी
1: उसमें भी
0: काम किया।
1: खास
0: और ये मेरा जो धारावाहिक है, आपने
1: विवाह।
0: सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस
1: जी
0: टाइम
1: जी
0: का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था। और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल, हप्पू की उल्टन पलटन,
1: जी जी जी
0: उसमें
1: वो
0: मेरा
1: बहुत मशहूर
0: किरदार
1: हुआ।
0: कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी, और एक तरह के रोल होते थे। लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है, और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, या बीवी नंबर
1: जी
0: वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है।
1: जी और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज के
1: जो
0: सातवां घोड़ा,
1: कि कला
0: मम्मो
1: मम्मो
0: मम्मो, हाँ
1: कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहां एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये तो।
0: कोई राज की बात नहीं, ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते तो

0: क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है।
1: जी
0: शेक्सपियर ने
1: जी
0: भी कहा है कि ऑल
1: एक
0: वर्ल्ड इज
1: रंग
0: अ स्टेज,
1: जी, रंगमंच है ये
0: रंगमंच
1: दुनिया
0: है
1: जी।
0: जिंदगी। तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: तो जिंदगी सिखाती है।
1: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने, या
0: जरूर
1: फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयां दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है।
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब ज्यादा बड़ी चीज है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना,
0: जी
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी, बताइए कि आज की युवा पीढ़ी, जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई NSD किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आएँ?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है, ये इतनी ग्लैमरस नहीं जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोणे 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं।

0: उनको काम कम मिल रहा है या जी. मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफी सारे लंबे आर्ज होते हैं और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आर्ज होते हैं, संघर्ष बहुत होता है. तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
1: लियाकत है,
0: हाँ,
1: प्रतिभा है,
0: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है. मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं. तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो जरूर आइए. लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा.
1: जी बिल्कुल.
0: और आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं.
1: बिल्कुल. और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
0: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
1: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं किस कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं. अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं. बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी.
0: देख, महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है. चाहे आप चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूव करना चाहिए. और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्टी था. मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए. क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूव करना चाहिए, करना पड़ता है. और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है. तो एक ये सब
1: दोहरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती
0: बिल्कुल,
1: है.
0: बिल्कुल.
1: और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बतौर हिमानी शिवपुरी?
0: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है.
1: बिल्कुल. और अपनी शक्ति को तलाशे और आपकी इस लंबी यात्रा
0: है. हाँ. और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है.
1: जी. अब गाना सुनवाएं एक?
0: जरूर.
1: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल.
0: जी.

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती है, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम जी, कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगी।
1: जरूर हम जरूर
0: तो
1: आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से ये प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की
2: सौ दशमलव चार मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने।
3: नमस्कार साथियों, मैं महेश कश्यप बीसलपुर जनपद पीलीभीत से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी के श्रोतियों, श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। आकाशवाणी से बचपन से ही लगाव रहा है, आकाशवाणी को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, आकाशवाणी के विभिन्न प्रोग्राम के साथ में ही हमने इतना अपने जीवन का सफर व्यतीत किया है। यूं तो कई आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम हम सुनते हैं, लेकिन आकाशवाणी बरेली से विशेष लगाव रहा है। दिन की शुरुआत भक्ति आराधना कार्यक्रम के साथ में होती है। अगर महिलाओं के कार्यक्रम की बात करें तो नारी संचार कार्यक्रम महिलाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारी पूर्ण कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। बच्चों के लिए अंकुर कार्यक्रम भी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजन पूर्ण होता है। युगवाणी कार्यक्रम में युवाओं के लिए नई नई जानकारी मिलती है, जो कि बहुत ही रुचिकर, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी युवाओं के लिए प्रदान की जाती है युगवाणी कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए भी कृषि कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं। किसान बाड़ी कार्यक्रम जो है आकाशवाणी बरेली से प्रसारित किया जाता है, जो बहुत ही जानकारी पूर्ण होता है कृषि के संबंध में। जानकारी प्रद कार्यक्रम के साथ में आकाशवाणी बरेली मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखता है। अनुरोध गीत कार्यक्रम हो गया और हेलो बरेली कार्यक्रम होगा, ये ऐसे कार्यक्रम है जो सभी के दिलों पर राज करते हैं।

0: आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें शिक्षा मनोरंजन सभी कुछ प्रदान करता है। आकाशवाणी ये बराबर भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन के कार्य जो कार्य हैं वो आकाशवाणी के साथ में बगैर किसी डिस्टरबेंस के निपटते हैं, क्योंकि आकाशवाणी एकमात्र एक ऐसा संसाधन है जिसे मतलब रेडियो जैसे कि हमने चालू करके रख दिया और अपना काम भी करते जा रहे हैं, रेडियो को भी सुनते जा रहे हैं, तो हमारे काम में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है आकाशवाणी। आज के परिवेश में यूं तो मनोरंजन के कई साधन है, सूचना प्रदान करने के कई साधन है, इंटरनेट के कई सोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आकाशवाणी की बात की जाए तो आकाशवाणी के जैसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। आकाशवाणी के 90 वर्ष गरिमामय पूर्ण होने पर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी परिवार को एक बार पुनः मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी बरेली की समस्त टीम और सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वारिस अली खान लखनऊ से हूँ। मुझे इस बात को कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं रेडियो का दीवाना हूँ। मैंने आकाशवाणी के लगभग सभी चैनल को सुना है और मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ विविध भारती को या आकाशवाणी को जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पिताजी उस समय एक रेडियो लाए थे जिसका नाम था मर्फी, और मैं अपने पापा से लड़ता झगड़ता था। मेरे पिताजी जो थे वो न्यूज के शौकीन थे और एक प्रोग्राम आता था आकाशवाणी लखनऊ में मजदूर मंडल, उसके शौकीन था, लेकिन मैं उनसे रेडियो छीन लेता था और मैं गाना सुनता था और कॉमेडी सुनता था। तब से यह सिलसिला आज तक कायम है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि रेडियो के माध्यम से हम सभी लोगों से जुड़ जाते हैं, और इस वक्त जब मैं जो चैनल सुन रहा हूँ, करीब मुझे 2 साल हो गए हैं आकाशवाणी बरेली, आकाशवाणी बरेली के एंकर के बोलने का लहजा मुझे बहुत पसंद आता है, उनका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत हमको अच्छा लगता है, कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, जिसमें खास हमको प्रोग्राम जो अच्छे लगते हैं वो है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, अनुरोध गीत, लकी चॉइस, मन भावन, और जो इस समय मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है वो 5:05 पर शाम को भजन संध्या। मैं इन प्रोग्राम को कभी भी मिस नहीं करता। और देखिए रेडियो को सुनने की से एक फायदा है कि हम अपना काम करते भी रहते हैं और प्रोग्राम सुनते भी रहते हैं। हालांकि जो मेरा चैम्बर है, लोग हंसते हैं कि आप तो चैम्बर में अपने रेडियो लगा के FM लगा के बैठे हैं, लोग TV लगाते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान देता हूं, बल्कि उनका ब्रेन वॉश करता हूं कि हमारे साथ कभी ये बात सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस जमाने में आज भी रेडियो की कितनी वैल्यू है, कितनी महत्व है। मैं आकाशवाणी बरेली के सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक हमको मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, जिससे मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सकूं, कह सकूं। मैं इस बात के साथ अपनी बात को समेटता हूं और भविष्य में भी अगर हमको मौका मिला तो मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर होऊंगा। आदाब, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। इसमें आपके सहयोग थे बोलने वाले महेश कश्यप और वारिशली। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय है एक आम नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, क्या आप उन्हें पूरा करते हैं। आपने ट्यून किया 100.4 FM, क्योंकि जहां हैं आप वहां हैं हम। कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय है आम नागरिक के क्या कर्तव्य हैं और क्या आप उन्हें पूरा करते हैं। देखते हैं पहले कॉलर कौन है। हेलो।
3: हेलो,
2: आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
3: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, कनेटा से बरेली कैंडी पास।
2: आज का विषय आपको पता है?
3: जी जी, आप नागरिक के क्या काम है
2: और क्या उन्हें पूरा करते हैं आप?
3: जी जी, देखो आप नागरिक के यही काम है कि जो भी काम है वो सबसे शुरू करें, सब

0: करें यही है कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आम नागरिक को भी काम दिया है वो पूरा करें।
1: आप करते हैं पूरा?
0: जी जी।
1: आज आपने फोन किया है कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
0: सर खिलौना फिल्म का।
1: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रिसर्च पर आपकी पसंद का ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आपकी बात आकाशवाणी के साथ, कौन साहब बोल रहे हैं, कौन कहां से बोल रहे हैं?
5: कछुआ सीलगढ़ से गुड्डू दिन से बोल रहा है।
4: आज का विषय पता है आपको कार्यक्रम का?
5: जी सर, सबसे पहले तो देखिएगा, हर आदमी को देश के लिए जो शोर से वो करना चाहिए, उसके लिए वो करना चाहिए, और जो हो सके देश की तरक्की के लिए उतार करना चाहिए। और फिर सर माँ बाप की सेवा का है सर, ये कर्तव्य है हर आदमी का, माँ बाप की सेवा करना चाहिए सर।
4: और देश के नागरिक होने के नाते देश के बनाए हुए कानून पर चलना चाहिए, देशभक्ति की भावना को रखते हुए। देश के लिए पहले हमारा देश है फिर हमारा समाज है, फिर हमारा परिवार है, इन सभी के कर्तव्यों को पूर्ण करना चाहिए। आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का? ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपके लिए गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आप साहब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर।
0: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं कुमार रेडियो क्लब सिद्धार्थ नगर रोड नंबर 6 जतनगर वरेडी से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ।
0: राजेश जी आज का विषय पता है आपको?
1: नहीं बताइए सर।
0: एक आम नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, क्या आप उन्हें पूरा करते हैं?
1: सर कायदे में तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी हमें कर्तव्य दिए गए हैं ये हमें पढ़ाई में भी बताया गया है कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं तो करना चाहिए सबको मिलजुल के। जितने भी आदेश आते हैं सरकार के, जो भी आदेश हैं, जो भी कर्तव्य हम लोगों को दिए गए हैं वो भलीभांति निभाने चाहिए।
0: और सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि जैसे कि आप मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं, नियम है हेलमेट लगाइए, आपके ही फायदे की बात है।
1: बेल्ट सीट लगाएं, हेलमेट लगाएं, अपने अपने हाथ चले, बाएं हाथ से चले, है ना, यही सब।
0: सिग्नल का जो है वो करें
1: जी।
0: सम्मान तो ये भी एक कर्तव्य है। जब आप अपने कर्तव्य को पूर्ण रखेंगे तो आपका जीवन सुखमय और सुखद होगा, सुलभ होगा, है ना। तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: आज आप हम और सभी श्रोता आइए मिलकर सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म शराफत।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।

0: और कुछ हमारे पास संदेश आए हैं। ये संदेश है कटक संत का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुरान शहर बरेली से नोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदरा मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य, स्वाति मौर्य। और ये है हमारे लिखने वाले विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वानी अरब, चंद्रकाला, गणेश काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही पियांशी सोनी, दयानंद कॉलेज भवानी पेट, सोलापुर महाराष्ट्र से लिखते हैं कि आप लिखते हैं कि अच्छे नागरिक का कर्तव्य केवल अपने अधिकारियों की बात करना नहीं बल्कि समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना है, जैसे संविधान और कानून का सम्मान करना, देश की एकता अखंडता और सद्भाव का बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण, जल, वन और जीव जंतुओं का संरक्षण करना, ईमानदारी से कर देना और नियमों का पालन करना, मतदान करना और जागरूक नागरिक बनना, जागरूकता जरूरतमंद की सहायता करना, स्वच्छता बनाए रखना, दूसरों को भी प्रेरित करना, जाति धर्म भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न करना, शिक्षा नैतिकता और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना। क्या आप उन्हें पूरा करते हैं? ये प्रश्न आत्मचिंतन का है। ये हर व्यक्ति को हर समय स्वयं से पूछना चाहिए वो अपने कर्तव्यों का कितना पालन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हर कर्तव्य को पूरी तरह नहीं निभा पाता, लेकिन यदि हम ईमानदारी से प्रयास करें, समाज और देश के हित को ध्यान में रखें, तो हम एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा नागरिक वही है जो केवल अपने अधिकार जानता हो बल्कि वो जो अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही निष्ठा से निभाता हो। देश की उन्नति सरकार से नहीं जागरूक नागरिकों से होती है।
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ। तरन्नुम जी।
2: जी सर।
1: आज का विषय बताया आपको?
2: जी,

0: आइए
1: जी, आम नागरिकों के क्या कर्तव्य है?
0: क्या आप उन्हें पूरा करते हैं?
1: जी सर, हम करते हैं, और जो नहीं होता है करने तो वो भी करते हैं, और सबको यही सलाह देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जिसका जो काम है वो करे, हर किसी को हर कुछ काम करना चाहिए ताकि अगले चल के अपने आप को ही सहायता मिले।
0: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कर्तव्य है ना, कि नियमों का पालन करना, बड़ों का आदर करना, समाज का सम्मान
1: और
0: करना।
1: छोटों को भी समझाना चाहिए कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं और अपनों से प्यार कैसे करते हैं। तब अगर अपने बच्चों को समझाएंगे तभी तो अगले चल के वो समझदार होंगे।
0: बहुत अच्छी बात कही है आपने। आज आपने फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगी, कौन सी फिल्म का?
1: जी सर, फिल्म का नाम है लोहर, गाने के बोल हैं पतली कमर लंबे बाल।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।

0: और ये संदेश हमारे पास आया, मैं देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से पालन करता हूँ, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करता हूँ, सामाजिक संपत्ति और रेल बस का पार्क का सभी का मैं बड़े ध्यान से रखता हूँ और पार्कों को भी कभी नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, पार्क और सड़क को साफ रखता हूँ, पर्यावरण के प्रति स्वयं जागरूक रहते हुए दूसरों को भी जागरूक करता हूँ। ये है गंगा सिंह रावत। और आप लिखते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों के में देश के संविधान का सम्मान करना, कानूनों का पालन करना, समय पर टैक्स चुकाना, मतदान में सक्रिय भागीदारी निभाना शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को की सुरक्षा करना और पर्यावरण वन जीवों का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। आपसी भाईचारा, जाति धर्म या भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के साथ मिलजुल कर रहें, महिलाओं का सम्मान करें। रघुनाथपुरा, जिला गंगानगर, राजस्थान, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। और ये हैं लिखने वाले हमारे पास, सादुल शहर राजस्थान, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य कि वो हमेशा अपने घर का परिवार, समाज, गांव, शहर, राज्य, देश हित में हर कार्य में अपना योगदान देवे। समाज हित, देश हित में जो कर्तव्य बनता है उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं जिला बरेली थाना में और छोड़ो के ग्राम रसलपुर इमाम बाड़े पास अल्ताफ हसन अंसारी बात कर रहा हूँ सर।
1: अल्ताफ भाई, आज का विषय पता है?
2: जी नहीं सर, बता दीजिए।
1: एक आम नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, क्या आप उन्हें पूरा करते हैं?
2: जी हाँ, एक नागरिक के बस यही कर्तव्य है, जो अगर सामने से हमारे कोई भी अगर अच्छी चीज आती है या कोई भी हमारे नागरिक करता, जैसे जो लोग हैं जो बताते हैं कि जैसे नियम लागू जो होते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए।
1: संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
2: जी जी।
1: देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें।
2: जी।
1: पर्यावरण, वन, नदी, जीव और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें।
2: जी।
1: सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, स्वच्छता बनाए रखें।
2: हाँ जी, हमारे नागरिकता संविधान मतलब समझाता है और यही हमें उनका मान्यता पर मतलब रखना चाहिए और उनका मान सम्मान भी हमें करना चाहिए।
1: क्या आज आपने फोन किया है? कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
2: जी आज हाफिज़ भाई मौजूदी की एक कव्वाली सुनूंगा, ऐ मेरे मालिक।

0: तो यही कर्तव्य है, जो अगर सामने से हमारे कोई भी अगर अच्छी चीज आती है या कोई भी हमारे नागरिक कर्ता जैसे जो लोग हैं जो बताते हैं कि जैसे नियम लागू जो होते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए।
1: संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, देश की एकता और अखंडता संप्रभुता की रक्षा करें, पर्यावरण, वन, नदी, जीव और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, स्वच्छता बनाए रखें।
0: हाँ जी, हमारे नागरिकता संविधान मतलब समझाता है और यही हमें उनका मान्य तात्पर्य मतलब रखना चाहिए और उनका मान सम्मान भी हमें करना चाहिए।
1: क्या आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
0: जी आज हाशिम टाइम मूवी की एक कव्वाली सुनूंगा, है मेरे

0: बाबू और कृष्णानूर, एक आम नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में मुख्य धारा और आधार होते हैं। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और संवैधानिक और नागरिक भाईचारा, सद्भाव, धर्म, भाषा और क्षेत्र में से ऊपर उठकर सभी देशवासियों में आपसी भाईचारा बढ़ाना, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान, आज़ादी की लड़ाई को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजो कर रखना, उनका पालन करना, ये सब है।
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
2: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। सर
1: आपका स्वागत है। आज का विषय पता है आपको?
2: जी विषय कौन सा सर जी?
1: एक आम नागरिक के क्या कर्तव्य, क्या आप उन्हें पूरा करते हैं?
2: हाँ जी सर जी, बिल्कुल कर्तव्य को पूरा करते हैं।
1: जैसे
2: हर, जैसे हम भारत देश के वासी हैं और हमारा नागरिक का कर्तव्य होता है, हमारे शहर में साफ सफाई तो करते हैं हम, कचरा गाड़ी भी जो आती है उसका अंदर कचरा डालते हैं, गीला और सूखा कचरा दोनों हम रखते हैं अलग अलग। और अब ये बारिश का समय आ रहा है तो बारिश के समय में हम एक पेड़ माँ के नाम, यह भी एक आयोजन चलाएंगे सभी कॉलोनी के अंदर मिलकर कि हम एक पेड़ को लगा सके, हर जगह एक पौधे रोपण करें बगीचा में और उसका देखरेख भी करें सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
2: बिल्कुल सर जी, वो राष्ट्रगान का भी सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रध्वज का भी सम्मान करना चाहिए
1: और शिक्षा का महत्व समझे और बच्चों को शिक्षा दिलाएं।
2: बिल्कुल सर, शिक्षा तो दिलाना चाहिए सर बच्चों को। हमने हमारे बच्चों को भी आज कॉलेज तक के दोनों बच्चों को पढ़ाई कर रही है। और अगर कोई ऐसे बच्चे आपको दिखे कि जो स्कूल में नहीं जा पाते हैं तो उनकी भी मदद करें ताकि वो बच्चे भी स्कूल जा सके। अगर आपके बच्चों ने वो 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है और अगर ऐसा बच्चे कोई आपको मिल जाए कि उनको 10वीं की कॉपी किताब रखे तो वो पानी को बेचे नहीं, आप अपने उन दूसरे जो बच्चे हैं गरीब उनको दे दें।
1: आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
2: ये देश जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ।
1: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का।

और कुछ संदेश हमारे पास है, ये है जिला मुरादाबाद दूल्हा पूर्व उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, कराज पाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष, सोनी मोनी, ऋतिक बलबीर और तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, फैलिन खान और

0: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ सर, मैं बनिया पारा धमतरी से बोल रहा हूँ, रामचंद्र मटिया कत्र भाई।
0: आज का विषय पता है आपको?
1: हाँ सर, नागरिकता का कर्तव्य ना,
0: तो इस नागरिक कर्तव्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
1: भारत के नागरिक हैं तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जहाँ भी रोड में सिग्नल हो उनका पालन करें, और देश में हो रहे जो पर्यावरण है उसकी भी समस्या हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य नागरिक का कि पेड़ वगैरह उगाएं जिससे ऑक्सीजन मिले और पेयजल पानी की समस्या दूर हो।
0: बिल्कुल
1: और
0: सही,
1: दूसरा, सफाई में भी कर्मचारी आते हैं, उनका भी हमें सहयोग करना चाहिए।
0: बताइए। और
1: और जब भी हम सार्वजनिक स्थानों पर हों, कूड़ा कचरा न करें, हो सके तो अपने साथ कोई ऐसा थैला वगैरह ले जाएं जहां हम कोई भी वस्तु अगर कुछ दिखता है तो जहां तक हमारा फर्ज हो हम उसको एकत्रित करके एक जगह व्यवस्थित करके रखें,
0: बिल्कुल
1: चाहे हाथ से हो या पैर से। थोड़ा जैसे कोई केले का छिलका खा के फेंक देता है तो हम दुकान के सामने से उठा के झिल्ली से अपना डब्बे में डाल देते हैं, फिर ले जाते हैं।
0: आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: मेरे भारत देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई।
0: क्या भेज रहे हैं आप क्रेडिट सेट पर आपके लिए ये
1: ओके
0: गीत?

के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है।

0: बोलिए हेलो,
1: हेलो
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
1: जी, मैं उसी बात कर रही हूँ, मुजफ्फरपुर।
0: आज का विषय एक आम नागरिक के क्या कर्तव्य है, क्या आप उन्हें पूरा करते हैं?
1: मैं उसको जरूर पूरा करती हूँ, क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं और ये नागरिक का ये हक बनता है कि हमें जो भी इसके रूल्स वगैरह आएंगे उनको फॉलो करना चाहिए और हमें इसके प्रति जागरूक भी रहना चाहिए।
0: देश की एकता और अखंडता की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए,
1: जी,
0: शिक्षा का महत्व को समझना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करना
1: क्योंकि
0: चाहिए।
1: जब बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश एक जागरूक होगा।
0: पर्यावरण, वन जीव और जीव जंतुओं, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए,
1: जी,
0: है ना?
1: यातायात नियमों के पालन करना चाहिए और सब एकता में रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है।
0: और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और स्वच्छता का बना ध्यान रखें, है ना? ये करते हैं आप?
1: यस, मैं जरूर फॉलो करती हूँ।
0: ठीक है, आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगी, कौन सी फिल्म का?
1: नो एंट्री।
0: नो एंट्री, ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रजिस्टर पर आपकी पसंद का गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कार्यक्रम विवरण,

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। 5:30 पर नारी संसार कार्यक्रम होगा, जिसमें वार्ता होगी महिला सशक्तिकरण का महत्व। वार्ता करूंगी सुश्री पूजा। 6:00 आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम, जिसमें आज का सवाल होगा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, और साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम भी सुनवाया जाएगा। 6:30 आप सुनेंगे किसान वाणी, हेलो किसान, खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय समस्याएं व समाधान, इस पर डॉक्टर नेहा जोशी से आपको जानकारी दी जाए दिलवाई जाएगी। 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम होगा, वार्ता होगी ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार। वार्ताकार होंगे मोहित कुमार।

कल की सभा में प्रातः 8:15 पर यंग बरेली कार्यक्रम होगा। 8:45 पर लोकगीत आप सुन सकते हैं। 9:00 से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। 10:05 तक आकाशवाणी के दीवाने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आपको हम सुनवाएंगे। 10:05 पर आप सुनेंगे आपकी पसंद सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम होगा। 11:00 सबरंग कार्यक्रम हम पेश करेंगे। 11:30 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा। 12:00 FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 1:00 अनुरोध गीत पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 2:00 आप सुनेंगे रसरंग गजल कव्वाली लोकगीत और 4:00 आकाशवाणी के दीवाने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम होगा। 4:05 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे।

5:05 पर कल आप सुनेंगे भजन संध्या। 5:30 बजे नारी संसार कार्यक्रम होगा। वार्ता होगी घर सुख समृद्धि और संगठन का आधार, और वार्ताकार होंगी रचना शंखधार। युववाणी आप सुनेंगे 6:00 बजे, और 6:30 बजे एक होगा कार्यक्रम किसान बाड़े, इसमें चर्चा होगी, साथ ही कृषक गोष्ठी होगी, खेती एवं पशुपालन से अधिक उत्पादन कैसे लें। इसमें राकेश शर्मा और सुरेंद्र से आप ये कार्यक्रम सुनेंगे। 7:31 पर अनुरोध गीत कार्यक्रम होगा। 8:00 बजे से हम लखनऊ से रिले करेंगे विविध कार्यक्रम।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या। भजन संध्या में आइए सुनते हैं ये भजन

ईश्वर की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा, ये वो रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो सदैव साथ रहते हैं। दुनिया के अन्य रत्न शरीर छूटते ही हमें छोड़ देते हैं, तो क्यों ना उन रत्नों को प्राप्त करें जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेंगे।

अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन आपने सुना। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण और साथियों की आवाज़ों में। आज बड़ा मंगल है, भगवान महावीर का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय कार्यक्रम नारी संसार में। आपकी रेडियो हम सफर, रेडियो सखी अनुप्रीता सिंह यानी मेरे साथ। सखियों, ये सफर हमारा बहुत ही सुहाना रहता है और ये जो समय होता है 5:30 से 6 बजे तक का, ये मुझे लगता है कि मेरा 24 घंटों का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इसमें मैं रूबरू होती हूँ अपनी सखियों से। अच्छा सखियों, हम हमेशा कहते हैं कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, मदद करनी चाहिए, हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, कभी किसी के काम को ना नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये चीजें हमें भी कभी कभी कितनी भारी पड़ जाती हैं ना। अक्सर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी को काम के लिए मना कर देंगे तो वो कहेगा देखो मेरा काम नहीं किया, और ये सोचकर हम हाँ में हाँ मिला देते हैं या किसी के हर काम को हाँ कह देते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि हमारे बहुत ज़रूरी काम भी रह जाते हैं और वो ऐसे रह जाते हैं कि शायद वो दोबारा नहीं हो पाते हैं या उनको करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो भाई ठीक है, सबकी हेल्प कीजिए, सबके काम आइए, लेकिन कभी कभी ना कहना भी सीखिए।

0: सखियो, अब मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल। एनीमिया होने पर क्या खाना चाहिए? सखियो, सवाल एक बार पुनः सुने। एनीमिया होने पर हमें क्या क्या खाना चाहिए? और इसका जवाब मैं दूंगी आपको कार्यक्रम के अंत में। तब तक मुझसे जुड़े रहिए। और अब समय हो चला है वार्ता का। विषय है महिला सशक्तिकरण का महत्व। वार्ताकार है सुश्री पूजा।
1: नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं आपके साथ एक विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। विषय है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से इतना सक्षम बनाना कि वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सकें।

सके। यह केवल महिलाओं को अधिकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सम्मानित नागरिक बनाने की एक प्रक्रिया है। किसी भी समाज में या राष्ट्र की प्रगति में तभी यह सब संभव है जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त हों। इसलिए किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त हों। इसीलिए महिला सशक्तिकरण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। भारत जैसे देश में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक उतार चढ़ावों से गुजरी है। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षित, संपत्ति और समाज में संपन्न, समाज में सम्मान प्राप्त था। वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी और कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख इतिहास में मिलता है। लेकिन आज के समय के साथ सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों और भेदभाव ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर दिया है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और शिक्षा से वंचित रखे जाने जैसी समस्याओं ने महिलाओं के विकास को रोक दिया है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आधार शिक्षा है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह केवल स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है। शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करती है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। आज सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाने लगी हैं, जो सकारात्मक बदलाव का संकेत है। आर्थिक स्वतंत्रता भी महिला शक्तिकरण का महत्वपूर्ण भाग है। जब महिलाएं नौकरी, व्यवसाय या अन्य कार्यों के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तब वे अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती हैं। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक, पायलट, पुलिस अधिकारी और राजनेता के रूप में देश की सेवा कर रही हैं। वे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और अन्य वैज्ञानिक स्थानों में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। पंचायतों और नगर कार्यों में भी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि देश की नीतियां बनाने और नेतृत्व करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि महिला नेतृत्व क्षमता में किसी से कम नहीं है। महिला शक्तिकरण केवल कानून बनने से संभव नहीं है बल्कि समाज की सोच बदलने से भी संभव है। आज भी कई स्थानों पर महिलाओं को भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई परिवारों में लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। यह मानसिकता समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए आवश्यक है कि अपने बच्चों को समान शिक्षा दें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। महिलाओं की सुरक्षा भी सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि महिला सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो वह स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगी। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विरोधी कानून और दहेज निषेध अधिनियम। इसके बावजूद इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। समाज के प्रति व्यक्तियों को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। तकनीक और डिजिटल शिक्षा ने भी महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से भी महिलाएं नई जानकारियां प्राप्त कर रही हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले रही हैं और घर बैठे
रोजगार के अवसर भी

0: प्राप्त कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे उद्योग चला रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। इससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। महिला सशक्तिकरण का केवल प्रभाव महिलाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, तो पूरे समाज और राष्ट्र के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, तब परिवार का स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इससे देश की प्रगति तेज होती है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी महिला समानता और अधिकारों को मानव अधिकार का आधार मानती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और समाज भी उन्हें समान अवसर प्रदान करें। परिवार, विद्यालय और समाज को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां महिलाएं बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को पूरा कर सकें। पुरुषों को भी महिलाओं के सहयोगी और सम्मान्यकर्ता बनना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों समाज के दो समान पहिए हैं। अंत में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र के विकास का प्रश्न है। जब तक महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करे, तब उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। एक सशक्त महिला ही सशक्त परिवार, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते। नमस्कार
1: सखियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता। विषय था महिला सशक्तिकरण का महत्व। वार्ताकार थी सुश्री पूजा।

0: सखियो, मैंने आपसे किया था सवाल, एनीमिया होने पर क्या क्या खाना चाहिए। और अब मैं लेकर आई हूँ अपना सेगमेंट इनसे भी लिए। विषय है गर्भवती महिलाओं में एनीमिया, कारण और निवारण। और हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर उषा जैन जी। और उषा जैन बताएंगी, जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका उत्तर भी इसी में है, तो सखियो इसको सुनना ना भूलिए। नमस्कार सखियो, आज हम आपको अपने नए सेगमेंट इनसे मिलिए में मिलवा रहे हैं डॉक्टर उषा जैन को। और हमारा आज का विषय है कि गर्भवती महिलाओं में जो एनीमिया की समस्या पाई जाती है, वो क्यों पाई जाती है। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार जी, मेरा कहना ये है कि जो आजकल गर्भवती महिलाओं में उनकी जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमारा खान पान जो है और रहन सहन जो है वो फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं,
0: जी
1: और जो खाने की चीज़ें हैं जिनसे फ़ायदा होता है वो चीज़ें नहीं खाती हैं, जैसे कि दूध है, फल है, हरी
0: जी
1: सब्जियां हैं,
0: जी
1: ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, और पूरी नींद भी उनको नहीं मिल पाती है।
0: तो जैसे कि आपने बताया कि खान पान ऐसा नहीं है, इस वजह से यह समस्या होती है। एनीमिया की कमी ना हो गर्भवती महिलाओं में, उसके लिए उन्हें क्या-क्या एक्स्ट्रा खाना चाहिए।
1: गर्भवती महिलाओं में खून की कमी ना हो उसके लिए उन्हें जैसे कि खजूर है, अनार है, सेब है, फल है, दूध है, दही है, पनीर है, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात बता रही हैं मैम कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को तो नुकसानदेह होती हैं, साथ ही साथ उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी नुकसान देती हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आपने बताया कि नींद भी डिस्टर्ब होती है इन चीज़ों से, तो गर्भवती महिलाएं जो हैं, एक तो वैसे भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनसे नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन ऐसा क्या करें कि उनको प्रॉपर नींद आए, क्योंकि नींद आना भी बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में।
1: उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो पानी ज़्यादा पिए
0: जी
1: और दूसरा ये है कि थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी करें, योगा कर सकते हैं और चलना, जैसे कि मॉर्निंग वॉक है या शाम को चलना है, या घर में ही थोड़ा बहुत चहलकदमी करती रहें, जिससे कि जो है उनको थोड़ी बॉडी एक्टिव बनी रहे और नींद प्रॉपर आ जाए।
0: बिल्कुल, ये बात भी ठीक है कि जब हमारी बॉडी थोड़ी एक्टिव होगी तभी हमें नींद भी अच्छी आएगी। ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं सखियों, और वैसे तो ये सभी चीज़ों का ध्यान सभी को रखना चाहिए, लेकिन जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं के लिए और कोई सजेशन देना चाहेंगी जिससे वो और उनका शिशु

0: रहे, उसके लिए उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी खून की जांच है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर वगैरह, वेट है, लगातार अपना जो है जांच कराती रहे कि उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही।
1: तो रेगुलर चेकअप कराना,
0: चेकअप कराना जरूरी है, और अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के भी बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ देखती रहे, और अगर ज़रूरत है इलाज की तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट।
1: बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आपने सुनी ये हमारी जो छोटी सी भेंट वार्ता थी, और हमारा विषय था गर्भवती महिलाओं में एनीमिया कारण और निवारण, और हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर उषा जैन।

सखियों, मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि अनीमिया की कमी कैसे दूर होती है या अनीमिया को दूर कैसे किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल सा है सखियों, अपना जो हमारा डाइट है उसको अच्छा रखिए, और जैसे अनार हो गया, मतलब चुकंदर हो गई, इस टाइप की चीजें खाइए। और पानी, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है, पानी जरूर पीना है, प्यास लगे या ना लगे। ये मौसम भी गर्मी का है तो पानी को अनदेखा बिल्कुल मत कीजिए। और अब जो है समय आगे और अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सखियों से इस प्रॉमिस के साथ अनुमति ले रही हूं कि कल मैं आपसे फिर इसी समय मिलूंगी। तो दीजिए अपनी रेडियो सखी अनुप्रीता सिंह को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिलें तो वहाँ हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल आदाब, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का। स्वागत करती है आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक आपका आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में। दोस्तों, देश का युवा देश का भविष्य है। अगर युवा चाहे तो अपने अंदर वह ऊर्जा ला सकता है कि पहाड़ों को भी हिला सकता है। कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझो, अपनी असफलताओं से डरो मत, क्योंकि हर हार एक नया सबक सिखाती है। उठो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को सच करने के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि वक्त आपका है, इसे फालतू कामों में बर्बाद मत करो। अक्सर युवा किसी काम की शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करते हैं, मैं अपनी ही कह लूँ, एकदम से लगता है कि मैं ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, लेकिन अगर मुझे तुरंत परिणाम ना मिले तो निराशा होती है। पर याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होता है। कबीर दास ने कहा है, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिल पर परत निशान। कि जिस तरह कुएं से पानी खींचते समय बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, ठीक उसी तरह निरंतर अभ्यास करने से एक मंद बुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है, कुशल बन सकता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत की मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वे एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन परीक्षा में उनका 9वां स्थान आया जबकि सिर्फ 8 सीटें थी। लेकिन वे निराश नहीं हुए, हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी दिशा बदल दी, विज्ञान के क्षेत्र में दिन रात कड़ी मेहनत की और आगे चलकर उसी भारतीय वायुसेना के सुप्रीम कमांडर बने। वे कभी भर्ती नहीं हो पाए। हम अपने युवा साथियों से यही कहेंगे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े होएगी बहुरी करेगा कब। तो साथियों, कल पर मत छोड़िए, जो करना है आज ही कर लीजिए। जैसे हम हमारे साथियों की फरमाइशों को अभी आज इसी वक्त पूरा करेंगे। फरमाइश आई हमारे पास विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वानी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही प्रियांशी, इनकी फरमाइश है सोलापुर महाराष्ट्र से। अगली फरमाइश आई है सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ की, धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यान पाल कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप,

अंश कश्यप, करिश्मा कश्यप, कुमारी मुस्कान कश्यप, ये फरमाइश भेजने वाले श्रोता है हमारे बधाइयों से। अगली फरमाइश हमारे पास आई है पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति मौर्य की। फरमाइश अगली आई है रोड की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा की। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पे ये सॉन्ग।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?

0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आसमान में सूरज का पहरा है, इस बार गर्मी का रंग कुछ गहरा है, हवाएं भी जैसे आग के गोले बन गई हैं, हर शख्स अपनी छांव में ठहरा है। बाहर अभी 6 बज रहे हैं दोस्तों, और धूप को देखकर तो यही ख्याल आया, तो सोचा अपने साथियों को बयां करूं कि इस गर्मी का कहर सुबह 8 बजे से ही धूप में आग बरसने लगती है। दोपहर की सड़कें ऐसे तपती हैं जैसे कोई तवा रखा हो, पंखे और कूलर भी गर्म हवा फेंक रहे हैं। बिना वजह घर से बाहर आप बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि अब इस वक्त बिना वजह घर से बाहर निकलना आफत को दावत देना है। तो इस गर्मी में अपने आप का कैसे ख्याल रखें, दिन भर कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं, ORS पिएं, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी का सेवन करते रहें, और हल्का भोजन खाएं, बिल्कुल भी तेलीय पदार्थ का सेवन ना करें। मौसमी फल खाएं जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरे, ककड़ी भी आ रहे हैं तो उस वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाली चीज़ें खाएं पिएं। बाहर निकलते समय ढीले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें, धूप में निकलते समय चेहरा ढकें, चश्मा लगाएं और सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करें। भाई हम आपसे यही कहेंगे, चलो उठो और एक नई शुरुआत करते हैं, खुद से लड़कर खुद को ही आबाद करते हैं, और आपका ख्याल तो हम ऐसे ही रखते रहेंगे। आपकी खुशी के लिए लेकर आए हैं ना हम एक खास बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ, खास इसलिए कि भाई आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तो इस अवसर पर हमारे जो सफर के साथी हैं, हमारे श्रोता, वो जुड़े हैं आज हमारे साथ। आइए सुनते हैं। चलिए युवा साथियों, हम देखिए रोजाना आपके लिए कोई ना कोई खास युवा साथी आपके बीच में जोड़ते हैं और मिलवाते हैं, उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। आज का प्रोग्राम थोड़ा और ज्यादा खास है। खास कैसे, और ऐसे ही खास मौके पर आज जुड़े हैं दो लोग। अब वो कौन से खास लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं उनका नाम। आइए जानते हैं, पहले तो आप हमारे युवा साथियों को अपना नाम बता दीजिए।
6: जी, मैं नाज रेडियो क्लब ग्राम करेली जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी।
5: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको हमारे बीच में जोड़ के। जी, अब आप भी अपना नाम बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
7: मैं लाल मोहम्मद अंसारी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से उपस्थित हूँ।
5: जी, आप दोनों को मुझे कार्यक्रम में जोड़ के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब क्यों खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे इतने खास लिसनर्स आज हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, ये तो हमारे श्रोता भी जानते हैं और देखते रहते हैं कि ये दो श्रोता हमारे कितने ज्यादा खास हैं, डेली हमें कमेंट्स करते हैं और डेली हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहते हैं। देखिए, आज आप प्रोग्राम में जुड़े हैं, तो सबसे पहले आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारा जो रेडियो का सफर है, आपको कैसा, मतलब आप लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, आपने मुझे बताया कि आप 2002 से जुड़े हुए हैं, आपका सफर भी काफी लंबा रहा है।
7: जी, मेरा सफर तो मैं आपको बताऊं, जब ये मैं बहुत छोटा सा था तो ये बरेली केंद्र हमारे सामने बना है, और उससे पहले मैं आकाशवाणी रामपुर को सुनता था, वहां से जुड़ा हुआ था। तो 90 वर्ष में यानी 9 दशक में 3 दशक मैंने रेडियो के नाम किए हैं, 30 सालों से लगातार मैं रेडियो को सुन रहा हूं, और बहुत सारे कार्यक्रमों को मैंने बरेली केंद्र से सुना है जब से ये बरेली। और उसके बाद पहले शुरू शुरू में कार्यक्रम कुछ मतलब बाहर से कार्यक्रम रेले किए जाते थे, कुछ यहाँ से प्रसारण होता था, लेकिन तब मैं धीरे धीरे करके, यानी कहते हैं एक बच्चा होता है उस तरीके से उसको चलना सिखाया जाता है, उसको मतलब चलना सिखाते हैं हाथ पकड़ के, और उसको सारी बातें सिखाई जाती है, बताई जाती है। वही क्रम रहा कि कुछ जैसे किसान वाणी कार्यक्रम हमारे रामपुर केंद्र से प्रसारित होता था, और बाकी कुछ कार्यक्रम लखनऊ से भी आते थे, और बाकी कार्यक्रम विविध भारती से आते थे। कुछ समय यानी शाम 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमारा बरेली आकाशवाणी इस कार्यक्रम को प्रसारित करता था।
5: जी, लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपने बताया कि आपकी जर्नी कितनी शुरू से इस आकाशवाणी के साथ जुड़ी हुई है, और आपके कितने खास, मतलब आपने बोला रामपुर से भी आप जुड़े हुए हैं, और आपको कौन कौन से प्रोग्राम इतने खास लगते थे जो आज तक आपकी जवान पर अभी भी हैं, और आपने बताया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ निसार जी, कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ और आपने क्या क्या खास इसके साथ जोड़ा है अपना।
6: जी, मेरा सफ़र रेडियो से और आकाशवाणी से यूँ सफ़र चालू हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग थे रेडियो को सुना करते थे और अपना नाम उस रेडियो पर सुन

सुनते थे, तो मेरे भी दिल में एक तमन्ना हुई कि मैं भी अपना नाम रेडियो के माध्यम से सुनूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने अपना सफर चालू किया, खत लिखना चालू किया था। कार्यक्रमों के जितने भी आकाशवाणी केंद्र थे, ज्यादातर मैंने अपना खत चालू किया था, और जब मैं उससे अपना नाम सुनता था तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ करती थी, और लोग भी मुझसे आगे कहते थे आज आपका हमने नाम सुना था, क्योंकि वो दौर अलग था जब रेडियो बजता था। और मुझे याद है क्योंकि मैं

0: बजता था। और मुझे याद है क्योंकि मैं रेडियो रात में जब सुनता था, अनुरोध गीत आता था, तो वो रेडियो में खोल के सो जाता था। मेरी 2 बजे या 3 बजे जब आँख खुलती थी तो वो उस रेडियो को मैं बंद करता था, क्योंकि जब गर्मियों के टाइम में छत पे सोता था तो रेडियो बजता रहता था और फुल आवाज खोल देता था उसकी, खुद भी सुनता था और लोग जो छत पे सोया करते थे वो भी सुना करते थे। तो बहुत अच्छा सफर रहा है हमारा आकाशवाणी के माध्यम से, और बड़े दूर दूर तक हम लोग जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के जरिए, क्योंकि एक दूसरे से हमारी मुलाकात भी हुई है, लिसनर लोगों से
1: जी
0: एक दूसरे के सुख दुख में हम शामिल भी होते हैं और अपना खुशी भी बांटते हैं और एक दूसरे के यहाँ मिलने भी जाते हैं। अब तो क्योंकि ये दौर ऐसा है, क्योंकि फोन का और सोशल मीडिया का
1: जी
0: जमाना चल रहा
1: जी
0: है, और आजकल
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हम भी अपना रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही आपके कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं,
1: जी
0: और अब हम व्यस्त इतने हैं तो एक दूसरे के सिर्फ फोन के ही माध्यम से खैर खबर ले लेते हैं, मगर एक दूसरे को मिलने का मौका बहुत ही कम मिल पाता है हम लोगों को।
1: वाह क्या बात है निशा जी, आपने बताया कि आपका सफर कितना खास रहा है और इस खास सफर में आपके साथ जो भी नए व्यक्ति जुड़े हैं वो आज आपकी एक फैमिली बन गए हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है आपको हमारी फैमिली में जोड़ के। आप लोगों ने हमें इतने सारे लिसनर्स दिए हैं, आप लोगों ने कैसे कैसे साथ में और लोगों को भी जोड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके लिए क्या खास रहा, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने सबसे पहले खत लिखना चालू करे थे, कैसे आपने शुरू, आपको कुछ तो याद होगा कि कैसे आपने वो खत लिखा था, क्या क्या शिकायतें रही थी, क्या क्या आपने आकाशवाणी के लिए लिखा था।
0: जी हाँ बिल्कुल मुझे याद है, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने अपना अनुरोध गीत कार्यक्रम में ही खत डाले थे अपने नाम सुनने के लिए। उसके बाद जब लगाव हुआ मेरा, तो लगाव के जरिए फिर जितने भी कार्यक्रम आते थे सारे कार्यक्रमों में हम खत डालते थे, और पत्र मिला कार्यक्रम आता था आपके यहाँ से, उसमें कोई कमियां होती थी या कोई
1: जी
0: शिकायत होती थी तो हम अपने खत के माध्यम से बताते उस कार्यक्रम के लिए, तो मैंने उसमें शिकायतें थी और
1: जी
0: जो भी कुछ था अच्छा लगा वो लिखता था। और मुझे याद है उस वक्त सिर्फ 2 या 3 खत मिला करते थे पत्र मिला कार्यक्रम के लिए,
1: जी जी
0: और आज तो मैं यही नहीं सोच सकता कि इतना बदल जाएगा आज तो, क्योंकि इतने खत और शामिल हो जाते हैं, मुझे पता है उसमें कि कुछ मेल या खत रह जाते हैं शामिल करने के लिए, लोग मायूस भी रहते हैं पर मायूस होते नहीं है क्योंकि उनके खत अगले हफ्ते शामिल हो जाते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी अच्छा आप बताइए लाल मोहम्मद जी, आपने बताया कि आपकी शुरुआत इसके साथ जब से ये बना है तब से हुई है, कि मतलब तब से ही आप इसी के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी जर्नी
0: जी
1: रेडियो के साथ तभी से शुरू हो गई थी।
0: जी मैं तो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: समय से जुड़ा हुआ हूँ, और बरेली आकाशवाणी की बात करूँ तो पहले ये कार्यक्रम जैसे युवाणी कार्यक्रम अभी चल रहा है,
1: जी जी
0: तो ये कार्यक्रम पहले सप्ताह में 3 दिन हुआ करता था।
1: अच्छा
0: जी
1: जी
0: हाँ, क्योंकि अब 6:30 बजे का समय था और समय भी कुछ कम था, तो कुछ दिनों महिलाओं के कार्यक्रम होते थे और कुछ दिन आपका पत्र मिला और झलकियां भी प्रसारित इसी समय होती थी 6:30 बजे,
1: जी जी जी
0: क्योंकि अब इसका समय 6 बजे है, उस समय 6:30 बजे हुआ करता था।
1: जी
0: तो काफी कार्यक्रम मतलब कम समय में बहुत सारे कार्यक्रम आकाशवाणी बरेली प्रसारित करता था, और आज भी मतलब समय के अनुसार जिस तरीके से हमारे बरेली का समय होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है, कभी बीच में भी 3 सभाएं हुआ करती थी, बहुत सारे कार्यक्रम बरेली से होते थे। और मैं आपको बता दूं कि आकाशवाणी बरेली से जब सभा खुलती थी 5 बजे,
1: जी
0: तो 5 बजे कार्यक्रम विवरण के बाद सबसे पहला कार्यक्रम आज शाम हुआ करता था।
1: वाह क्या बात है, आपको मतलब ये समझ लीजिए आपको टाइम टू टाइम डेट टू वाइज सब चीजें याद हैं रेडियो से जुड़ी हुई, मतलब ये हम समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना खास रहा है रेडियो का
0: जी
1: सफर।
0: मेरे लिए बहुत खास रहा है और मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और चूंकि मैं आपको बता दूं कि मेरी रेडियो के अलावा कोई शौक भी नहीं है, कि बहुत सारे लोग विभिन्न
1: जी
0: प्रकार के
1: जी
0: शौक करते हैं, मैंने रेडियो को अपने जीवन में उतारा, इससे बहुत कुछ सीखा और आज भी मैं इससे सीखता हूं और इसको अपना हमसफर और अपना साथी मानता हूं।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर, और हम समझ सकते हैं कि आपने किस तरीके से जब इसकी शुरुआत करी अपनी जर्नी की, मतलब रेडियो की जर्नी की जब शुरुआत हुई थी तब आपने कैसे इसको हम सफर की तरह एक साथ में सुनते रहे, और आपने बताया कि 5 बजे से जैसे ही हमारी सभा स्टार्ट होती थी आप तुरंत ही रेडियो ऑन कर लेते थे और इसके साथ जुड़ जाते थे। आपका क्या खास रहा था उस वक्त, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने शुरुआत में क्या खास रहा था, आपको क्या सबसे अच्छा लगता था उस वक्त की बात।
0: रेडियो की बात यह है कि जब भी कोई मतलब हमारी फरमाइश रात को खासतौर से 10 बजे अनुरोध गीत आता था,
1: जी
0: 10 बजे से 11 बजे तक, और उससे पहले 9:30 बजे कार्यक्रम होता था सन 1998 में, तो छोटी छोटी बातें नाम से हुआ करता था, तो उसमें एक जन समाचार पर आधारित कार्यक्रम था, तो जब भी हम उसमें फोन करके किसी सामाजिक समस्या को उठाते थे और सुबह जब दिन निकलता था तो लोग कहते थे भी आपने ये समस्या रेडियो पर प्रसारित की है, बहुत अच्छा लगा और आपका नाम हमने रेडियो पर सुना तो हमें

0: बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर के, हमें और खुशी होती थी
1: जी जी
0: और मनोबल बढ़ता था और मतलब कहते नहीं है कि शौक बढ़ता गया और मतलब कभी रेडियो की सुनना हमारा शौक कम ही नहीं हुआ और आज यहाँ तक है कि हम बगैर रेडियो के समझ लो कोई काम करते नहीं है, कोई भी प्रोग्राम हमसे मिस नहीं होता है सुबह शाम तक बरेली से और अन्य केंद्रों के भी कार्यक्रम चलते हैं लेकिन बारी बारी से सभी कार्यक्रमों को सुना जाता है जितना वक्त होता है।
1: मतलब आप लगातार इसके साथ बने रहते हैं और आपकी जीवन में इसीलिए रेडियो इतना खास हो गया, क्योंकि इस रेडियो ने बहुत सारी ऐसी चीजें थी अच्छे के साथ साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ। आपने बताया कि कई बार शिकायतें उठाई हैं तो बहुत सारे मुद्दे हल भी हुए हैं इसकी वजह से।
0: जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो समस्याएं होती थी प्रधान के एंगल से होती थी या ब्लॉक होती थी तो वो अधिकारी उस समय रेडियो को सुनते थे।
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: किसी विभाग की शिकायत है तो वो मतलब जो अधिकारी थे वो कार्यक्रम को सुनते थे और तुरंत एक्शन लिया करते थे, क्योंकि अब तो मोबाइल है, मोबाइल में रेडियो है लेकिन रेडियो नहीं सुन पाते आदमी, लेकिन उस समय रेडियो आदमी फुर्सत से सुनता था, अपनी समस्या जिसके विभाग में थी वो अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको मतलब तुरंत तत्काल उसको दूर करने का प्रयास करता था।
1: तो श्रोताओं, आप समझ रहे हैं ना कि हमारे जितने भी श्रोता हैं उनका प्यार कितना ज्यादा गहरा है, क्योंकि देखिए आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग बहुत जल्दी और आसानी से फोन उठा के अपना सब कुछ कर लेते हैं। कभी कोई कंप्लेन डालनी हो तो इस वक्त मेल कर देते हैं, या आप मैसेज करके, अब तो लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप तक बने हुए हैं, आप नगर निगम पे कॉल करेंगे आपकी नगर निगम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन उस जमाने के वक्त, उस जमाने में कई बार कोई चीजें अगर आपको किसी की पसंद नहीं आती थी, आपको बहुत बहुत लंबा आपको खत लिखने पड़ते थे, आपको वहां पे चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन एक लाल मोहम्मद जी ने बताया कि रेडियो एक ऐसा माध्यम बना उस वक्त कि उन्होंने शिकायतें डाली और उन शिकायतों के ऊपर जब बात हुई, मुद्दा उठा, तो उस मुद्दे को सॉल्व किया गया, उस मुद्दे को, जितनी भी शिकायतें थी उससे निपटारा हुआ। उस रेडियो की वजह से कितना कुछ लोगों की शिकायतें दूर हुई हैं। आज मुझे ये बात जानकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं निशा जी आपसे जानना चाहती हूँ, लाल मोहम्मद जी ने तो बता दिया कि उनके लिए कितना खास रहा है सफर, आपने भी मुझे बताया कि आपके साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो एक कुछ खास बात रेडियो से जो आपकी यादगार रही हो और आज तक आपको इससे हटने का इसीलिए मन नहीं कर रहा है?
2: बस यही है मैम, क्योंकि ये जब हम रेडियो को सुनते हैं ना तो अगर हमारा 2-4 दिन अगर नाम नहीं आया रेडियो पे तो लोग आके और हमसे कहने लगते हैं कि आपका नाम नहीं आया, तो ये एक मोहब्बत और हमारा प्यार है आकाशवाणी से जो हमें दूर नहीं होने देता है। इसीलिए मैंने एक अपना एक क्लब बना रखा है
1: जी।
2: नाज रेडियो क्लब नाम से, उस क्लब में मेरे 7-8 लोग सदस्य हैं, उसको हम, मेरे परिवार भी हैं, मेरी एक बेटी है वो भी अपना नाम जब रेडियो पर सुनती है ना, अभी 5 वर्ष की नहीं हुई है वो, तो कहती है पापा मेरा नाम आ गया, उसे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये खुशी जो नाम सुन के जो खुशी होती है वो तो एक वही व्यक्ति जिसका नाम रेडियो पर बोलेगा तो वो ही महसूस कर सकता है कि कितनी खुशी होती है हम लोगों के लिए कि जब हम अपना नाम रेडियो पर सुनते हैं और जब दूसरा आके कहता है तो उससे ज़्यादा और खुशी होती है हमें। और बाकी अभी लाल मोहम्मद जी ने कहा था कि हम अपनी शिकायतें कुछ होती थी तो हम रेडियो के माध्यम से कहते थे, बिल्कुल बड़ी हकीकत बात कही इन्होंने, आकाशवाणी के ही जरिए, एक ऐसा साधन है आकाशवाणी, हम अपने दिल की बात आकाशवाणी के जरिए श्रोताओं तक या किसी अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने मन की बात आकाशवाणी के ही जरिए साझा कर रहे हैं।
1: वाह क्या बात कही है निसार जी, बिल्कुल सही बात कही है।
2: काफी ऐसी ऐसी जानकारी मैंने हासिल की है उस रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के माध्यम से, मुझे पता है क्योंकि अगर हम 500 रुपए का एक पर्चा लगाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और लाइन में भी लगेंगे तब वो जानकारी हमें हासिल देगी, वो बताएगा हमें डॉक्टर की ये है, मगर यहाँ रेडियो के माध्यम से बिल्कुल फ्री में
1: जी,
2: कुछ भी नहीं
1: जी, जी, जी।
2: सिर्फ सुनना है हमें और पूरी घरेलू उपाय क्या व्यवस्था,
1: हाँ,
2: क्या लक्षण होते
1: हैं
2: सारे डॉक्टर लोग हमें बता देते हैं, तो ये ऐसे कार्यक्रम हम लोगों को सुनना चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही और बताया कि किस तरीके से आपने यहाँ से क्या क्या खास जोड़ा है आपके बीच में। लाल मोहम्मद अंसारी जी और निसार अंसारी जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप ये बताइए आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी आप बताइए।
0: जी मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए युवाणी कार्यक्रम बरेली से होता है, हर रोज होता है, तो सिर्फ गीत सुनने के लिए युवाणी कार्यक्रम को ना सुने, बल्कि इससे जानकारी लें, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमें रेडियो सिखाता है कि हम अन्य केंद्र, अन्य अन्य जगहों से ऐसे सवाल, ऐसी जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि रेडियो हमें युवाणी के माध्यम से रोज कोई ना कोई नई जानकारी नए लोगों से मिलवाता है। तो युवाओं से कहना चाहूंगा, सिर्फ फिल्मी गीतों पर ही ध्यान ना दें, जानकारियों पर ध्यान दें, अपने जीवन में उतारें, उनसे सीखें और अपने जीवन में अमल करें, ताकि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और आगे चल के हम कुछ कर सकें।

0: जी
1: बिल्कुल बहुत अच्छी
0: निसार जी,
1: बात
0: आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही लाल मोहम्मद जी ने, क्योंकि हम
0: जी
1: युवाओं को आगे बढ़ना है तो हम युवाणी कार्यक्रम को अगर सुनते हैं तो उसको ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत ही जानकारी भरी और बातें हमें रेडियो के माध्यम से युवाणी में सुनने को मिलती हैं, और हमें अपना भविष्य संभालने की आगे क्षमता भी मिलती है, क्या सीख भी मिलती है हमें आगे क्या करना है और कैसे अपने भविष्य के बारे में पूरी नॉलेज और पूरी जानकारी हासिल होती है हमें युवाणी कार्यक्रम के माध्यम से। तो हम युवाओं को यही ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ गीत संगीत पे ध्यान नहीं रखना चाहिए, हमें अपना भविष्य अगर संभालना है तो छोटी छोटी बातों पे और जानकारियों पे ध्यान रखें और उन पे जोर दें और बाकी उन बातों को अपने दिल में उतारें।
0: आज आपसे बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहली बार युवाणी कार्यक्रम में इतना समय दिया और इतना मुझे बात कहने का मौका मिला, मैं आपका आभारी हूँ। आप मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: बाकी सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने अगर दिल की बात जैसे मैंने साझा की है आप तक पहुंचाइए और उस बातों को आप अमल करें, खासकर युवा साथी, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं, और तो युवाओं के लिए खासकर मैं कहना चाहूंगा कि युवाणी कार्यक्रम जरूर सुना करें, और उस पे सिर्फ गीत संगीत नहीं, क्योंकि गीत संगीत तो हम अपना आजकल हमारे हाथ में फोन है, कोई सा भी गीत अपने फोन पे सुन सकते हैं, गीत संगीत के लिए आकर रेडियो को नहीं सुनना है हमें, सिर्फ ये ज्ञान की बातें सुनना है हमें, कौन सी बात हमारे लाभदायक है, कौन सी बात हमें को इस्तेमाल करना है और कौन सी बात हमें आगे तक पहुंचानी है, कौन सी बात से हम कामयाब हो सकते हैं।
0: आज आपसे बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सो अब चलते हैं आज के सवाल पर, जहां हमने आपसे पूछा था विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। सही उत्तर है कोलकाता। सही उत्तर मिला हमें सोलापुर महाराज से विष्णु मिस्किन का, साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ का, जाहिर सिद्दीकी का, राजेश वर्मा का, लाल मोहम्मद अंसारी, प्रवीण चौहान, अनोखे लाल मौर्य, हीरामणि वर्मा। तो सो अब चलते हैं एक और प्यारे से सॉन्ग की तरफ।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: दोस्तों, ये रास्ता अब कह रहा है हमसे कि वक्त हो चुका है अब आपसे विदा लेने का। तो आज की इस प्रोग्राम से अपनी दोस्त प्रज्ञा पाठक को दीजिए अनुमति। नमस्कार साथियों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: शाम के 6:30 बजे हैं और हमारे सभी साथी इंतजार कर रहे होंगे अपनों पसंदीदा कार्यक्रम किसानवाड़ी को। तो कार्यक्रम किसानवाड़ी सुनने वाले सभी भैया बहन को आपकी बहन क्षमा
4: और भैया रघु की
3: राम राम। और बताओ रघु भैया, हम देख रहे हैं बड़े पसीना चू रहे हो, क्या सीधे खेत से चले आ रहे हो क्या भैया?
4: अरे क्षमा बहन, क्या बतावे, अब देखो कि अवेलो तो थोड़ो आराम हो और अब तो काम की ऐसी बेरा आ गई है कि एक तो गन्ना की फसल में काम चल रहा है।
3: हाँ।
4: और दूसरी बात जाए कि धान की पौध हमारे आस पड़ोस में तो कुछ भैया डाल चुके हैं।
3: अच्छा।
4: और हमें जला गई कि हमें देर तो ना ही गई, तो खेत की भैया तैयारी करी है और अब पौध डालन की तैयारी चल रही। क्षमा बहन आप सुनाओ, आज नई नई धोती पहरी हो, कहां दावत में गई का?
3: अरे रघु भैया दावत में ना गए, आज हमारे देख रहे हो, आज आप भी आप आए तो देखो ना कि बाहर पोस्टर लगा हो कि हम आकाशवाणी के 90 वर्ष का मना रहे त्योहार की तरह।
4: अरे हाँ, हम तो भूलिए गए, और बामे तो बड़े बड़े बड़े कार्यक्रम ही रहे हैं हमारे आकाशवाणी केंद्र पे। अच्छा तई, आज हम थोड़ी देर से आए तो हम बामे भूल गए, क्योंकि हमें तो खेत पे खेत तैयार कराने हो।
3: हाँ, हम जा ही सोच रहे कि आज रघु भैया ना दिख रहे कार्यक्रम में, हम तो भैया सुबह ही आए गए थे।
4: अच्छा, तो अच्छो करो, क्योंकि देखो आकाशवाणी ने कितनों लोगों को जागरूकता फैलाई है, कितने समय समाचार सूचनाएं और कितनों मनोरंजन करुआ, और वो ऐसे में आकाशवाणी अपने 90 वर्ष मनाए रही है, और तो ऐसे तो कार्यक्रम होने ही चाहिए। अब जा बताओ कि खेत पैर की क्या हाल चाल है?
3: खेती बाड़ी भैया सही है, चल रही है। आप कह रहे हैं जैसे कि आप लेट हो गए पौध लगाने में, लेकिन भैया अभी हमने भी ना लगाई है, और आपके भैया कह रहे हैं 2-3 दिनों में खेत तो तैयार हो गए हो, बस उसकी पौध लगाने की तैयारी कर रहे हैं भैया।
4: हाँ कह तो रहे भैया, परसों मोह मिले कह रहे, अरे यार भैया थोड़ी देर हो गई, अब एक शादी में चले गए, जा चक्कर में 2-4 दिन ज्यादा लग गए, तो मैंने कोई बात ना भैया, अभी 15 जून तक को टाइम है, तो आराम से डाल दियो। तो खेत ऊत की तैयारी हुई गई क्षमा मैन?
3: हाँ भैया खेत की तैयारी हो गई, बस धान के पौध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और भैया गन्ना की तो वही देखभाल चल रही है।
4: हाँ गन्ना में तो जा है कि अब बारिश ना ही रही है, तो हाँ। जा है पानी लगाने पर रहो, खुदाई लगाने पर रही है,
3: और भैया सिंचाई को बहुत ध्यान रखने पड़ रहा हो, देख रहे हो।

0: इतनी गर्मी पड़ रही है।
1: अरे और का खरार बहुत तो जाए, दो चार दिन पहले अभी थोड़ी बूंदा बांदी हो गई तो थोड़ी राहत मिल गई है। तो क्षमा बहन बातचीत तो करेंगे ही, सवाल कहा है आज को
0: भैया? आज को सवाल है मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है। हमारे किसान साथी जाको जवाब ढूंढ के रखें और हम कार्यक्रम के आखिर में जाको जवाब बतावेंगे।
1: तो भैया बहनों आपने सवाल लिखिए लो और आप जाको उत्तर लिख लियो, फिर क्षमा बहन जब आखिर में जाको उत्तर बतावेंगी तो अपने उत्तर से मिलान कर लियो। तो क्षमा बहन देखो बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती है हम लोगों के लिए कि हमारे किसान भैया हैं या हम लोग हैं हमारी तरक्की होए। ऐसी एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
0: बिल्कुल रघु भैया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है जिसके अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है। जहाँ राशि 2,000 की 3 किस्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
1: जा देखो क्षमा बहन, वैसे तो बहुत बढ़िया योजना है कि हाल मजबूरी में हम लोगों को कहा है कि खाद लगाने हैं खेत में, पानी लगाने हैं, तो समस्या हो जाती तो जा है कि दुकानदार से उधार ले रहे हैं या किसी पड़ोसी से उधार ले रहे हैं। ऐसे में जा है कि ज्यादा मदद ना है लेकिन फिर बहुत सहारो जो है कि जब ये पैसा आते हैं तो लगभग समय को चुनाव भी ऐसे ही करो जाते हैं कि जब जरूरत होती है खेती में।
0: बिल्कुल,
1: तो इनसे खूब राहत मिली है। और जा कि पात्रता का है कि क्षमा बहन कुछ भैया अब हमारे रह गए कहते हैं अरे जा तो हमें पता ही ना ही या काम पूरे ना है, तो ये फिर से बता दो कि जा की पात्रता का है।
0: बिल्कुल रघु भैया, अभी हम बताते हैं और तभी तो हम कहते हैं अपने साथियों से कि जागरूक रहें, जो हमारे सरकार द्वारा सरकारी योजनाएं चले जाती हैं उनके प्रति हमारे साथी जागरूक रहें, हमारा कार्यक्रम सुनते रहें और जो हम इसमें जानकारी देते हैं या हमारे कार्यक्रम में समय समय विशेषज्ञ आते हैं वो जानकारी देते हैं, उससे हमारे साथी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। तो भैया आप बात कर रहे थे कि पात्रता क्या है, तो बता देते हैं हमारे साथियों को, किसान परिवार के नाम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: और भूमि का रिकॉर्ड राज्य के राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए। और भैया जाके अलावा आधार कार्ड, बैंक खाता और ईकेवाईसी पूरी होनी जरूरी है।
1: तो देखो भैया बहनों, जो दस्तावेज हैं, जो पात्रता है वो क्षमा बहन ने बताया दी। तो जिन भैयन की अब किस्त ना आई है तो वे अपने पूरी करा लें, और कुछ भैयन की किस्त रुकी हो गई है क्योंकि हम बाद इन गाँव में गए तो कह रहे अरे भैया हमारी 20वीं किस्त तो आई, 21वीं नहीं आई। तो अब ऐसा है कि भैया अगर कोई कमी हुई गई हो या ईकेवाईसी एक क्षमा बहन कराने पड़ती
0: हाँ
1: है
0: भैया। हाँ।
1: अगर ईकेवाईसी ना कराई है, फार्मर रजिस्ट्री ना कराई है आपने, तो जस्ट मैं जो योजना को लाभ मिल लो वो रोक देती है सरकार।
0: वही तो भैया, हमारे बहुत से साथियों को पता ना है कि ईकेवाईसी कितनी जरूरी होता है।
1: हाँ, तो अगर हमारे भैया ईकेवाईसी करा लेंगे तो जय योजना को लाभ मिलन लाभ है।
0: बिल्कुल भैया। और देखो रघु भैया, आज दिन है मंगलवार और मंगलवार के दिन हम अपने साथियों को सुनवाते हैं हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम। और आज जाही क्रम में हमारे जो विषय है हेलो किसान को खाद प्रसंस्करण समस्याएं व समाधान, और जा विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर नेहा जोशी और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया रविंदर कुमार।
1: किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम हेलो किसान, और आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है खाद प्रसंस्करण समस्याएं व समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं डॉक्टर नेहा जोशी, जो कि हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुई हैं कृषि विज्ञान केंद्र IVRI इज्जतनगर बरेली से। मैडम आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: मैडम जैसे कि हमारा विषय है खाद प्रसंस्करण क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या है।
2: सबसे पहले किसी भी विषय पर बात करने से पहले उसका अर्थ जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो खाद्य प्रसंस्करण एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो प्राथमिक कृषि उत्पाद होते हैं जैसे अनाज, फल, सब्जियां, उसका मूल्य संवर्धन करके कुछ अलग प्रकार का उत्पाद डेवलप करते हैं जिससे कि जो उत्पादक है किसान हो गए उनकी आय में वृद्धि हो सके।
1: जी, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
2: इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे कि हमारे देश में फसल गेहूं, अनाज या फल सब्जियों का उत्पादन बहुमूल्य मात्रा में होता है, पर भंडारण की बहुत समस्या है। किसानों को सबसे मुख्य समस्या यही देखने को मिलती है। तो खाद्य प्रसंस्करण करने से उनका भंडारण की अवधि में ज्यादा उनकी वृद्धि होगी और वो अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैडम हमारे जो श्रोता है वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं और गाँव में जब रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण में कौन कौन सी संभावनाएं हैं?
2: जो कि

0: खाद्य प्रसंस्करण की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका लघु स्तरीय अगर हम कार्य करें तो उससे गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, गांव से पलायन रुकेगा और गांव में ही किसानों को, युवकों को, महिलाओं को रोजगार का साधन मिलेगा जिससे उनको खाद्य सुरक्षा में भी फायदा देखने को मिलेगा।
1: जी, ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार अपनाएं और रोजगार के अवसर हासिल करें जिससे वो अपने परिवार की प्रगति कर सकें, परिवार की तरक्की में योगदान दे सकें। इसलिए खास करके ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनको इस प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ना और उन्हें बताना, इसके संबंध में आपके द्वारा, आपके संस्थान के द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: महिलाओं की अगर हम बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण में महिलाएं आगे स्वयं सहायता समूह के तौर पे का अपना कार्य कर सकती हैं। जैसे
1: जी
0: हमारे में एक मुहावरा भी प्रचलित है कि बंद मुट्ठी लाग की और खुली मुट्ठी खाक की, तो वैसे ही जब महिलाएं एकजुट होकर काम करती हैं तो वो ये खाद्य प्रसंस्करण में थोड़ी थोड़ी पूंजी अपना निवेश करके फायदा उठा सकती है। जो स्थानीय उत्पाद हैं जैसे कि अभी पलाश का फूल है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें,
1: जी
0: अपराजिता का
1: जी
0: फूल हो गया या फिर मोटा अनाज जिसकी
1: जी
0: आजकल हम सब में बहुत प्रचलन है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसका यूज करके महिलाएं तो हमेशा से ही मूल्य संवर्धन करती ही आई हैं अचार पापड़ के तौर पे। पर अगर वो व्यवसायिक तौर पे देखें तो जो चीज़ों का प्रचलन है बाजार में, शहरों के जो कंज्यूमर हैं उनमें, उस चीज़ का वो अपनाएं और उससे थोड़े थोड़े एकजुट होके अगर वो निवेश करती है और इसका फायदा उठाती हैं तो वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं।
1: जी। अब जैसे बात करें फसल कटाई के बाद जो होने वाले नुकसान हैं उनको कम करने भी इसकी कोई भूमिका रहती है?
0: इसमें सबसे मुख्य भूमिका अगर देखी जाए खाद्य प्रसंस्करण की वो फसल कटाई के बाद ही है, क्योंकि फसल कटाई के बाद भंडारण की सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ।
1: जी
0: तो किसान मजबूर हो जाते हैं कि अपना उत्पाद जल्दी से जल्दी वो कम दामों पे निकालें। पर
1: जी
0: जैसे टमाटर का अगर हम उदाहरण लें, टमाटर जब सीजन होता है बहुत कम रेट में बेचना पड़ता है किसान को, पर
1: बिल्कुल
0: अगर वो उसका प्रसंस्करण कर ले, सॉस बना ले, पाउडर बना ले, उसको सुखा ले, तो वो उसको रेस्टोरेंट में या फिर मार्केट में अच्छी पैकेजिंग के साथ, सबसे मुख्य है पैकेजिंग,
1: जी जी
0: उसके साथ उसे बेचे तो वो ज्यादा मूल्य उसका ले सकता है। और हम सभी जानते हैं हम सॉस वगैरह कितने अधिक मूल्य में खरीदते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सॉस खरीदते हैं बाजार से और आज प्रत्येक घर में उसका प्रयोग भी हो रहा है और ये निकलकर हमारे खेतों से ही आती है। तो अगर हम इसको उपजाने के अलावा, मंडी में बेचने के अलावा, अगर इसकी उत्पाद बनाकर बेचें तो हम ज्यादा लाभ भी कमा सकते हैं और मतलब जो तरक्की है परिवार की उसमें योगदान भी दे सकते हैं। अब खास करके बात करते हैं ग्रामीण महिलाओं की, तो ग्रामीण महिलाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्या-क्या अवसर उपलब्ध हैं?
0: कृषि विज्ञान केंद्र को ही अगर हम देख लें तो ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं को पहले तकनीकी जानकारी देता है,
1: जी
0: प्रशिक्षण देता है और उसके अलावा जागरूक भी करता है, क्योंकि जागरूकता की सबसे बड़ी कमी है। प्रसंस्करण क्या है, करते सब हैं पर क्या है, कैसे करते हैं और उसकी जो वैज्ञानिक पद्धति है या विधियां हैं
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बारे में कई बार महिलाओं को जानकारी नहीं होती है। इसका छोटा सा उदाहरण, पनीर बना लेती है महिलाएं पर एक जो साइंटिफिक तरीके से बनता है, सही टेम्परेचर पे बनता है, उसका ज्ञान होगा तो वो उसकी जो भंडारण अवधि है वो बढ़ा पाती है और उसी के साथ साथ वो जैसा कि अर्थव्यवस्था में अपना एक तरीके से योगदान दे पाती है।
1: जैसे कई तरीके की सब्जियां हैं जिनका प्रसंस्करण किया जा सकता है, लेकिन क्या है कि जानकारी के अभाव में नहीं लोग कर पाते हैं। और ऐसे ही बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो हमारी खेती से मिलते हैं हमें और उनको संरक्षित करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो ऐसे क्या क्या, जैसे कुछ सब्जियों का हम जानना चाहेंगे, किन सब्जियों का प्रसंस्करण करके लंबे समय तक उन्हें रखा जा सकता है?
0: सबसे पहला हम उदाहरण ले तो मशरूम, आजकल मशरूम बहुत प्रचलन में है पर मशरूम की भंडारण अवधि बहुत कम है, तो
1: जी
0: उसका पाउडर बना के, उसकी छोटी छोटी फली सी काट के या उसका सॉस बना के महिलाएं या कोई भी परिवार या किसान अपनी उसका भंडारण अवधि बढ़ा सकता है। बरेली की बात करें तो बरेली में दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा है और
1: जी
0: दूध और अंडा, मांस, मछली का तो भंडारण अवधि बहुत ही कम है, पर उसके क्या क्या मूल्यवर्धन उत्पाद बन सकते हैं इसकी जानकारी लेना, कैसे बन सकते हैं और किसकी कितने भंडारण अवधि है और कितने जल्दी हमें उसे निकालना है उसकी जानकारी लेना। फल सब्जियों की बात करें इसके अलावा तो आपने सुना होगा ये ड्रम स्टिक जो सहजन है, सहजन के लोगों ने सहजन देखा है पर जानकारी कम है,
1: जी
0: सहजन के
1: जी
0: मूल्यवर्धक उत्पाद, पाउडर बनाना, उसके अलग अलग प्रोडक्ट, अचार बनाना, उन सब

0: की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें ये नहीं देखना कि क्या उगाया जा रहा है, क्या प्रकृति हमें दे रही है, और हम उससे कम निवेश पे ज्यादा कैसे ले सकते हैं, वो भी हम खाद्य प्रसंस्करण में देखते हैं।
1: बिल्कुल। अब बात करते हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत कम होते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ग्रामीण महिलाएं हैं वो नहीं कर सकती, या जो पुरुष भी जुड़े हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो कम निवेश में कौन कौन से खाद्य प्रसंस्करण हैं जो उद्यम शुरू किए जा सकते हैं?
0: सबसे पहले तो कम निवेश में अचार, पापड़, ये सब बनाने का उद्यम जो है वो बहुत आसानी से शुरू किया जा सकता है। उसके अलावा आपका सबसे मेन है किसी भी उद्यम में किसान या महिलाएं उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, और सबसे ध्यान रखें किसके लिए बना रहे हैं,
1: जी,
0: किसके लिए बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं और कहाँ बेच रहे हैं। क्योंकि उद्यमिता शुरू करना आसान है, उसकी मार्केटिंग करना, उसका वितरण करना सबसे बड़ी चुनौती हमने भी देखी है, हमने भी समझी है कि महिलाओं को या हम जिनको ट्रेन करते हैं उनको ये परेशानी आती है।
1: जी, जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाई अगर कोई स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है जो उस उद्यम को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं?
0: ये सबसे मुख्य चीज़ है कि कोई भी अगर इस चीज़ में अपना निवेश करना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण लेना सबसे आवश्यक है, जहाँ से वो समझ पाएगा कि मार्केटिंग कैसे होती है, ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसे होती है। अब कोई भी व्यवसाय है वो ग्राहक की विश्वास पे या ग्राहक के भरोसे पे चलता है, और ग्राहक उसी पर भरोसा करेगा जिसकी प्रॉपर मार्केटिंग होगी, जिसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग होगी। आपने देखा होगा कोई भी खाद्य प्रसंस्करण वाला जो उत्पाद है उसमें अगर लाइसेंसिंग प्रॉपर नहीं है फूड FSSAI की, तो ग्राहक उस पर भरोसा कम करेगा।
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मार्केटिंग और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना शुरू करना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ का मुख्य तौर से ध्यान रखें, कोई भी किसान या महिला।
1: तो हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि इसके लाइसेंस के लिए कहाँ, मतलब कोई अपनी इकाई स्थापित करना चाहता है तो उसको कहाँ संपर्क करना चाहिए, कहाँ से ये सब उनको प्राप्त हो सकता है?
0: सबसे पहले तो वो इसकी जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र आ सकते हैं,
1: जी
0: जहाँ से हम उन्हें एक तरीके से सरकार की योजनाएं और कहाँ उन्हें सब जाना है उसकी जानकारी दें। और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए FSSAI की जो वेबसाइट होती है वहाँ लॉगिन करके वहाँ उसके लिए अप्लाई करना एक मार्ग है। तो मार्गदर्शन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है और राज्य सरकार की इकाई भी है जो इस चीज़ के लिए मार्गदर्शन करती है किसानों का।
1: जैसा कि मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसको सबसे पहले आपके कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर लेना चाहिए, वहां से उसे पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र लगातार बरसों से ये प्रयासरत है ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत या ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के, लघु उद्यम जो भी चलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है, तो जैसे हम बात करते हैं कि ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह हैं, चूंकि आप जमीनी स्तर पर जाती हैं, वहां देखती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बड़े अच्छे से स्वयं सहायता समूह मिलकर ये ऐसी इस तरह के प्रसंस्करण इकाइयां चला रहे हैं?
0: बिल्कुल, अगर हम बरेली डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें तो हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में ही दो चार महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने खुद आगे बढ़ी और साथ में समूह बना के ये लघु प्रसंस्करण इकाई शुरू करी, जिसमें वो अचार, पापड़, मुरब्बा, उसके साथ सीजनल जो होती हैं जैसे कि होली कलर या दिवाली में कैंडल वगैरह बना के उसको बेच रही हैं। कुछ महिलाएं अकेले स्तर पे भी आगे बढ़ी हैं, पर अकेले स्तर में आगे बढ़ने में उनके परिवार का बहुत योगदान देखने को मिला है।
1: जी
0: और इसके अलावा समूह बनाने के लिए सरकारी बैंक और नबार्ड काफ़ी मदद करता है, और आज के टाइम पे FPO, किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान, महिला और पुरुष किसान मिलके समूह बना रहे हैं और उस पे ये काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा कदम देखने को मिला है। क्योंकि कई बार महिलाएं प्रसंस्करण में बेहतर करती है और पुरुष मार्केटिंग में बेहतर करते हैं,
1: जी
0: तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर सब मिलके काम करें, ऐसे इसे अलग ना किया जाए। स्वयं सहायता समूह पहला कदम है, उसके बाद FPO बनाना दूसरा कदम है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण से महिला या पुरुष किसान अपना बहुत अच्छा फायदा, मुनाफा देख सकते हैं।
1: अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपके माध्यम से जो लोगों तक योजनाएं पहुंचती हैं वो सब सरकार चलाती है, तो सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं?
0: मुख्यतः अभी सरकार की तरफ से किसान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट नाम की एक योजना चल रही है जो राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे भी चल रही है। उसके अलावा प्रधानमंत्री

0: उद्यम उन्नयन योजना चल रही है, इन सब योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि जो उद्यमी हैं या जो किसान हैं उनको एक तरीके से ऋण देना, जिसमें उनको थोड़ी सब्सिडी भी मिले, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उनको प्रशिक्षण मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र में कोई भी प्रशिक्षण जो मिलता है वो बिना किसी मूल्य के है, उस पर कोई ट्रेनिंग शुल्क नहीं लगता है। उसके अलावा नाबार्ड के थ्रू, बैंक के थ्रू उन सरकारी योजनाओं का लिंकअप है कि जो लोग ट्रेनिंग लेंगे वो वहाँ से अपना लोन लेके अपना छोटा सा लघु स्तरीय उद्योग शुरू करें। जब थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तभी बड़े स्तर पे काम बढ़ सके।
1: कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं उसकी सूचना लोगों तक कैसे पहुंचती है, क्या प्रचार प्रसार की व्यवस्था है, या कैसे लोग संपर्क कर सकते हैं?
0: सबसे पहले तो जो हम आमतौर पे देखते हैं, लोग हमारे पास मिलने आते हैं तो हमने पूरी सूची लगाई हुई है कि इस साल क्या क्या ट्रेनिंग होंगी।
1: जी
0: उसके
1: जी
0: अलावा हम गांव-गांव में जब जाते हैं तो हम लोगों से को अपना नंबर या उनसे पूछ के आते हैं उन्हें किस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए, और नंबर और ये सब लेके हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं। कोई
1: जी
0: ट्रेनिंग हमने ऐसे करी है कि हम करने वाले हैं और जो जो इच्छुक हैं वो अपना आके ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, और जिन जिन चीज़ों में बहुत लोगों की रजिस्ट्रेशन है उनको हम बैच वाइज बुला लेते हैं। जैसे बकरी पालन हो गया किसी या सुकर पालन हो गया, उसमें बैच वाइज लोग आके अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और सर्टिफिकेट उन्हें प्रदान किए जाते हैं।
1: अब बात करते हैं कि आपके माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है, सरकार भी लगातार प्रयासरत है कि जो आम जनजीवन है, आम लोग हैं, उनकी आमदनी बढ़े और लोग स्वरोजगार से जुड़े, आत्मनिर्भर बने। इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है सरकार के माध्यम से, सरकारी संस्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं एक पक्ष ये भी कि जो लोग हैं, जो ग्रामीण भाई बहन हैं, वो कितना सक्रिय हैं इन सब चीज़ों में जुड़ने के लिए, कितना मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं?
0: जो आपने ये बात बोली है बहुत महत्वपूर्ण है। लोग सुनते वक्त बहुत इच्छुक भी हो जाते हैं, पर जब वो सीखते हैं तो उनको कई चुनौतियाँ देखनी पड़ती हैं। कई बार निवेश की चुनौती, उस सबसे बड़ी चुनौती है मार्केटिंग की, क्योंकि बनाना आसान है, मार्केट करना मुश्किल है। एक बार ग्राहक खरीद लेता है पर दोबारा ग्राहक खरीदेगा नहीं खरीदेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो कई बार किसान सीखते हैं, या महिला किसान जो सीखती हैं वो अपने घर तक ही सीमित रख लेती हैं उस
1: जी।
0: जानकारी को। तो स्वयं सहायता समूह जो बने उसमें एक लीडरशिप ज़रूर होनी चाहिए कि लीडर है, मार्केटिंग का पर्सन होना चाहिए, क्योंकि समूह बनाना है इसका मतलब ये नहीं है कि चार लोग मिले और जुड़ गए। उसकी जो डाइवर्सिटी है वो ऐसी हो कि कुछ लोग बनाने में बहुत अच्छे हों तो कुछ लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे हों, कुछ लोग लेखा जोखा करने में बहुत अच्छे हों। तो ये सबसे बड़ी चुनौती जो हमें पाई गई कि मार्केटिंग, जैसे प्राकृतिक खेती में भी मार्केटिंग की सबसे बड़ी चुनौती देखने को मिली है, वही
1: बिल्कुल।
0: यहाँ पे भी देखने को मिलती है।
1: अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं आपसे कि आजकल जो भारत सरकार योजनाएं चला रही है, कृषि मंत्रालय से जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे संतुलित प्रयोग उर्वरकों का, इस विषय पर आपकी जो कंपेन है वो कहाँ तक पहुँची है, कितनी सफलता मिल रही है?
0: पिछले 1.5 महीने से हम इस कैंपेन को लगातार चला रहे हैं। उसमें हम गांव-गांव जाके, हमारे IVRA से 3 टीम, कृषि विज्ञान केंद्र और IVRA बरेली से 3 टीम हर रोज गांव जा रही हैं, और उसके बाद एक-एक ब्लॉक के एक-एक गांव को लोगों को एकत्रित करके लोगों को जानकारी दे रही है। और 1.5 महीने में हमने ऑलमोस्ट 15 ब्लॉक कवर कर लिए हैं, और अभी भी इस पूरे महीने खेत बचाओ आंदोलन के तहत हम इस जानकारी को बढ़ाते रहेंगे। इस कैंपेन के दौरान हम उर्वरकों की जानकारी, खेती में कैसे अपना फायदा ले सके उसकी जानकारी, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी बराबर लोगों को दे रहे हैं।
1: अब बात करें थोड़ा सा खाद्य प्रसंस्करण की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर टमाटर है, मूली है, फूलगोभी है, इन सब का प्रसंस्करण किस तरह से लोग कर सकते हैं? कम से कम अगर व्यावसायिक रूप से नहीं तो अपने लिए कैसे संरक्षित रख सकते हैं जो लंबे समय तक उसका प्रयोग कर सकें?
0: सबसे मुख्य यही है, खाद्य प्रसंस्करण हमेशा ये नहीं है कि हमें बेचना है, हमें हमारी बचत भी हमारी कमाई है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: अगर हम घरेलू स्तर पे देखें तो टमाटर का तो जैसे बताया, ये उसको सुखाना कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। थोड़ी सी तकनीकी जानकारी कि कितनी देर धूप लगानी है, कितनी कई चीज़ें होती है जिसमें सिर्फ हवा लगानी है, धूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है।
1: जी
0: और जैसे मशरूम हो गया, उसको धूप में रख के उसकी जो विटामिन डी कंटेंट बढ़ जाता है, या अभी आपने और चीज़ें भी जैसे बताई, तो हम उसका प्रसंस्करण अचार के तौर पे, पापड़ के तौर पे, उसको कोर के, उसको सुखा के, जब उसकी सब्जी बनानी है उस वक्त उसे दोबारा भिगा के कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसके उसके सबसे मेन है उसको भंडारण कैसे करना है।

0: प्रसंस्करण के बाद, क्योंकि प्रसंस्करण कर लिया, खुले में रख दिया, अचार भी खराब हो जाता है खुले में रख के।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो तकनीकी जानकारी वही है, खाद्य प्रसंस्करण में हम बनाना और उसको संजो के रखना दोनों चीजें सिखाते हैं।
1: बिल्कुल। अब चूंकि कार्यक्रम का समय भी हो चला है, तो हम चाहेंगे चलते चलते आज आकाशवाणी के माध्यम से आप क्या सलाह देना चाहती हैं ग्रामीण भाई बहनों को, किस तरह से वो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ सकते हैं और आमदनी का एक जरिया बना सकते हैं।
0: तो अंत में मैं तो यही कहना चाहूंगी कि एक समृद्ध गांव और एक सशक्त किसान ही विकसित भारत की पहचान बनेगा। और इस मार्ग में अगर हम खाद्य प्रसंस्करण को सिर्फ एक व्यवसायिक विकल्प ना देखते हुए इसको एक सेतु की तरह देखें कि हम अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी जो स्वास्थ्य है उस दोनों को मिलाते हुए किस तरीके से हम किसान इससे अपना फायदा देख सकें और किसान अपना आर्थिक जो उनकी स्थिति है उसमें सुधार कर सकें, ये बहुत अच्छा इसका फायदा है खाद्य प्रसंस्करण का।
1: डॉक्टर नेहा जोशी जी, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई और आपने खाद्य प्रसंस्करण समस्याएं एवं समाधान विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप स्टूडियोज में उपस्थित हुई, आपने महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आप सभी का।
2: अब वही हमारे साथियों ने सुनो अपनों पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, विषय हो खाद प्रसंस्करण समस्याएं व समाधान, और जा विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही थी डॉक्टर नेहा जोशी और आपसे बातचीत करते भैया रविंद्र कुमार।
1: तो देखो क्षमा बहन, कितनी अच्छी बात है बताई डॉक्टर साहब ने कार्यक्रम के अंतर्गत कि किस तरह से हम खाद्य पदार्थों को प्रसंस्करण करके उनको लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं और एक रोजगार को जरिया भी बना सकते
2: बिल्कुल
1: हैं।
2: रघु भैया,
1: तो अगर हमारी बहनें जागरूक हैं और स्वयं सहायता समूह बनाई हुई हैं, तो वे जब माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेके और भली भांति रूप से ये सब काम कर सकती हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं।
2: देखो रघु भैया, हम बात करते हैं किसान साथियों की आय दुगनी हुई, तो आय दुगनी करने का ये भी तो बहुत अच्छा साधन है।
1: बिल्कुल। और जा है कि देखो क्षमा बहन, अब परिवार बड़े, जमीन कम हुई गई, क्योंकि जमीन तो होती है ही, अब जा है कि किसों के चार बालक है तो चार जगह बट गई, तो जमीन कम हो गई है, तो ऐसे में अगर इन साधन को ना अपना बंगे तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा।
2: बिल्कुल रघु भैया,
1: तो हम तो यह कहेंगे कि भैया बहन अपने खाद्य प्रसंस्करण करके और छोटी छोटी इकाई बनाए के स्वयं सहायता समूह से जुड़ के जाओ और अग्रसर हुए और लाभ कमावे। और अब देखो क्षमा बहन, कार्यक्रम में समय हुई चलू है कि सवाल के जवाब को जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो, तो आज को का सवाल हो और बा को का जवाब है।
2: तो भैया आज को सवाल हो मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है, और हमारे साथियों ने जाको जवाब खोज लाए होगा और अब मिलान कर लो साथियों। मिट्टी की जांच इसलिए आवश्यक है क्योंकि खेती की गुणवत्ता सही पैदावार और लागत को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है।
1: तो हम तो जय कहेंगे कि हमारे भैया मिट्टी की जांच करावे, और जा से जा भी है ना क्षमा बहन, कि हमें पता चल जाती है कि हमारी जमीन में कौन से पोषक तत्व की कमी है, फिर बाई की पूर्ति अगर हम कर लेंगे तो जाहे कि हमारी जमीन उपजाऊ ही जाएगी और हमें वहां से पैदावार भी अच्छी मिलेगी। अब देखो भैया, बात करें कि हम जब कार्यक्रम में बातचीत करते हैं, योजनाओं की जानकारी देते हैं, बाकी बात जाहे देखो क्षमा बहन, मौसम लगातार उतार चढ़ाव को है, तो
2: हाँ
1: ऐसे में पशुओं को ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल भैया, पशुओं को सही समय पर पानी पिलाते रहें और कई बार अपने पशुओं को नहवाएं। और देखो भैया, पशुओं को ध्यान रखने के साथ ही साथ हमारे जो साथी हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो अपने घर में जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको भी खास ध्यान रखें,
1: बिल्कुल
2: क्योंकि भैया जा समय पे बच्चे जो होते हैं वो अबोध होते हैं, वो जान बता ना पाते हैं, बूढ़े हैं जो बीमार हैं वो भी ना बता पाते हैं, तो उनको खास ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा पानी की कमी ना होने दें,
1: हाँ
2: साफ पानी पिलाएं, घर का खाना खिलाएं, भैया जाना हो कि तली भुनी चीजें या बाहर को खाना खिलाएं, ऐसा कतई ना करें।
1: और जाना है कि मान लो स्कूलन की छुट्टी है तो पूरे दिन बालक बाहर घूम रहे हैं,
2: हाँ भैया
1: तो बालकन को ध्यान रखें, घाम में ना खेलें बालक और बचें और घर में ज्यादा रहें और सुरक्षित रहें। और चाहे कि बालकन की आदत होती है क्षमा बहन कि वे मांगत ना आए, तो अपने समय समय पे जैसी लगे कि बालक ने हमारे पानी ना पियो तो पानी पिवात रहे, जिससे जाए डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वह खत्म हो जाए।
2: और बिल्कुल रघु भैया, और देखो हम जाई कहेंगे अपने साथियों से कि जब गर्मी में पानी तो पिए, साथ ही साथ जैसे पेय पदार्थ होते हैं भैया, लस्सी है, छाछ है, नींबू पानी है, जाको भी सेवन ज्यादा से ज्यादा करें।
1: बिल्कुल।

0: और जो भैया खेत पे जा रहे हैं तो वे मुंह से अंगोछा बांधें और पानी की बोतल संग रखें, जिससे जाए जब प्यास लागे तो पानी पी लें, और जहाँ कि अंगोछा होए वो तो घाम सीधे सीधे न लागेगी। अब क्षमा बहन बता दो आज के कार्यक्रम की नसीहत।
1: भैया आज के कार्यक्रम से हमें जाही नसीहत मिलता है, किसान साथी सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक रहें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
0: तो भैया बहनों अब आज के कार्यक्रम की जाही नसीहत के संग अपने भैया रघु
1: और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति।
0: भैया बहनों राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: ग्राम जगत कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत है। देखो रघु भैया, हम बात करते हैं संतुलित आहार की, सही खान पान की, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी है, जहाँ शरीर को ऊर्जा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मानसिक व शारीरिक विकास में सहायता करता है।
3: बिल्कुल सही कह रही हूँ क्षमा बहन। देखो क्षमा बहन, संतुलित आहार को मतलब जो है कि हम संतुलित मात्रा में अच्छो आहार लें, जिससे हम स्वस्थ भी रहें और ऊर्जावान भी बने रहें।
2: बिल्कुल। और देखो रघु भैया, आज क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हम लेकर आए एक वार्ता, ग्रामीण महिलाओं हेतु रोजगार, और जाए विषय पर जानकारी दे रहे हैं मोहित कुमार जी। तो आओ भैया बहनों, सुन लेते हैं जब वार्ता।
4: मैं आज आपके साथ एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, वो विषय है ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर। सरकार बहुत सारी योजना लेकर आई है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है, जहां उन्हें कौशल परीक्षण और कम ब्याज पर ऋण मिलता है। दूसरा, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अलग अलग राज्यों जैसे बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 से लेकर 2,00,000 तक की आर्थिक सहायता और सब्सिडी दी जाती है। यदि आप किसी विशेष क्षेत्र जैसे सिलाई, खेती, डेयरी या किसी खास सरकारी योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, वह आपके आवेदन को स्वीकार करते हैं और आपकी पूरी सहायता देते हैं। और कृषि संबंधी जैसे मशरूम और जैविक खेती, कम जगह और कम लागत में घर पर ही मशरूम उत्पादन और प्रकृति जैविक खेती शुरू की जा सकती है। और डेयरी फार्म और पशुपालन जैसी भी योजना है, जैसे गाय भैंस पालना, बकरी पालना या मुर्गी पालन, ग्रामीण महिलाओं के लिए एक आय का एक पारंपरिक और बेहद मुनाफे वाली जरिया है। जैसे कि और योजना है, जूट मूंज और जूट के टोकरे, चटाई, फोल्डर, थाई, डाइनिंग टेबल के सामान बनाना, इन उत्पादों के बाजार में भारी मांग है। हैंडलूम और सिलाई कढ़ाई की गांव की महिला समूह बनाकर रेडीमेड कपड़े, मास्क या पारंपरिक कढ़ाई जैसे सिल्क कॉटन आदि उत्पाद के व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। और भी जैसी अगरबत्ती और मोमबत्ती निर्माण,

काम में निवेश घर बैठे किया जाने वाला एक बेहतरीन उद्योग है। सरकार, समाज और स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरियां भी उपलब्ध हैं, जैसे आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवा और बच्चों की देखभाल के लिए मानदेय आधारित रोजगार, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्स, उचित परीक्षण के बाद ग्रामीण उपकेंद्र और अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में कार्य, शिक्षक, गांव के सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ाना। सरकारी योजना और वित्तीय सहायता के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है, जहाँ इन कौशल परीक्षण और कम ब्याज और ऋण मिलता है, जैसे कि मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन का काम जिस महिला घर के पास ही आसानी से संभव हो जाता है, फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य प्रसंस्करण, गांव स्तर पर उत्पाद अनाज या फलों से अचार, पापड़, बीड़ी और मसाला का निर्माण व पैकेजिंग भी हो सकती है, जैसे कि डिजिटल और सेवा क्षेत्र, जैसे जैसे गाँव में इंटरनेट पहुँच रहा है, नए अवसर भी सम्मान आ रहा है। ग्रामीण BPO मतलब रूरल BPO, कई संस्थाओं गाँव को डिजिटल हब में बदल रही है, जहां महिला डाटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट का काम कर रही हैं, बैंकिंग, कॉर्पोरेट और क्रॉस्पॉन्डेंट, गाँव में घर घर जाकर बैंकिंग सेवा और पेंशन वितरण का काम करना, ब्यूटी पार्लर और सिलाई केंद्र ट्रेनिंग लेकर गाँव में ही अपना ब्यूटी पार्लर और टेलरिंग शॉप खोलना, जिसमें मुनाफा की अच्छी संभावना होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इन सब चुनौतियों से आज भी हम जूझ रहे हैं, यदि हम ग्रामीण महिलाओं को सही प्रशिक्षण और मार्केट एक्सेस मतलब बाजार और तकनीकी ज्ञान दें, तो वो देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकती हैं। महिलाएं ही ग्रामीण विकास के असली रास्ता हैं। सरकार ने जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को मुफ्त अवश्य कौशल परीक्षण दिया जाता है और परीक्षण के बाद रोजगार प्रदान किया जाता है। PM विश्वकर्मा योजना, इस योजना के जरिए पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों के कौशल विकास और उन्हें रोजगार करने अवसर और व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। महिलाओं के लिए और भी योजना हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिला उद्यम के लिए बिना गारंटी के 20 लाख तक के लिए लोन प्रदान किया जाता है। और भी जैसे हैं स्टार्टअप इंडिया, ड्रोन दीदी योजना, ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि कार्य के लिए ड्रोन का परीक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा और बचत कैसे की जाए, उसके लिए भी योजना है, जैसे कि सुकन्या समित्र योजना, बेटियों को 10 वर्ष तक की आयु और सुरक्षित भविष्य और उच्च शिक्षा के लिए एक छोटी बचत योजना है। दूसरी योजना इस प्रकार है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, बालिकाओं को जन्म से लेकर की पढ़ाई तक राज्य सरकारों जैसे उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न किस्तों से आर्थिक सहायता दी जाती है। और सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में भी बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब रेखा से नीचे BPL जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। और विधवा पेंशन योजना के तहत निरक्षित महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए राज्य सरकार द्वारा मासिक पेंशन दी जाती है। उसमें एक कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के कौशल परीक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर अपने लिए उद्योग खड़ा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और इस प्रकार हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ग्रामीण रोजगार और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ग्राम उद्योग सहायता, इन सब में सिलाई, अगरबत्ती बनाना, बकरी पालन, पापड़ अचार व्यवसाय भी हैं। आगे बढ़ने के तरीकों में बहुत से तरीके हैं, जैसे कौशल परीक्षण लें, स्वयं सहायता समूह से जुड़ें, मोबाइल और डिजिटल भुगतान सीखें, स्थानीय बाजार के साथ साथ ऑनलाइन बिक्री भी शुरू करें। सरकारी योजना की जानकारी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके जिले गाँव के अनुसार रोजगार सुझाव या घर बैठे कमाई का ऑनलाइन तरीका भी बता सकते हैं, जैसे कि सिलाई के उद्योग में आप 5,000 से 15,000 तक शुरुआती निवेश कर सकते हैं, अगरबत्ती बनाने में आप 2,000 से 8,000 तक का निवेश कर सकते हैं, बकरी पालन में आप 10,000 से 30,000 तक का कर सकते हैं, पापड़ अचार व्यवसाय में 2,000 से 5,000 तक का आप

0: शुरुआती निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको इसका दुगना लाभ होगा।
1: तो क्षमा बहन देखो, अब हमारे भैया बहन सुन रहे वार्ता ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, जब इसे जानकारी दे रहे श्री मोहित कुमार। और क्षमा बहन देखो, अब बहुत से भैया ने

0: भी हमको मिली है।
1: और वहीं फरमाइश भेजने वाले हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर निर्मला नहावकर।
0: और हमको फरमाइश मिली है किला छावनी से प्रदीप कुमार पाल और उनके परिवार की।
1: और वहीं फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं चर डोगरी पिपरिया जिला कबीर छाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू अजय कुमार साहू जय किशन श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी माया साहू ने।
0: और हमें फरमाइश मिली है शिवाजी नगर बडाली देशमुख महाराज से राजेश खोबरखेड़े और उनके परिवार की।
1: और वहीं फरमाइश भेजने वाले हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां और आजाद।
0: और देखो फरमाइश मिली है रामचंद मखीजा महेंद्र मोदी ताज अंसारी जी रामकुमार रेवार दुर्गाराम साहू जी पूना जी नावकर शंकरलाल जैसवाल की। और साथ ही साथ हमको फरमाइश मिली है ग्राम दूने नगर जनपद बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया और उनके परिवार की। तो क्षमा बहन इन सब भैयन की फरमाइश पर सुन लेते हैं जो लोकगीत।
2: मर गई गर्म।

0: जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
1: तो क्षमा बहन, देखो अब कार्यक्रम में समय भी ना बचा है और स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि हम ले लें आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से अनुमति। तो अपने भैया रघु
2: और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति।
1: भैया बहनों
2: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए कोई व्यक्ति की सूचना सुने। 25 अप्रैल 2026 से लापता है नाम है शारदा, पत्नी मनोज कुमार, इनकी उम्र है 20 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, शरीर की बनावट सामान्य, रंग गोरा, चेहरा अंडाकार, काली आंख, काले लंबे बाल और क्रीम रंग का सूट, क्रीम रंग का सलवार पहने हुए, साथ में सोने व चांदी के आभूषण पहने हैं। जिस किसी को मिले, ये ग्राम उमेदपुर थाना कैंट जनपद बरेली से लापता है, जिस किसी को मिले संजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट बरेली को सूचित करें और फोन नंबर 9457481894 इस पर भी फोन कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 94-57-48-18-94। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए प्रादेशिक समाचार सुनते हैं लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम लोकायत तनवा खेती किसानी मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: सोच रहा हूँ

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया, विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है।
1: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए।
0: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी

0: कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार दो दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
1: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
3: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, आरआरसी सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य कराई गई, सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: उत्तर प्रदेश के आतंक रोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ

बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत में सबसे पहले लिया है हमने हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत। ये सुनने की फरमाइश आप सभी की इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, बली अकरम नूरजहां, उल्ला अकरम नूरजहां, राजनांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं शीतल रेडियो श्रोता संग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारीपुर कॉलोनी कलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी बली डोम, कुमारी डल्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म हम साथ साथ हैं का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म से, कुमार सानू की आवाज सुनने की फरमाइश आप सभी की। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयते बिरक, मीका बिरक, और आप हैं छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास ओली चौक बरेली से, राम प्रसाद शर्मा, भाई फजलुद्दीन, जयवी, वंदना, मनोरमा देवी, अणय, अर्णब, रीता, विनोद और उनके परिवार के सभी सदस्य, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खानू अंसारी, डुमराव बिहार से डल्लू अंसारी, सोनम आदिवा और दानिश अंसारी, सरीमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेलोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, मौला दुर्गा प्रसाद बिसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, बटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से सोमेंद्र यादव, आनंद यादव, अमन यादव, अंकिता यादव, अनिता यादव, सूरत श्री यादव, पुष्पेंद्र यादव, सनोज यादव, सोनी यादव, विनीता यादव, सुनीता यादव, प्रीति यादव, और आप हैं ये मोहल्ला नंबर 5 से कस्बा बिल्ती से रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन बेगम अलवी, अजानबी अलवी और हानिया अलवी, निजाकत अलवी, शाहिन बेगम अलवी, आहिल बाबू अलवी, आदिल अलवी, सुधर खेड़े राजमाता नगर बुल ठांडा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार, शिवानी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदिल आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, परी महल चकासगंज से आवाद खान, नवील खान, असलम सैफी, जय शमसुल कमर, और आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर सोनू निगम कुमार शानू की आवाज़ में हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है हमने फिल्म गुन्हा से, बाबुल सुप्रियो अलका याग्निक की आवाज़ें सुनने की फरमाइश आप सभी की। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित, और ये कुंज निवास राधा कुंज जत नगर बरेली से बी के जौहरी, विनोद, प्रमोद, मनोज, अरुण जौहरी, आदर्श, मंजू, अनुपम, पूनम, सोनी, मीनू, अर्पित, निमिश, अर्चना और विनीता जौहरी। कोट बनारायणपुर बाला बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बदनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी, हिना कौसर, और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, आदिया खान, आसमा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, मुज्तवा खान, आफिया खान, राउ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, और मोहल्ला तलैया उल्ला जागे बरेली से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, मल्लू, शबीना, रामू, प्रजापति, धर्मपुर बरेली से फहीम खान, सद्दीक अली, जमजम, फातिमा, अंजू, अज्जू साबिया। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आई सुनता आप सभी की फरमाइश पर फिल्म गुना का गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है जहर फिल्म से यशुदास की आवाज़ सुनने की फरमाइश आप सभी की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवास शर्मा, प्रियदर्शनी आकाशवाणी श्रोता संघ से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र डंडोगावाड़, रविंद्र सोनार, सन्नी

मुन्ना बंडू दादा बहादुरपुर रतचौक जिला जलगांव से, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर जहर फिल्म का गीत।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। बदलते परिदृश्य में शिक्षा और इसके विभिन्न माध्यम, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय लखनऊ की उपनिदेशक रीना चौधरी। आपसे बातचीत कर रहे हैं सुभाष खन्ना।
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों जब हम शिक्षा की बात करते हैं, इसे हम जब आदिकाल से देखते हैं, तब हम कहीं किसी गुरुकुल में, कहीं ऐसे जगह पर, कहीं शांत जगह पर जाकर किसी गुरु के समीप हम शिक्षा लेते थे। बदलते परिदृश्य में ये माहौल बदला है, या यूं कहें ये परिदृश्य बदल गया है। आज जब हम बहुत भौतिकवादी हो गए हैं, हर व्यक्ति बिल्कुल समय को पीछे छोड़ना चाहता है। वो काम कर रहा है, वो ढेर सारी चीजें सीख रहा है, ढेर सारी उसके पास अपनी बाधाएं हैं, चाहे वो विवशता में हो, चाहे वो ऐसी स्थिति में हो, दूर दराज में रह रहा हो, या वो ग्रेडी है, अपने किसी और कार्य में व्यस्त है, पर उसके अंदर ये इच्छा है, वो लगातार शिक्षा लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ढेरों कई उसके शिक्षा संबंधी बाधाएं भी हैं, उस विषय में नहीं है, उस विषय से जुड़ा नहीं है। कई बार वो गैप हो गया है कि भाई शादी हो गई, या कहीं हम काम में लग गए, 2-4-5 साल का गैप हो गया है, वो शिक्षा कैसे ले सकता है, कहाँ वो माध्यम है, कब एडमिशन ले सकता है, ये ढेर सारी बातें कई बार हमारे शिक्षा में बाधा होती हैं, कई बार हमें रोकती हैं, और कई बार इसकी अज्ञानता भी होती है और हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते, या यूं कहें कि हमें लगता है कि शायद हम योग्य नहीं हैं आगे शिक्षित होने के लिए। ये ढेर सारी बाधाएं आजकल कई माध्यमों ने दूर की है, कई विश्वविद्यालयों ने दूर की है, ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब ये क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आइए इसी विषय पर जानकारी लेते हैं रीना चौधरी जी से। आप उपनिदेशक हैं इग्नू में, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में। बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में मैम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय चुना है। वास्तव में आज जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, या जिनकी शिक्षा में गैप हो चुका है
1: जी।
2: ऐसे लोग भी, ऐसे युवा भी, और किसी भी उम्र के वो लोग हो सकते हैं
1: जी, जी।
2: उम्र उनकी शिक्षा ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं बन सकता है, तो ये उनके लिए प्लेटफॉर्म हो सकता है दूरस्थ शिक्षा का, जिसे कि हम कहते हैं ODL लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से भी ये शिक्षा को ग्रहण करने के इच्छुक लोग जुड़ सकते हैं, और इसमें इतनी वैरायटी है कोर्सेज की कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किस फील्ड में उनको जाना है, एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्हें जाना है, एजुकेशन के फील्ड में उन्हें जाना है, सोशल साइंसेज के फील्ड में जाना है, या साइंस के फील्ड में जाना है। कई बार क्या होता है कि उसके मिनिमम परसेंटेज के कारण, परसेंटेज कम था, कॉलेज में सीट्स का लिमिटेशन था, तो उस समय वो अपना ग्रेजुएट नहीं कर पाया। तो इस समय ODL सिस्टम से जुड़कर ऐसे युवा, ऐसे लोग अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, भले ही उनका परसेंटेज कम हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट लिमिटेड नहीं होते हैं। जबकि रेगुलर मोड में आप देखेंगे, जो रेगुलर मोड के विश्वविद्यालय होते हैं, उसमें नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होने के कारण बहुत सारा युवा ऐसा है जो कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का, ऑनलाइन लर्निंग का होता है। और यदि मैं फिर से आपको इसमें बताऊं कि यहां कोई, यदि किसी ने ग्रेजुएशन में कोई विषय नहीं पढ़ा है लेकिन उसमें मास्टर्स करना चाहते हैं
1: जी, जी, जी।
2: तो मास्टर्स करने के लिए भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक महत्वपूर्ण मोड हो सकता है। किसी कोई युवा है जिसने कि हिंदी विषय को, हिंदी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदी विषय को उसने स्नातक स्तर पर नहीं पढ़ा और उसमें मास्टर डिग्री करना चाहता है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है
1: जी, कि और यहाँ भी यूनिवर्सिटीज हैं इसमें जी।
2: हाँ, इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का विश्वविद्यालय राजर्षि ओपन टंडन यूनिवर्सिटी है
1: जी, जी,
2: तो
1: जी,
2: इस प्रकार से इन विश्वविद्यालयों से जुड़कर वो अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं
1: जी, जी, जी,
2: कुछ विशेषताओं के अंतर्गत क्या है कि स्टडी मटेरियल उनके घर के एड्रेस पर भेज

0: जाता है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी उपलब्ध रहता
1: जी
0: है, तो वहां से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से घर में रहकर या अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी में काम करते करते उसके साथ ही अपनी डिग्री को हासिल कर सकते हैं, और जो उनका सपना है उच्च
1: जी
0: शिक्षा में डिग्री हासिल करने का, उसे प्राप्त कर
1: जी
0: सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी एक और सवाल रहता है, बहुत बार युवा इस बात से भी घबराता रहता है कि शायद हम जब इतने जो है इंटरडिसिप्लिनरी हो गए या हमारे स्वरूप में शिक्षा हमें मिल जा रही है, तो क्या उसकी मान्यता है? क्या वो उतने मानक पर खरा उतर रहा है? हम कहीं और नौकरी करना चाह रहे हैं? किसी के इक्विवेलेंट डिग्री क्या उसी के बराबर होगी जो नॉर्मल रेगुलर एजुकेशन में थी?
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और वास्तव में जो ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी होता है मान्यता से संबंधित। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा भी ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। कोई
1: जी
0: भी पाठ्यक्रम जो किसी भी छात्र छात्रा या विद्यार्थी के द्वारा वो रेगुलर मोड से किया गया है, या ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से किया गया है, या ओडीएल मोड के माध्यम से किया गया है,
1: जी
0: इन तीनों की डिग्री ही समान है, एक पार है। और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय या कॉलेजेस
1: जी
0: ब्लैक लिस्टेड होते हैं, उनकी लिस्ट भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। तो जब भी हमारा युवा किसी विश्वविद्यालय को ज्वाइन करता है तो वो वहां पर चेक कर सकता है।
1: जी मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो यूजीसी की साइट है आप वहां जाएं, वहां चेक करें, और साथ ही साथ मैम ने जो दूरस्थ शिक्षा माध्यमों की बात की है, आप वहां जाकर एडमिशन लें और उससे संबंधित जानकारी लेकर आप अपने कोर्स में जिसमें आप शिक्षित होना चाहते हैं, जिसमें आप विकसित होना चाहते हैं, स्किल लेना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लें और खुद का विकास करें, शिक्षित बने, जिससे आप रोजगार पा सकेंगे, अच्छा रोजगार पा सकेंगे या खुद में उसका नॉलेज रख सकेंगे, अपने जीवन को सुधार सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
2: बदलते परिदृश्य में शिक्षा और इसके विभिन्न माध्यम, इस विषय पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय लखनऊ के उपनिदेशक रीना चौधरी के साथ बातचीत कर रहे थे सुभाष खन्ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है जो लोग किसी कारण से भी शिक्षा से वंचित हुए हैं। इग्नू की जो विशेषता है, खासतौर पर दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, भारत और विदेश में अध्ययन केंद्र, यूजीसी और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है, लचीला प्रवेश है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिल जाता है, जो पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं वो प्रमाण पत्र है, डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, स्नातक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातकोत्तर है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि नौकरी के साथ पढ़ाई संभव है, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए तो बहुत ही उपयुक्त है, कम शुल्क में उच्च शिक्षा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इग्नू उन विद्यार्थियों के लिए विश्वसनीय और प्रभावी शिक्षा मंच है जो समय, स्थान या आर्थिक कारणों से नियमित कॉलेज नहीं जा सकते। अब इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का ये अंक यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी लखनऊ है।
4: सुनो ना।
5: हाँ।
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: श्रोताओं, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी लखनऊ है। श्रोताओं, प्रस्तुत है सुगम संगीत के अंतर्गत प्रगति राठौर के स्वर में गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रगति राठौर के स्वर में गीत व भजन। कार्यक्रम था सुगम संगीत।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम है चित्रपट।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम था चित्रपट से। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: विज्ञान जगत के साथ जहां हर जगह सवाल का जवाब मिलता है, रोचक अंदाज में क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार

0: नमस्कार आकाशवाणी से नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
4: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
5: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय

0: वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर

0: शेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टोंटन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय

0: मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अर्थ फिल्म के गाने से, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने, बोल कैफी आसमी के संगीत कुलदीप सिंह का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आहिस्ता आहिस्ता अब सुनिए इस फिल्म का गीत भूपिंदर की आवाज में। निदा फासली के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

खयाम के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर और तलत अजीज ने इस गीत को गाया है, बोल लिखे हैं मखदूम ने।

अभी आपने लता मंगेशकर का गाया लिबास फिल्म का गीत सुना। बोल गुलजार के थे संगीत आरडी बर्मन का। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की। मेरा

0: राजू।
1: राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे कि राज जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा।

0: राम।
1: राज कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पृथ्वीराज जी, जिन्हें की पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर रख लिया। और वहां शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैब दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहां से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है, यानी करियर की जो शुरुआत है, एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया, ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए। और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से यह कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात अलग है कि आज केदार शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं, बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पिता होने के कारण जाना जाएगा। ऐसी दीवानगी है फिल्मों को लेकर मेरे बेटे में।

0: रहे।
1: राज कपूर सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ, और केदार शर्मा ने एक दिन, बल्कि क्या अक्सर वो इस बात पर गौर किया करते थे कि राज कपूर जो हैं वो हमेशा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारा करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं, और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने ये महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं, और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल।

फिल्म नील कमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला, और ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल, फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं ना कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है, और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी आग।

फिल्म आज कई कारणों से विवादग्रस्त रही और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर सकी। लेकिन राज कपूर घबराए नहीं, 1949 में वो लेकर आ गए आग की सारी तपिश बुझाने के लिए बरसात।

बरसात अपने साथ साथ सफलता का सैलाब लेकर आई और इसी के साथ राज कपूर की एक नई टीम बनी। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी, और कैमरामैन राधु करमरकर। राधु करमरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने। इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था। आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप टप टप गिर रही हों, इतना तरोताजा बरसात का संगीत उस समय भी था और आज भी है।

अब बात 1950 की। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आईं और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आई। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता बाली, सुरैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भंवरा, सरगम और बावरे ने मुझे

ये 6 की 6 फिल्में सुपरहिट फिल्में रहीं और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे, महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सबको कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है, लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मयार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं, और शायद उन्हें इंतजार था अपनी फिल्म

इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की चार फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस और चारों फिल्में हिट थी।

अगला साल राज कपूर के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, या ये कह लें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। 1953 में राज कपूर की तीन फिल्में आईं, धुन, पापी और आह।

आर जो राज कपूर की बेहद सफल हो सकती थी वाली फिल्म थी, क्योंकि आ फिल्म में ऐसी हर वो बात थी जो एक फिल्म की सफलता की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी। लेकिन बावजूद उसके ये फिल्म राज कपूर के लिए एक आ ही साबित हुई।

राज कपूर जैसी शख्सियत के बारे में सिर्फ एक ही कार्यक्रम में सब कुछ कह देना या बता देना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं।

हमारी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन अपने हिस्से का किरदार निभाकर 2 जून 1988 को इस दुनिया के रंगमंच से विदा हो गया, लेकिन सबको सिखा गया शो मस्ट गो ऑन।

0: जाना।
1: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम। राज कपूर साहब पर हमने कुछ बातचीत की। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। स्वर शोध और आलेख अमरकांत का और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिलहाल नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में एक बजे।
3: नमस्कार, खेल दर्पण के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परिचर्चा। परिचर्चा का विषय है चुनौतियों से कैसे पार पाएं चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दीपांकर मिश्र। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा चुनौतियों से कैसे पार पाएं चैंपियन।
4: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के इस अंक में आप सभी का स्वागत।

0: श्रोताओं, भारत जैसा कहा जाता है कि प्रतिभाओं का देश है। यहाँ ढेरों प्रतिभाएं हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज विशेष रूप से हम भारतीय खेल और खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि भारत में खेलों की बड़ी ही अद्भुत प्रतिभाएं रही हैं और अभी भी हैं। लेकिन जब हम परिणामों से उनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, जैसी विशाल जनसंख्या है हमारी, उस तरह का प्रदर्शन जो है वो नहीं हो पाता है, नहीं निकल के आ पाता है। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है, और ये हमारे खिलाड़ियों ने समय समय पर अपने प्रयासों से साबित भी किया है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो विशेष मेहमानों को। एक तो हमारे साथ हैं संजय राय जी, जो कि कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और साथ में हमारे हैं नीरज गुप्ता जी, जो प्रदेश स्तरीय फुटबॉलर हैं और अभी भी खेल से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो संजय जी और नीरज जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूँ।
1: धन्यवाद।
0: संजय जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं मार्ग में उनके बाधा बन जाती है प्रतिभा के बावजूद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक खिलाड़ी के रूप में कैसे देखते हैं कि कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो एक भारतीय खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है।
1: अपने जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है खिलाड़ियों के लिए, तो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और उसके प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट। हम अपने एकल प्रयासों से एक लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, हम एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठना है हमको, और इससे ऊपर का जब हमारा टारगेट होगा और उसको अचीव करना होगा, तो वहाँ हमारी जो भी क्षमताएं हैं, पूरी क्षमताओं के साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। खिलाड़ी के लिए जैसे कुश्ती से है या हॉकी का प्लेयर है या किसी भी फील्ड का प्लेयर है, तो हर गेम के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और फिर जो एक खिलाड़ी को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जिसका होता है, जिसको गुरु कहा जाता है, कोच कहा जाता है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है।
0: चलिए, इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं नीरज जी से कि नीरज जी, आपको क्या लगता है जो खिलाड़ियों को चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, भारतीय खिलाड़ियों को, आपके हिसाब से वो कौन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे?
2: मैं संजय राय जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। खिलाड़ियों को सबसे बड़ी चुनौती बेसिक होती है कि जिस खेल में वो जुटे हुए हैं उस खेल का उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अलग अलग खेल के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, फाइनेंशियल की जो इन्होंने बात कही है वो भी बात है, इसमें इसकी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
0: आपने जैसे कहा कि आर्थिक सहायता, तो आप लोग एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक पक्ष जो है खेल का, वो एक खिलाड़ी को किस तरह से प्रभावित करता है और उसके प्रदर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है?
1: फाइनेंशियल सपोर्ट का तात्पर्य यह है कि खिलाड़ी की, जैसे हम चूंकि कुश्ती से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक रूटीन वर्क के बाद एक रूटीन डाइट चार्ट होता है। अगर हमने आज सुबह के सेशन में 3 घंटे वर्जिश किया है, पसीना बहाया है, तो नेक्स्ट सेशन में हमें बिल्कुल तैयार होने के लिए इस तरह की डाइट चाहिए कि बीच का जो समय है उसको रिकवर कर ले वो, यानी कि हम अपने इवनिंग सेशन के लिए पूरी तरह से फिट हो जाए, हमारी डाइट इस तरह से संतुलित होनी चाहिए। उसमें घी है, बादाम है, दूध है, सूखे मेवे हैं और जो भी सीजन के फल अवेलेबल होते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तब जाके कहीं हमारी रिकवरी इतनी अच्छी हो पाएगी कि हम अपने मॉर्निंग सेशन की ट्रेनिंग के बाद का जो बीच का समय होता है उसमें रेस्ट करने के बाद हम अपने इवनिंग सेशन के ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाए। दूसरा चीज इसमें है फाइनेंशियल सपोर्ट में, ये भी है कि हमको कहीं खेलने जाना है या किसी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में अगर हमको जाना है, तो हमारे पास जो हम लोगों के खेल के परिधान होते हैं, अब हर चीज काफी महंगी हो गई है, तो जैसे रेसलिंग शूज है, कॉस्ट्यूम है,

0: है और प्रॉपर जो किट होती है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल गेम है तो इंडिविजुअल गेम में इंडिविजुअल व्यक्ति भी स्पॉन्सरशिप किसी को दे सकता है कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल गया, उसने हमारा पूरा खर्चा उठाया, भाई मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, वो हमारे पूरे नेशनल खेलने जाने से आने तक का जो भी कुछ हुआ, कोई व्यक्ति हमें ऐसा स्पॉन्सर मिल गया या कोई ऐसा हमें सपोर्ट करने वाले मिल गया कि भाई चलो हम आपके बादाम का खर्च उठा लेते हैं। तो ये जैसे एक व्यक्ति नहीं, कई लोग मिलके भी एक व्यक्ति को छोटा छोटा हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
1: जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। नीरज जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप फुटबॉलर हैं तो विशेष रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में जो आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, वो चाहे सरकार से आए या निजी संस्थानों से आए, वो कैसे प्रभावित करती है और अगर उसको बेहतर किया जाए तो कैसे आपके खेल की गुणवत्ता बढ़ सकती है?
2: जैसे कि संजय भाई ने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए प्रॉपर डाइट होता है, तो खिलाड़ी अगर 3 घंटे 4 घंटे अपना पसीना बहाता है तो नेक्स्ट जैसे कि लेवल के लिए, जो अगर सुबह उसने वर्कआउट किया अपना 3 घंटे 4 घंटे जो भी प्रैक्टिस किया, उसके बाद उस खिलाड़ी की पूरी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। जो एनर्जी उनका एग्जॉस्ट हुआ तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होता है, मेंटेन किया जाता है, चार्ट वगैरह उसकी तैयार होती है, तो उस डाइट को प्रॉपर पूरा करने के लिए एक रूटीन के हिसाब से अपना आदमी डाइट बराबर करता है, तो उसमें भी खर्चे भी ज्यादा आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूस वगैरह टाइम टू टाइम हर चीजें, तो डाइट पर भी असर पड़ता है। डाइट पे जो फाइनेंशियल आता है उस पे भी असर, वो भी खिलाड़ी के मतलब उस पे असर करता है, आगे बढ़ने के उस पे असर आता है उससे भी।
1: चलिए, तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चलिए, जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं, अगर कि अपने खेल के, अपने प्रदर्शन की बदौलत उनकी कहीं नौकरी लग जाती है तो फिर भी उनके सामने एक विकल्प खुल जाता है, या फिर वो अपने खेल में बहुत ही ऊंचा नाम कर लें, किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिताब ले आए, तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो बीच के खिलाड़ी हैं, जो अभी तक उतना नाम नहीं कर पाए हैं या अभी भी संघर्षरत हैं, तो एक बात तो ये बताइए कि उनके लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध है सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, और उसमें कहाँ कमी है जिसे पूरा किए जाने की जरूरत है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका ये, क्योंकि ये बिल्कुल आज के परिवेश में खिलाड़ी जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खिलाड़ी को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें पहले तो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुश्ती फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, तो कुश्ती फेडरेशन अपने हर आयु वर्ग के सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, अंडर 15, अंडर 23 लेवल का नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में। तो हर वेट कैटेगरी में फर्स्ट, सेकेंड और दो थर्ड, मतलब 4 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं हर वेट कैटेगरी से, मेन एंड वोमेन, और उसके बाद इन लोगों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक कैंप देती है जिसको नेशनल कैंप कहते हैं, हम लोग इंडिया कैंप भी उसको कहते हैं। तो उसमें सारी व्यवस्था रहती है और सारे उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के सारे कोचेज होते हैं, वो आपको उनका प्रैक्टिस रूटीन पूरा मेंटेन करना होता है और कंटिन्यू आपको उसमें ड्यूरेशन होता है इंडिया कैंप का, 90 दिन का होता है, 60 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। इसके अलावा जो प्लेयर छूट जा रहे हैं, जिनका नेशनल चैंपियनशिप में मेडल नहीं आ पा रहा है, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन भाई वहां पे बस फर्स्ट, सेकेंड और दो थर्ड की ही जगह है, तो इसमें जो लोग सक्सेस हो गए, जिनका मेडल आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तत्काल में रैंकिंग सीरीज का प्रावधान डाला है। रैंकिंग सीरीज का नियम यह है कि उसमें चाहे एक वेट कैटेगरी में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कोई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोई बाउंड नहीं है उसमें। और रैंकिंग सीरीज में अगर हम या जो भी प्लेयर है रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो, और रैंकिंग सीरीज में अगर वो मेडल देते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म ये मिल जाता है कि वो सीधे इंडिया कैंप के हकदार हो जाते हैं, उस नेशनल कैंप के हकदार हो जाते हैं जिस नेशनल कैंप के लिए उन्होंने एक ख्वाब बना के बरसों से ग्राउंड पे मेहनत किया था, पसीना बहाया था, और फिर वो उसी इंडिया कैंप से, नेशनल कैंप से वो शुरुआत होती है, जो सपना लगभग हर एक खिलाड़ी देखता है कि जो भी टीम बाहर जानी होती है नेशनल कैंप से ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ट्रायल लिया जाता है, उसमें जो भी बच्चे फर्स्ट आते हैं वो उस समय की जो भी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होनी रहती है उसके हिसाब से वो ट्रायल होता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बच्चे जाते हैं। तो एक तो फेडरेशन का ये बहुत बड़ा एक खिलाड़ियों के लिए कदम है, और इसके अलावा एक फाइनेंशियल सपोर्ट में जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WPL रेसलिंग प्रो लीग ऑर्गेनाइज करती है, ये भी कहीं कहीं ना कहीं बहुत ही एक खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है कि जैसे अगर उसमें कोई भी खिलाड़ी जिसका एक अच्छा

0: परफॉर्मेंस रहा है अपने करियर का और उसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है और अचीवमेंट उनका अच्छा रहा है और कंटिन्यू वो मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेशनल टूर्नामेंटों में, तो उनकी फेडरेशन के माध्यम से जब टीमें इनकी बोली लगती हैं तो वो अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है अवेलेबल कराते हैं, तो जो भी ऑनर है उनको अगर कोई ऑनर लेता है अपनी टीम से खेलने के लिए तो वहां एक अच्छा पैसा मिलता है उनको, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लगभग हमको ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी को अगर एक टीम ऑनर अपने टीम से खेलने के लिए खरीद लेता है तो वो टोटली चीज जो फाइनेंशियल हेल्प की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर का पूरा हो जाता है, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत भी हो जाता है जिससे वो अपनी आगे की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार हो रहा है देश में, फेडरेशन की अच्छी पहल है। और नीचे थोड़ा सा एक कहना चाहेंगे कि जैसे एक तो हम एक लेवल पे हम बात कर रहे हैं लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश जो अपना है वहां से जहां से हम प्रतिभा को तैयार करते हैं नर्सरी जो होती है खेल की, क्योंकि खिलाड़ी एक तो खिलाड़ी हमेशा अभाव में होता है, प्रतिभा अभाव में होती है, तो हमें ये जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं पहले खुद को बोलता हूं कि अगर मैं ही हूं तो हमें अपने गांव में या हमें उस जगह पे जहां मैं फिलहाल अभी हूं वहां पे ऐसा देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए हम लोगों को कि भाई ऐसा कौन सा बच्चा है, अगर वो बच्चा है तो हमें उसका हेल्प इतना ही हमें उसको हेल्प करना है कि उसको एक अच्छी जगह बतानी है जहां से उसके रुचि के हिसाब से उसके शौक उसके मुताबिक जिस गेम को खेलना चाहता है उसका कोचिंग देने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको वहां पे एक ग्राउंड मिल जाए जिस पे जाकर वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ये सब चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करें हम सभी लोग मिलके जो भी लोग खेल से जुड़े हैं तो काफी कुछ चीजें आसान हो जाएंगी।
1: जी संजय जी आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा कि जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की तो हम सब जानते हैं कि भारत में ढेरों प्रतिभाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी होने के कारण।
0: बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश ग्रामीण पृष्ठभूमि रही मेरी और हमें कुश्ती से बड़ा लगाव था, परिवार में भी फादर भी कुश्ती करते थे और हम अपने जिस स्कूल में माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कूल हुआ करता था जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था उसी स्कूल के रास्ते में अखाड़ा हुआ करता था, तो जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते थे तो रास्ते में वहाँ जो उस्ताद जिनको कहा जाता है गांव की भाषा में उस्ताद कहा जाता है, तो उस्ताद जी जो बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे और जो लोग अब वर्जिश करते थे देख के बड़ा अच्छा लगता था उनकी शरीर देख के, तो मन में आता था कि काश हमारी भी शरीर ऐसी होती हम भी मेहनत करते। तो ये तो बात है छठवीं सातवीं जब हम लोग पढ़ते थे, फिर उससे ऊपर जब मैं आठवीं नौवीं आया तो मैं थोड़ा और बड़ा भी हो गया था और शरीर भी काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अखाड़े पे नहीं जाते थे हम लोग लेकिन जब भी मौका मिलता था अपने घर पे अपने दरवाजे पे या कहीं ऐसी जगह जो घर के अगल बगल थी खाली थी वहां पे हम लोग एक वर्जिश का अपना छोटे मोटे गांव वाले जो साधन हुआ करते थे उसको तैयार करके करते थे, तो शरीर इस तरह से ठीक हो रही थी अच्छी हो रही थी और खाने पीने की सारी व्यवस्था थी घर पे दूध घी की सारी व्यवस्था थी। तो हमारे गांव के एक लोग हुआ करते थे जो गोरखपुर उनकी दुकान थी, वो तो उन्होंने देखा था हमको हमारी शरीर देखी उन्होंने गांव में जाके, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको गोरखपुर चलना है कुश्ती के लिए, फादर से बात किया उन्होंने, फादर ने जब हमसे बात किया तो हम तैयार हो गए, तो वो लेके हमको गोरखपुर आए। तो गोरखपुर आने के बाद यहाँ पर प्रॉपर हमारी कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ था, कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ और एक साल तो मैं बिल्कुल गाँव से गोरखपुर आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन एक साल के बाद जब मैं ट्रायल दिया आवासीय छात्रावास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें ट्रायल देने के बाद उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर मंडल लेवल पे फिर स्टेट लेवल पे ट्रायल होने के बाद मैंने अपने सारे ट्रायल क्लियर किए, उसके बाद उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए और जो स्टेट कैंप लगा स्टेट कैंप के बाद फिर फाइनल ट्रायल हुआ तो हमारा सिलेक्शन हॉस्टल के लिए हुआ। तो जो सबसे बड़ी चीज है बेसिक जो है कि ग्रामीण रूरल क्षेत्र में उन लोगों का या ऐसे लोगों का अभाव है जो जैसे कोई कुश्ती का नॉलेज होना चाहिए चाहिए भाई, जिसको कुश्ती का नॉलेज है वही कुश्ती का ट्रेनिंग आपको दे सकता है, जिसको बैडमिंटन का नॉलेज है वही बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में

इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जबकि हमारी नर्सरी ही वहीं से तैयार होती है। अगर हम उस लेवल पे ये चीज अपना कर लेते हैं कि हम अपने ब्लॉक स्तर पे या अपने एक ग्राम पंचायत स्तर पे, जिसको कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको वो किया जाए कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, वहां पे कम से कम इस तरह के दो चार लोग, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजना

0: तैयार हो और उनके नॉलेज से उनको इतना लाभ हो कि उस गेम में वो मतलब करने के लिए उनके अंदर जागरूकता हो, उस गेम के प्रति उनका लगाव बढ़े और वर्क करें। इसके अलावा आता है कि अब जैसे हमने आवासीय छात्रावास का आपसे अभी जिक्र किया था, तो आवासीय छात्रावास कुश्ती के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय स्पोर्ट्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल वीर बहादुर सिंह गोरखपुर और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। तो लगभग लगभग प्रदेश में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज इस लेवल के हैं और इस स्थिति में है प्रदेश में कि स्पोर्ट्स कॉलेज जैसे गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज वीर बहादुर सिंह है, इसमें कक्षा छठवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ में है उसमें कक्षा नौवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ एक से और पांचवीं तक ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि पांचवी के बाद तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है बच्चे के लिए। तो एक से और पांचवी तक का जो जीमा है वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट के ही हिस्से नहीं है, उसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि एक से पांचवी तक का जो बच्चा है उसके तैयार करने के लिए हमें खुद समय निकालना होगा, हमें खुद एक पहल करनी होगी। और उसके बाद से हम जब पहल करेंगे तो निश्चित ही अगर हम 10 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नहीं 10 तो 2 बच्चे तो जरूर सेलेक्ट होंगे उस आवासीय छात्रावास से, उनको जरूर लाभ मिलेगा, उनका करियर जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स में कुछ नया अगर करना है तो हमें अपने आसपास के बच्चों को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं।
1: संजय जी, आपने जैसा कहा कि पांचवी तक हमें प्रयास करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहां की खिलाड़ी जाकर अपनी प्रतिभा संवार सकते हैं और उन्हें एक रास्ता मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सूचना की कमी एक बड़ा कारण है। जो आप चीजें बता रहे हैं उसकी भी सूचना बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, विशेष करके छोटे शहरों और गांवों में तो इसकी बहुत ही कमी है। तो आकाशवाणी का एक माध्यम है जो कि सूचना और अच्छी सूचना का प्रसार करे, ये हमारा कार्य भी है। तो आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो प्रतिभाएं छोटी जगहों पे हैं, जिनके पास अभी सूचना के उतने साधन नहीं हैं और वो इस द्वंद्व में हैं, इस असमंजस में हैं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे संपर्क करें ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिले, उसे तराशने का एक मौका मिले, तो आप जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, उन्हें आप बताना चाहेंगे वो किससे संपर्क करें, किसके पास जाएं?
0: ये बहुत अच्छा रहा आपने चर्चा किया इस पे। ये वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, पूरा इसको कहा जाए कि व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। आज भी फार्म बिक चुके हैं, लोगों ने फार्म भर दिया है, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, किसी गांव में जाके किसी खेलने वाले बच्चे से जो एथलेटिक्स का शौकीन है या उसकी प्रैक्टिस करता है उससे पूछेंगे तो बताएगा कि नहीं, हमें नहीं पता कि फार्म मिला कि नहीं मिला। तो ये प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बकायदा मतलब इसकी सूचना भेजी जानी चाहिए। तो इस सब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला खेल कार्यालय होता है, तो जैसे ही ये फॉर्म बिकने होते हैं तो सबसे पहले इनकी नोटिस जिला खेल कार्यालय को जाती है। वो जिला खेल कार्यालय पे नोटिस चस्पा होती है, उस पे लिखा रहता है कि फला से फला डेट तक ये फॉर्म गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का फॉर्म फला से फला डेट तक वितरित किया जाएगा। यहाँ से आप उसकी एक निर्धारित उसका शुल्क होता है, वो शुल्क देके आप उस फॉर्म को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक रीजनल कार्यालय होता है, तो आप अगल बगल के अगर जिले के खेल कार्यालय से चीज स्पष्ट नहीं होती है तो आप रीजनल ऑफिस पे पहुंच सकते हैं, जहां से 100% ये स्पष्ट होनी ही होनी है कि ये फार्म बिकेगा, कब से बिकेगा, इसका मूल्य क्या निर्धारित होगा, वो सारी चीजें आपको जिला खेल कार्यालय से अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप अपने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से ले सकते हैं, जो हर रीजन में एक रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का ऑफिस बना हुआ है, जहां से जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रन करता है, आपको वो सारी जानकारियां वहां से मिल सकती हैं, बशर्ते कि आपको वहां तक जाना होगा।
1: मतलब ये हुआ कि जो भी नई प्रतिभाएं हैं, जो छोटे शहर और गांव के खिलाड़ी हैं, वो अपने जिले के खेल कार्यालय और जो स्थानीय केंद्र हैं उसके संपर्क में रहें, तो उन्हें समय आने पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती रहेंगी। चलिए नीरज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में भारत में कई प्रतिभाएं समय समय पर दिखती हैं, बड़े नाम आते हैं, लेकिन अगर एक टीम के रूप में चर्चा की जाए तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं फीफा की रैंकिंग में बहुत नीचे है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद एक टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना लचर क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है?
2: इसके मुख्य कारण ये है कि

0: खिलाड़ियों को सही जो दिशा निर्देश है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि संजय भाई ने कहा अभी कि खिलाड़ियों को जानकारी नहीं हो पाती है, आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा है फुटबॉल का कि हमारी देश की जो टीम है, ना बढ़ने का कारण यही है कि खिलाड़ियों को सही चीजें और सही फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल पाती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबी रहती हैं। अभी भी हम गांव क्षेत्र में जाएं तो खिलाड़ियों को देखें तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर भी मौजूद हैं, पर उनको तराशने की ही जरूरत है। ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा
1: ये चुनौती बनती है। जी संजय जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि संजय जी जो हैं वो कुश्ती के साथ ही कुश्ती की एक जो एक नया प्रकार है ग्रैपलिंग रेसलिंग, उससे भी जुड़े हुए हैं और उसके बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि ये एक नई विधा है कुश्ती की और इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रैपलिंग रेसलिंग जो है वो क्या है, वो पारंपरिक कुश्ती से किस तरह से अलग है, और अगर ग्रैपलिंग रेसलिंग में कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए?
0: ग्रैपलिंग रेसलिंग जैसे नाम दिया गया है, इसको ग्रैपलिंग रेसलिंग रेसलिंग नाम इसलिए दिया गया कि रेसलिंग ही इसको, रेसलिंग की जो भी फेडरेशन होती है, चाहे वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW जो वैश्विक संस्था है कुश्ती की, उसी के अंतर्गत रन करती है। और दूसरी चीज की किसी भी देश में जो भी ग्रैपलिंग की फेडरेशन होगी, उस देश की जो नेशनल एसोसिएशन फेडरेशन होगी उसी के अंतर्गत संचालित की जाएगी, कोई अलग उसके लिए संस्था अलग से नहीं बना सकता है। तो ग्रैपलिंग रेसलिंग की एक एसोसिएट स्टाइल है, जैसे कि जो प्रोफेशनल स्टाइल है रेसलिंग की ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, उसके बाद ग्रैपलिंग एसोसिएट स्टाइल में आता है रेसलिंग की। तो ग्रैपलिंग रेसलिंग में, ग्रैपलिंग और रेसलिंग में सिर्फ अंतर इतना ही है कि ग्रैपलिंग रेसलिंग में जैसे रेसलिंग और जूडो को मिला के दोनों की टेक्निक, कुछ टेक्निक इसकी रेसलिंग से ली गई है और कुछ टेक्निक जूडो से ली गई है। तो रेसलिंग और जूडो को मिला के इसकी सारी टेक्निक बनी हुई है और इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। जैसे चोक किया जाता है, चोक होने के बाद से जो लोग मतलब बेहोश हो जाते हैं, इसको तो एक तरह से इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। तो सबमिशन रेसलिंग भी इसको कहा जाता है, ग्रैपलिंग रेसलिंग है। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अभी भारतीय कुश्ती संघ ने इसके लिए अलग से एक कमेटी भी अडॉप्ट कर दिया है कंट्री में अपने, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया अंडर एजिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें एक अलग से एक ऑप्शन मिल गया उन लोगों के लिए कि जैसे जो लोग काफी वर्क कर रहे थे लंबे टाइम से और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार ग्रैपलिंग रेसलिंग को भी करके देखो, हो सकता है कि आपकी वही टेक्निक वही मेहनत यहाँ एक अच्छे मुकाम पे आपको लेके जाए। और अब इसको पूरे देश में इसके सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, जैसे रेसलिंग के सेंटर हैं तो इसके भी हर जिले पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जोन पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे। और अभी फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी अगर इसको सर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे भी काफी इसकी इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, एशियन चैंपियनशिप की, यूरोपियन चैंपियनशिप की सारी वीडियो पड़ी हुई है, जो भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है, उसका बेसिक टेक्निक क्या है, उसमें मतलब क्या आपको करना होगा, कैसे चेंज लाना होगा, आप अगर रेसलिंग से ग्रैपलिंग रेसलिंग में आते हैं तो आपको क्या चेंजिंग करनी होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई रेसलिंग में काफी वर्क कर रहा है कोई बच्चा और उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो एक बार वो चेंज कर सकता है अपना प्लेटफॉर्म, है आप रेसलिंग में ही लेकिन एक फॉर्मेट अलग हो गया है, आप रेसलिंग से दूर नहीं गए हैं, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। और इसमें हो सकता है आप अगर मेहनत किए हैं, मेहनत करेंगे तो इसमें आपको बेटर रिजल्ट आ सकता है।
1: जी बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा संजय जी कि जो नए प्रतिभाएं हैं, नए खिलाड़ी हैं, वो खेल में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश किसी भी खिलाड़ी के लिए तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप खेल हो, शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में, तो एक अनुशासन बहुत बड़ा, अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में जिसको हम फॉलो करते हैं। और अनुशासन के साथ साथ हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करते तो आपका वर्क नहीं हो सकता है। वर्क के लिए आपका लक्ष्य ही आपको प्रेरित करेगा कि आपको कितना वर्क करना है। अगर आप लक्ष्य अपना नेशनल लेवल का लेते हैं कि हमें नेशनल से गोल्ड लेना है, तो वो आपका लक्ष्य प्रेरित करेगा कि आज आपको इवनिंग सेशन में कितना वर्क करना है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल का टारगेट लेते हैं कि हमको इंटरनेशनल लेवल में एशियन चैंपियनशिप में कॉमनवेल्थ

0: चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है, तो हमेशा आपको एक लक्ष्य देना होगा खुद को, क्योंकि उस लक्ष्य को दिए बिना आप दिशाहीन रहेंगे, क्योंकि उसी लक्ष्य के लिए आपको वर्क करना है, आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्क करना है। और जितना ही आपका लक्ष्य ऊंचा होगा, उतना ही आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, आपकी प्रैक्टिस इस काबिल होगी कि आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे फाइट कर सकें, तो निश्चित ही मेडल भी आएगा। एक बार आप पार्टिसिपेशन करने जाएंगे, एक बार कुछ और आपका अनुभव बढ़ेगा, अगली बार उसी टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आप अचीवमेंट लेके आएंगे। तो आपको एक लक्ष्य देना होगा, और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मतलब आपको सोने ना दे, एक जुनून हो उस लक्ष्य को पाने के लिए, आपके अंदर एक जुनून फिर हो जाएगा कि हमें उसे अचीव करना है तो करना है चाहे कुछ भी हो। तो ये लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा, बिना लक्ष्य के आप वर्क नहीं कर सकते हैं।
1: नीरज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है। जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल में उनको पूरा अपना 100% देना होता है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। और जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल को आगे तक अपने मतलब स्वयं को आगे ले जाने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ कुछ टीमें वगैरह जिला की या स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, नेशनल की, मतलब जो टीम ट्रायल वगैरह होती है उस ट्रायल में अगर वो एक दो बार छट भी जाते हैं फिर भी उनको हताश नहीं होना चाहिए। उनको निरंतर उस पर मेहनत करते रहना है। टीम में सिलेक्शन होगा फिर उससे वो और आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई चुनौतियां भी आती हैं सामने कि आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता है अपने रास्ते से कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मन में निराश आ जाता है। खिलाड़ी फिर भागने लगता है पीछे कि मेरा तो नहीं हो पा रहा है कुछ, मैं क्या करूं। तो इसलिए खिलाड़ी को हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए।
1: संजय जी, नीरज जी, आप लोगों ने जैसी चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आकाशवाणी के माध्यम से ये सारी बातें, जिसमें सारी सार्थक बातें हुई हैं, वो एक बड़े वर्ग तक और छोटे छोटे सुदूर जगहों पे पहुंची होंगी। बहुत सारी काम की बातें निकल कर आईं और बहुत सारी जानकारियां भी हमने जानी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा एक समाज के बड़े वर्ग को मिलेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद धन्यवाद सर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपांकर मिश्र। इसी के साथ आज का खेल दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित सतीश चंद्र का सितार वादन, राग पीलू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्र संगीत के अंतर्गत पंडित सतीश चंद्र का सितार वादन राग था पीलू। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय

0: तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से चार दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. CBI has arrested 30.